मीडियम वेव 483.2 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आज शनिवार है, शक संबत 1948 के वैशाख मास की तिथि 12, तदनुसार 2 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:49 होने को हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: कई बार छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर हम अपने जीवन को बोझिल बना देते हैं। किसी भी संबंध में जल्द राय बनाने की आदत भारी असर डालती है। अच्छा तरीका यह है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें। आप अपनी जिंदगी जिएं, अपने कौशल पर भरोसा कर आगे बढ़ें। ये समझें कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। कई बार आप खुद को बाकी लोगों की तुलना में कम समझने लगते हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर, सहपाठी या घर के किसी सदस्य को खुद से आगे बढ़ते देखते हैं तो आपको ये बात पसंद नहीं आती है। आप सोचने लगते हैं कि वह तरक्की करे लेकिन वह आपसे आगे ना बढ़े। इसी भावना को द्वेष की भावना कहा जाता है। ऐसा अक्सर ऑफिस, घर, रिश्तों में होता है। जैसे आपके ऑफिस में किसी साथी का प्रमोशन होना, लाख कोशिश के बाद भी आप प्रमोशन हासिल नहीं कर पाते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करते देख आप खुद को कम समझने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। जिस काम को करने में आपका मन लगा करता था उसे करने में आपको झिझक होने लगती है और मन ही मन यह सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये द्वेष है, जिसे ईर्ष्या भी कहा जाता है। द्वेष आपके रिश्ते भी खत्म कर सकती है और उनमें कुछ खटास भी ला सकती है। आमतौर पर आप अपने पार्टनर को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यह एक सामान्य बात है और अक्सर ऐसा होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तीसरे व्यक्ति के साथ आपका पार्टनर घुलने मिलने लगता है। आप उस तीसरे व्यक्ति को खुद से ज्यादा बेहतर समझने लगते हैं। अपने पार्टनर को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ देखने के कारण आप उन्हें खोने से डरने लगते हैं। वक्त के साथ आपको खुद को समझना चाहिए और अपने पार्टनर को भी समझाना चाहिए। हर व्यक्ति को आजादी पसंद होती है और आपको अपने साथी को एक स्पेस देना चाहिए। अगर आप साथी को किसी तरह के बंधन में रखेंगे तो वह आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और आप उससे किसी की तुलना करते हैं, यह बात आपके बच्चे को पसंद नहीं आती है। वह खुद को कमजोर समझने लगता है और आपसे अपनी बात बेझिझक नहीं कह पाता है। कई बार परिवार में अपने भाई बहन को खुद से ज्यादा तरक्की करते देख आप जाने लगते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में उससे अधिक कामयाब हो। हालांकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से आप अपने भाई बहन से द्वेष करने लगते हैं और आपके बीच प्यार और लगाव कम हो जाता है। आपको अपने मन को समझाना चाहिए, अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि अपनी तरक्की के लिए खुद ही कार्य करना होगा। ऐसा हमेशा होता है कि आप किसी को अच्छा करते देख अपनी काबिलियत पर शक करते हैं। जो आपकी खूबियां होती हैं उनके लिए आप खुद को सराहते नहीं हैं। अपने आप को आम समझ लेने से ही आपके काम करने की शक्ति कम हो जाती है। यदि आपको अपने काम के लिए प्रशंसा नहीं मिलती है तो आपको खुद के कार्य पर गर्व महसूस करना चाहिए और जो आपने हासिल किया है उसके लिए खुश होना चाहिए। कई बार अपने सफलता के लिए उत्सव मनाना भी अच्छा रहता है क्योंकि ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ता है। हमेशा ईर्ष्या से एक सीख लेकर आपको अपनी गलतियों और कमियों को सुधारना चाहिए।
1: आकाशवाणी पटना से अभी आप चिंतन सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए सुनिए चिंतन।
1: द्वेष जीवन की बड़ी विसंगति है। यह एक तरह की मानसिक व्याधि है। ईर्ष्यालु मनुष्य में सुख एवं स्वास्थ्य का भाव दुर्बल होता है।

0: आकाशवाणी से अब प्रस्तुत है कृषि सूचनाएं।
1: किसान भाइयों नमस्कार। मौसम में गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के कारण फल वृक्षों में अनेक तरह की समस्याएं भी होती हैं, तो आज हम आपसे बात करेंगे आम एवं लीची के बाग में जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में और कैसे उनका समाधान आप करेंगे। सबसे पहले आम के पेड़ की बात लेते हैं, तो आम के पेड़

0: पेड़ पर छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, जिन्हें आप टिकोला भी कहते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ टिकोला गिरने की समस्या होती है। हालांकि प्रकृति का ये नियम है कि संपूर्ण फल किसी भी पेड़ पर रहते नहीं हैं, कुछ झड़ते ही हैं, और झड़ना आवश्यक भी है क्योंकि जब गिर जाते हैं तो इससे जो दूसरे फल रहते हैं वो बड़े होते हैं, पुष्ट होते हैं। पिछले दिनों आंधी और बारिश का प्रकोप रहा बिहार में, और इससे जो है ज़्यादातर फल गिरे, और इसका फायदा एक ये हुआ कि पेड़ों की साफ सफाई हो गई। बारिश की बूंदों से जो कीड़े मकोड़े उस पर थे वे भी नष्ट हो गए। अब जो फल लगे हुए हैं उन्हें बचाना आवश्यक है। तो इसके लिए पहला काम तो आपको ये करना है कि यदि नमी की कमी है बाग में तो पेड़ों के नज़दीक सिंचाई कर दें, और यदि गर्मी ज़्यादा बढ़ती है और फल गिरने की समस्या थोड़ी होती है तो आप स्प्रेयर मशीन से भी पानी का छिड़काव पेड़ के ऊपर कर दें। नीचे आपने जो सिंचाई किया है उसके अतिरिक्त भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फल गिरने की समस्या यदि ज़्यादा है तो आप ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि हार्मोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लेनोफिक्स एक हार्मोन आता है, 4 मिलीलीटर पानी में 1 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स मिला करके उसका आप छिड़काव करें, 1 या 2 बार कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि ये मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि इसमें जो है यदि आप गाढ़ा हो गया घोल यानी कि 4 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा के बजाय 2-2.5 मिलीलीटर दवा यदि आपने डाला है तो इसका नुकसान हो जाता है, इससे फल जो है विकृत हो सकते हैं, गिर सकते हैं ज़्यादा। तो आप 1 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स लें, 4 लीटर पानी लें और 4 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स मिला करके छिड़काव करें। इससे जो है समस्याएं फल गिरने की जो है वो कम हो जाएगी, नहीं गिरेंगी। यदि आपके पेड़ पर कोई उस तरह का कीड़ा दिखाई दे रहा है जो कि फलों में छेद करता हो या फलों को खाता हो तो उसके लिए भी आप कीटनाशी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीची की, तो लीची के बाग में भी पेड़ों के पास आप हल्की सिंचाई कर दें, इससे फल गिरेंगे नहीं। और फल फटने की समस्या लीची में बहुत होती है, जब फल तैयार होने लगते हैं तो वो फटते हैं, तो जब फटते हैं तो उससे बचाने के लिए बोरेक्स या सुहागा जिसे आप जानते हैं बाज़ार में भी मिलता है, तो बोरेक्स पाउडर का छिड़काव आप कर दें। बोरेक्स पाउडर के छिड़काव करने से ये समस्या दूर हो जाएगी। आप मिट्टी में भी दे सकते हैं बोरेक्स पाउडर, तो इससे जो है आपके फल फटेंगे नहीं। तो फल फटना, फल गिरना, ये दोनों जो बातें हैं उससे आप अपने पेड़ को बचाने के लिए और भी प्रयास कर सकते हैं। लीची में एक कीड़ा और लगता है जो लीची के फलों पे लग जाता है, धड़ छेदक कीड़ा भी लगता है। धड़ छेदक कीड़े के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आप पेड़ में देखें, पेड़ की डालियों में देखें, धड़ों में देखें, जहाँ भी ये कीड़ा लगा होगा तो वो कीड़े का मल जो है वो बाहर दिखाई देता है, तो या भूसी निकलती हुई रहती है, तो उसे आप एक तार की सहायता से साफ करें और साफ करने के बाद अंदर जो है कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करें, तो इससे आपके पेड़ सुरक्षित रहेंगे। लीची माइट से भी पेड़ों को बचाना आवश्यक होता है, तो इसके लिए भी कुछ कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करें।
1: अभी आपने कृषि सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा

0: मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को संस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संग।
3: The Election Commission has ordered for re-polling in 15 polling stations.

अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। जब हम नियमित रूप से ईश्वर का भजन स्मरण करते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारे कर्म शुभ बनते हैं। यही साधना हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाती है।

भगवान राम का नाम लेने मात्र से ही हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राम नाम में असीम ऊर्जा है। राम के साथ जो सच्ची प्रीति करते हैं उनका निश्चय ही कल्याण होता है।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर अनुराधा मराठे का है।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगीं। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर अनुराधा मराठी का था। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य सूचनाएं।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दूरभाष पर उपस्थित हैं डॉक्टर विजय प्रकाश राय। आप राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य हैं। आज हम बातचीत करेंगे डायरिया अर्थात दस्त पर। सर, डॉक्टर साहब, हम पहले पूछना चाहेंगे कि डायरिया के कारण क्या होते हैं, खास करके गर्मी का जो मौसम आया हुआ है उसमें डायरिया की शिकायत बहुत लोगों के साथ होती है, तो इसके कारण क्या है और लक्षण क्या है इसके?
2: जी, आपने सही पूछा है कि गर्मी का मौसम आ गया है। डायरिया मुख्य रूप से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बच्चों में यह ज्यादा पाया जाता है, और गर्मी और बरसात के मौसम में अपने भारत में इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। लक्षण यह है कि अगर माँ या गार्जियन यह समझ रहा है कि बच्चे का दस्त यानी जो शौच की संख्या बढ़ गई है और उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो उसको हम दस्त मान करके चलते हैं
1: जी।
2: यानी सामान्य कल तक बच्चा जितनी बार शौच कर रहा था उससे उसकी संख्या बढ़ गई हो और उसमें पानी की मात्रा अधिक हो गई हो, तो इसको हम लोग दस्त मान करके चलते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, हम ये भी कहना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, और इसका एक कारण ये भी होता है कि जो खाना बनाया जाता है खास करके ग्रामीण परिक्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में भी, जो बासी खाना हो जाता है, खाना बहुत जल्द ही बर्बाद हो जाता है गर्मी के मौसम में, तो उसको भी कई लोग खा लेते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे और क्या सुझाव देंगे हमारे श्रोताओं को कि क्या करना चाहिए?
2: देखिए, मैं पूरे डायरिया के बारे में ही एक सुझाव देना चाहूंगा कि चूंकि यह दूषित भोजन और पानी से ही फैलता है, और मुख्य रूप से अगर स्वच्छता की विधियों को हम नहीं अपनाते हैं तो इसका प्रकोप ज्यादा होता है या बढ़ता है या फैलने का माहौल तैयार करता है। जैसे शौचालय का प्रयोग न करना, अगर बच्चे या इन्फेक्टेड लोग खुले में शौच करते हैं तो अगर वो डायरिया से ग्रसित हैं, उनके शौच से फिर वो कीटाणु या विषाणु कई माध्यमों से फिर भोजन तक पहुंचते हैं। दूषित हाथ के माध्यम से पहुंच सकते हैं, मक्खियों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, हवा के माध्यम से पहुंच सकते हैं, और उन खेतों में अगर हरी सब्जियां या सलाद वाले जो खीरा टमाटर इत्यादि हैं वे भी दूषित होते हैं, उनको भी अगर स्वच्छता से धो करके नहीं खाया जाए तो इस तरह से डायरिया होने का चांसेस रहता है। आपका प्रश्न था कि बासी भोजन से,
1: जी जी,
2: तो मुख्य रूप से ये तरीका हुआ कि शौच के बाद, खाना खाने से पहले, खाना पकाने से पहले अगर साबुन से बढ़िया से हाथ अगर हम धोते हैं तो बच सकते हैं डायरिया के प्रकोप से।
1: जी।
2: बाहर निकलने पर जूतों का प्रयोग हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, कहीं से प्रदूषण उसमें न आए, खास करके अर्बन एरिया शहरी इलाकों में कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पानी की सप्लाई है वो कहीं पर कंटामिनेट हो जाती है सीवरेज से,
1: पाइप टूटा रहता है,
2: वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमारा डायरिया फैलने का कारण होता है।
1: जी।
2: और गर्मी और बरसात में ये जीवाणु और जो विषाणु होते हैं जो डायरिया या फूड पॉइजनिंग भी करते हैं, और वो उच्च तापमान में और ह्यूमिड वातावरण में जिसमें नम्रता ज्यादा होती, नमी ज्यादा होती, उस माहौल में वो जल्दी पनपते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। इस प्रकार से भोजन को वो ऐसा विषैला कर देते हैं कि अगर हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे भी डायरिया होने का, उल्टी होने का चांसेस रहता है। तो बिल्कुल यह भी है कि खाना फ्रेश खाएं,

0: उसे ढक करके रखें।
1: कई बार ऐसा देखा जाता है कि डायरिया अथवा जो भी बीमारी होती है तो ग्रामीण परिवेश में आम लोग जो होते हैं वो सामान्यतः जो प्रयोग में लाई जाती हैं दवाएं वो उपयोग कर लेते हैं, डॉक्टर साहब को नहीं दिखाते हैं, अस्पताल में जाकर नहीं दिखाते हैं, खुद से चिकित्सा करने लगते हैं। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि उन लोगों को अस्पताल कब जाना चाहिए और किन-किन दवाइयों का सामान्यतः प्रयोग करना चाहिए?
0: डायरिया के बारे में कई तरह के कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी चलाए जाते हैं, जिससे जनता में अवेयरनेस लाया जा सके। और प्रत्येक वर्ष बरसात के समय में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के माध्यम से घर घर जा करके आशा बहनें 5 साल तक के उम्र वाले बच्चों वाले घरों में ORS का पैकेट देती हैं, ORS बनाना सिखाती हैं, डायरिया कैसे फैलता है ये बताती हैं, और डायरिया से कैसे बचा जाए ये बताती हैं, और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, साथ ही कब हमें चिकित्सक से दिखाने की जरूरत होती है, ये सारी चीजों पर चर्चा होती है। तो मैं इसको पुनः आम जनता के लिए बताना चाहता हूँ कि डायरिया होने पर बच्चे को खतरे जो होते हैं वो पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस, शुगर की कमी, इन वजहों से बच्चा सीरियस होता है और कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। और अगर हम सही समय पर ORS का प्रयोग शुरू कर दें तो डायरिया सहारे होने वाली मौत को हम लोग बचा सकते हैं।
1: जी, डॉक्टर विजय प्रकाश राय, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य, आपने आकाशवाणी को इतना समय दिया और दस्त के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी छोटी छोटी जानकारियों से रूबरू करवाया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: अभी आपने स्वास्थ्य सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हाल चाल। 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे सूफी संगीत। 7:25 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे किशोरी अमोनकर का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन होगा हमेशा की तरह 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी सुनिएगा सुबह 10:00। 10:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पापिया गांगुली के स्वर में भजन और गीत। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11:00। कार्यक्रम स्टम्प्ड होगा 11:30 पर। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। किसले ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 4:30 पर। शाम 5:30 पर मगही कार्यक्रम मागधी का प्रसारण किया जाएगा। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 6:30 पर और हमारे किसान भाई खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7:00। सामयिक चर्चा का समय रहेगा शाम 7:52 पर। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में गजल। रात्रि 9:30 पर होगा राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और रात्रि 10:00 होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

पराजितं तत्रैव अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं सायं सार्ध सप्तवादने चेन्नई स्थी एम ए चिदंबरम क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है। इन केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरम्भ हो गयी। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

0: ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हाल चाल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले जानेंगे इतिहास में आज का दिन के बारे में। आज यानी 2 मई को विश्व टूना दिवस है। विश्व टूना दिवस 2 मई को पृथ्वी के तटीय क्षेत्रों में मनाया जाता है। आज का दिन मछली पकड़ने वाले समुदायों, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की उपलब्धियों का परिणाम है, जो दुनिया भर में टूना मछलियों के झुंडों की रक्षा करने और एक स्थायी मछली पकड़ने का मॉडल बनाने में मदद करने के लिए एकजुट हुए थे। क्या आप जानते हैं कि विश्व टूना दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल टूना समुद्र की सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मछलियों में से एक है। आकार, शक्ति, चपलता और गति के मामले में यह निश्चित रूप से सबसे आकर्षक मछलियों में से एक है। इसके अलावा यह मानव अर्थव्यवस्था और पोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवों में से एक है। टूना प्रजातियां सभी समुद्री मत्स्य पालन के मूल्य का 20% और वैश्विक स्तर पर व्यापार किए जाने वाले सभी समुद्री भोजन का 8% से अधिक हिस्सा है। श्रोताओं, जानकारियां तो अभी और भी हैं। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आज की शख्सियत की बात करें तो सन 1921 को आज ही के दिन महान भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सत्यजीत रे का जन्म हुआ था। सत्यजीत रे एक महान भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक और चित्रकार थे, जिन्होंने पथेर पांचाली से विश्व सिनेमा में भारतीय पहचान बनाई। उन्होंने अपनी फिल्मों की कहानी, संगीत और निर्देशन खुद किया। अप्पू त्रयी और चारुलता उनकी प्रमुख कृतियां हैं। सन 1952 में उन्हें ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। फिल्म निर्देशन के अलावा रे एक बेहतरीन पटकथा लेखक, संगीतकार, गीतकार और पत्रिका संपादक थे। उन्होंने बंगाली साहित्य में प्रसिद्ध जासूसी चरित्र फेलुदा और वैज्ञानिक प्रोफेसर शंकु की रचना की।

श्रोताओं, अभी मौसम के उतार चढ़ाव में काफ़ी बदलाव हो रहा है। इसके दौरान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीवन शैली और खान पान में कुछ खास बदलाव करने की ज़रूरत होती है। अचानक तापमान बदलने से सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखने के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार लें, जिसमें फल और सब्जियां शामिल हों। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल, अदरक, लहसुन, हल्दी और बादाम अखरोट का सेवन करें। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, गुनगुना पानी पीना बेहतर होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है। इस तरह से अपना और अपनों का रखें ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सूफी संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज

जब सुनेंगे किशोरी अमोनकर का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन। सारंगी पर हैं सुल्तान खान और तबले पर इनकी संगति की है बालकृष्ण अय्यर ने।

0: अभी आप किशोरी अमोनकर का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। सारंगी पर थे सुल्तान खान और तबले पर इनकी संगति की थी बालकृष्ण अय्यर ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: और इस गीत के बाद
8: छाया गीत।

0: Access All India Radio. आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान

0: जारी। पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता

0: से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका के मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच

भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को

0: मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द है मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict
3: says Iran is seeking concessions they cannot accept.

0: हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की ताजा तरीन तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुजाकरात पर मबनी एक हल्के मंजरनामे पर शक का इजहार किया है और मजीद कशीदगी के खतरे का इंतबाह दिया है। ईरान ने अपनी असर नौ पेशकश सालिसों के जरिए दी थी, जिसकी तस्दीक सरकारी मीडिया ने की। ट्रंप ने एतराफ किया है कि ईरान ने मुजाकरात में पेशरफ की है, अलबत्ता उन्होंने कहा कि वो पेश की गई शराइत से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जो वो कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने ईरान की क्यादत को बेरब्त करार दिया है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान लगातार गैर एतमादी का इशारा मिल रहा है। फारस खबर एजेंसी समेत ईरान के सरकारी राबते वाले मीडिया ने बताया है कि मुल्क की क्यादत अंदरूनी गैर इस्तेहकाम की कयास आराइयों से निमटने की निगरानी में पूरी तरह मसरूफ है। यह सिफारती तातुल लबनान में तशद्दुद में इजाफा हो जाने के दौरान पेश आया है। लबनान में इसराइल के हमलों में एक ही दिन में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इत्तला है, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, जिससे अमरीका की सालिसी वाले पिछले महीने के जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इन हमलों में जनूबी शहर सूर में शहरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया, जबकि कई सरहदी कस्बों में लोगों से इलाके को खाली करने के अहकाम जारी किए गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले किए हैं, जिनमें एक ड्रोन हमला भी शामिल है, जिसकी वजह से शिमाली इलाके में इसराइली फौजी जख्मी हो गए। लबनान में इस सरहदी जंग में अभी तक 2000 से ज्यादा लोग हलाक और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, सिक्किम और जैली हिमालयाई मगरी बंगाल में आज शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने अलबत्ता साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक और तमिलनाडु में आज गर्म मरतूब मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहेगा और अगले तीन दिन में गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। महकमे ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर इस दौरान किसानों से कहा गया है कि वो खेतों में अपना कामकाज मुअत्तल रखें। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज से जम्मू कश्मीर वादी के दरमियान मुसलसल रेल खिदमात बाजाबता तौर पर शुरू कर दी हैं। सुबह 6:20 पर यह रेलगाड़ी जम्मू से रवाना हुई, जो इस खित्ते में रेल राबतों को मजीद बेहतर करने की समत एक अहम कदम है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस रेल खिदमात का जुमेरात को इफ्तिताह किया था। एटमी तवानाई के इंजबाती बोर्ड AERB ने कुडमकुलम न्यूक्लियाई तवानाई प्रोजेक्ट के यूनिट 5 और 6 में अहम आलात नस्ब किए जाने का इजाजतनामा जारी कर दिया है। इस इजाजत के तहत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह अख्तियार हासिल हो गया है कि वो रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर्स और कूलेंट पंपों के प्लांट्स पर अहम आलात नस्ब कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि तकरीबन 3 साल पहले 2000 रुपए के करेंसी नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था, जिनमें से 98.47% नोट वापस लिए जा चुके हैं। आरबीआई ने करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक अपने कामकाज के हिस्से के तौर पर 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। ताजा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इस रकम में बहुत तेजी से कमी आई है और ये 30 अप्रैल 2026 को 5,451 करोड़ रुपये थी। 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सहूलत आरबीआई के 19 दफ्तरों में उसी वक्त से दस्तयाब है, जब से इन नोटों की वापसी का ऐलान किया गया था। पंचायती राज की वजारत आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल से मुतालिक एक वर्कशॉप का एहतमाम करेगी। हर एक तक रसाई से मुतालिक इस वर्कशॉप में आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम के विजन, मकासिद और अमल आवरी के फ्रेमवर्क के बारे में शराकतदारों को रोशनास कराया जाएगा। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज की वजारत की पहल है। पंचायती राज की वजारत के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज अपने कलीदी खुतबे में प्रोग्राम के विजन का खाका पेश करेंगे। इस मौके पर आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल के कामकाज का बराह रास्त मुजाहरा पेश किया जाएगा।

0: eboard.bihar.gov.in विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आज से शुरू। घर घर जाकर प्रगणक लेंगे जानकारी। भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में मानसून अवधि के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा होगी। बीपीएससी ने अप्रैल में आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा रद्द किया। और मौसम विभाग का आज प्रदेश के कई भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का अलर्ट। कई मई महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य आरंभ हो गया है। ये गणना स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच प्रदेश में कल स्वगणना की प्रक्रिया समाप्त हो गई। जिन नागरिकों ने स्वगणना नहीं की है, प्रगणक उनके घर जाकर जानकारी दर्ज करेंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नागरिकों की आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक विवरण दर्ज किए जाएंगे। भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में मानसून अवधि के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा के लिए बैठक होगी। इस बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल करेंगे। इससे पहले काठमांडू में आयोजित दो दिवसीय भारत नेपाल कोसी और गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। बैठक में नेपाल ने प्रदेश के पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर नेपाली भाग, कोसी बराज, गंडक बराज और मुख्य पश्चिमी नहर के भागों को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने की सहमति दी है। इसके साथ ही पश्चिम कोसी मुख्य नहर के बांधों पर लगाए गए बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने को भी

0: मंजूरी दे दी है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस निर्णय से नहर और उसकी सेवा पथ के संचालन कार्य में कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में सुशासन स्थापित है और इसे चुनौती देने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। गया जी में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने संकेतों में कहा कि अपराधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। वहीं नालंदा के सरमेरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के लंबित प्रशासनिक मामलों के निपटारे के लिए 19 मई से पंचायत स्तर पर सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत सभी पंचायतों में प्रत्येक महीने पहले मंगलवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा।
1: प्रत्येक पहले मंगलवार को 19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों, और आपके पंचायत में जाकर ये तीन चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंभीर अपराधों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू किया गया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं के मामले में त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है।
2: देख रहे हैं कि हत्या या अपराध के मामले में कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई हत्या होती है और अपराधी 24 घंटे के अंदर खुद पुलिस के गोली का शिकार होता है, अगर वो बदमाशी करके पुलिस के साथ भी कोई के हिंसात्मक कार्रवाई, तो जो भी घटना घटी है, जो भी अपराधी है, उसके खिलाफ मुकम्मल और सख्त कार्रवाई होगी।
0: बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO परीक्षा रद्द कर दिया है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों के व्यापक हित और कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच आयोजित परीक्षा के दौरान 32 अभ्यर्थियों को कदाचार और गड़बड़ी के आरोप में पकड़ा गया था। वहीं आयोग ने 23 अप्रैल को आयोजित सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की लिखित परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने LPG के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी की है। पटना में अब व्यावसायिक सिलेंडर की नई कीमत 3,346 रुपए 50 पैसे होगी। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है।
3: देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं, और उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोगों को करना पड़ेगा।
0: केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। कल देश भर में 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। मंत्रालय ने बताया कि औद्योगिक आधार पर ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग 98% तक बढ़ गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर

0: कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा कि मई महीने में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इस दौरान लू चलने की भी आशंका जताई गई है। इस बीच विभाग ने आज प्रदेश के कई भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है।
4: दिनांक 2 मई राज्य के अधिकांश जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
3: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नवादा जिले के रजौली में सबसे अधिक 58.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद और रोहतास जिले के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2000 रुपए मूल्य वर्ग के 98.47% नोट 3 साल की अवधि में बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक यह आंकड़ा तेजी से घटकर 2451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्र सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य मजदूरों के कौशल और उनकी मेहनत से ही प्राप्त होगा।
5: जब मेरे प्रधानमंत्री एक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मजदूर साथियों की है, जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। मेरी सरकार ने समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए कई फैसले, कई कानून बनाने का काम किया।
3: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICUR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची NLEAP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए मानक जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
6: BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली चलने की छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा BIS ने स्पर्शनीय मार्गदर्शक मानचित्रों के सुलभ डिजाइन, सूचना सामग्री, चित्रांकन और प्रदर्शन विधियों, साइनेज उपकरण और उपकरणों पर ब्रेल के अनुप्रयोग और पोर्टेबल रैंप के लिए भी मानक प्रकाशित किए हैं। NLEAP दस्तावेज का उद्देश्य नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य सेवा करदाताओं और संबंधित हितधारकों के लिए सहायक उत्पादों के प्रावधान के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करना और साथ ही देश भर में सहायक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग करना है। ये मानक सुरक्षा

0: का एर्गोनॉमिक्स प्रदर्शन, फिनिश, कारीगरी और निर्माता द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी से संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल पर एक आउटरीच कार्यशाला आयोजित कर रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की परिकल्पना, उद्देश्य और कार्यप्रणाली से परिचित कराया जाएगा। ये कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज मुख्य भाषण देंगे। इस दौरान वे आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की व्यापक सोच और उसकी परिकल्पना को सामने रखेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर और मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से शुरू हो रही है। मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा 6 मई तक तथा इंटर की परीक्षा 11 मई तक दो पालियों में संचालित होगी। बोर्ड ने कहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। अररिया जिला स्थित आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के लिए आज से प्रक्रिया की होगी शुरुआत। केंद्र का संचालन कला और संस्कृति विभाग के तहत किया जाता है। अरवल जिले के कृषि भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मजदूरों के अधिकार और कर्तव्य विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रखंडों के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी और श्रमिक संगठनों के कई नेताओं ने भाग लिया। वहीं सीतामढ़ी जिले के डुमरा स्थित संयुक्त श्रम भवन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आज से शुरू। घर घर जाकर प्रगणक लेंगे जानकारी। भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में मानसून अवधि के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा होगी। बीपीएससी ने अप्रैल में आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा को रद्द किया। और मौसम विभाग का आज प्रदेश के कई भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का अलर्ट। मई महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: किसान भाइयों एवं बहनों, अब सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना हुआ और भी आसान।
1: IVRS सुगम कॉल सेंटर के माध्यम से सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं यथा खाद्यान्न अधिप्राप्ति बिहार राज्य फसल सहायता योजना, पैक्स सदस्यता एवं अन्य सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।
0: कोई शिकायत, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो तुरंत कॉल करें।
1: टोल फ्री नंबर 1-800-3454-110 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सहकारिता विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहाँ चलती है, इधर तो
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

हमारे सामईन इकराम को आज की पुरनूर सेहतमंद सुबह का आदाब व सलाम पेश है। शगुफ्ता हाजिर है आज की अंजुमन लेकर। इससे कबल कि हम आज की अंजुमन के गुलों की जानिब बढ़ें, सामईन हजरात आइए एक प्यारी सी गज़ल के साथ आज के अंजुमन का आगाज़ करते हैं। समाअत कीजिए ये खूबसूरत सी गज़ल।

दोबारा से शुभ गुप्ता हाजिर है अंजुमन लेकर। सामिन, दुनिया में हर रोज न जाने कितने ही इंसान आते और जाते हैं। इसी आमदोरफ्त में कभी कभी ऐसे शख्सियत भी जमीन पर पैदा होती है जो दुनिया से रुखसत होकर भी हमेशा के लिए जिंदा रहती है। आज हमारे मुल्क में एक ऐसी शख्सियत की यौमे विलायत मनाई जा रही है जो कि 20वीं सदी के सबसे बाअसर और मशहूर हिंदुस्तानी फिल्म साजों, हिदायतकारों और मुसन्निफ में से एक थे। जी हाँ सामिन, आज की तारीख 2 मई 1921 को कोलकाता में एक मुमताज बंगाली खानदान में पैदा हुए थे सत्यजीत रे। उनके बारे में मुख्तसर गुफ्तगू चलती रहेगी। फिलहाल आइए गजल सी आपकी इस अंजुमन को सजाते हैं और समाप्त कीजिए खूबसूरत सी गजल।

एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं अंजुमन में। सामिन, सत्यजीत रे के वालिद सुकुमार राय भी एक मशहूर बंगाली मुसन्निफ और बच्चों के मशहूर शायर थे। उनके वालिद उनको 2 साल की उम्र में ही यतीम कर गए। कहते हैं सत्यजीत राय ने मुआशियत में प्रेसिडेंसी कॉलेज से तालीम हासिल की। बाद में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से आर्ट्स की तालीम को मुकम्मल

0: किया। सामिन हमारी गुफ्तगू को रफ्तार देंगे। फिलहाल आइए आज की खास पेशकश ड्रामा गोदावरी की गोद में समाप्त करते हैं। जमालुद्दीन साहिल की पेशकश और एम क्यू तौहीद की तहरीर से सजा ये ड्रामा आपकी समातों के हवाले।
1: ये कहीं सुलेमान के कपड़े तो नहीं है, मगर सुलेमान इतनी दूर शुमाल की तरफ कैसे चला गया होगा? लेकिन मल्लाह तो कहता है कि ये कपड़े सुलेमान ही के हैं। बेचारा ठंडी सांस भरकर कहने लगा, खैर बारी ताला के फजल से वो नहायत ही सुकून से दफन कर दिया गया। देखो मैं जाना, अगर ये सुलेमान के नहीं है तो फिर उसकी तहकीक से पहले माँ को खबर न करना, वरना वो रो रो कर जान दे देगी।
2: नूरी, क्या तूने दाऊद को आज नदी के उस पार घोड़े ले जाने से मना किया है?
1: नहीं, मुझे उससे खौफ मालूम होता है। मैंने बाबा साहिल से भी कहा कि बाबा भैया को रोक दो, आंधी कितनी तेज है। वो मुस्कुराने लगे और कहा, जिसकी माँ दिन रात बारी ताला की इबादत करे वो उसकी औलाद को कैसे छीन सकता है, और जबकि उसे सिर्फ एक ही बेटा जिंदा रह गया हो।
2: शबाना, क्या तू भी नदी के किनारे गई थी आज?
1: हाँ।
2: हमारे ख्याल से आज उसकी लहरों में बला की तेजी है।
1: हाँ, उसके बारे में मत पूछो। सिर्फ दूर ही से किनारे के झाग को देखकर उसकी बरहमी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसमें उबाल आ गया है। लहरें हैं कि मगरिब से इस तरह चली आ रही है जैसे कि चाबुक से घोड़े हाथ रहे हो, और जब हवा जोर पकड़ती है तो उनमें एक तड़प आ जाती है जैसे वो किसी की जान लिए बगैर दिल को सुकून नहीं देगी। और फिर इतनी रात कैसे समझाऊं दाऊद को? देख शबाना, कहीं ऐसा ना हो कि माँ यहाँ चली आए और हम लोगों को इस हालत में इन कपड़ों के साथ पालो।
3: आपकी माँ अब यहाँ आने ही वाली हैं।
2: मुझे जल्दी सीढ़ी ला कर दो ताकि इन कपड़ों को मैं छप्पर के किसी गोशे में छुपा दूँ। उसे उनके बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। हो सकता है जब मौसम अच्छा हो जाए तो वह नदी के किनारे इस उम्मीद में जाए कि कहीं दूर पश्चिम से सुलेमान की लाश बहकर न आ गई हो। तूने सारी कोयले जला डाली निर्जना, सुबह से आग जल रही है।
3: मैं तो रोटियां पका रही हूँ। दाऊद को आज नदी के पार जाना है ना, वह इन्हें साथ ले जाएगा?
2: आज वो नदी में नहीं जाएगा। पूरब और पश्चिम दोनों से इतनी तेज हवा उठी हुई है, वो आज हरगिज नहीं जाएगा। हमारे ख्याल में साहिल बाबा उसे जरूर रोकेंगे।
3: वो उसे नहीं रोक सकते हैं माँ। मैंने उसके दोस्तों को कहते हुए सुना है कि वो आज जरूर नदी के उस पार जाएगा।
2: मगर वो खुद इस वक्त कहाँ है?
3: वो मल्लाहों से पूछने गया है कि कोई कश्ती आज उस पार जाएगी या नहीं, इतनी सख्त आंधी में जबकि लहरें नागिनों की तरह फनकार रही हैं। शायद ही कोई कश्ती जाए। किनारे की कितनी मिट्टी कट कट कर पानी में मिल रही है, मगर मुमकिन है उसे कोई मल्लाह ऐसा मिल जाए जो कश्ती ले जाने की हिम्मत करे।
2: देखो वो आ रहा है, बड़ी जल्दी में है।
4: मिर्जाना, मिर्जाना, अरे वो नई रस्सी कहाँ है जो मैंने खरीदी थी?
2: वहाँ है, मैंने उसे कांटे पर लटका कर रख दिया है। नूरी, जरा उतार कर ले तो आना।
4: हाँ जल्दी लाओ।
2: आज ही मैंने उसे वहाँ रखा है इसलिए कि हम लोगों का काला कुत्ता न ले जाए।
3: लो डाउट।
2: अच्छा होता कि तू उस रस्सी को यही छोड़ देता बेटा, हम लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी। आज नहीं तो कल किसी न किसी सुबह को सुलेमान की लाश बहकर किनारे पर तो आएगी, फिर हमें इसी रस्सी के जरिए उसे कब्र में उतारना पड़ेगा। अगर बारी ताला नहीं चाहा तो खूब गहरी कब्र बनवाएंगे उसकी हम लोग।
4: लेकिन मैं घोड़े को आखिर मैं किस तरह से ले जाऊं? आज हफ्तों के बाद एक कश्ती जा रही है और फिर हफ्तों नहीं जाएगी, मल्लाह कहते हैं। और तू तो जानती है माँ कि ये मेला घोड़ों के लिए बड़ा ही अच्छा है।
2: हाँ अच्छा है, अगर उसकी लाश आ गई और सारे लोग चले गए तो कोई भी कफन बनाने वाला नहीं रह जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगी? वही होगा कि मुफ्त में ज्यादा दाम देकर दूसरी जगह

0: मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जिस घर में बूढ़ी औरत चर चर करती रहे वहां किसी भी किस्म का सुलझा हुआ काम नहीं हो सकता है। अब बताओ मैं क्या करूं इन रोटियों के साथ। ले माँ जरा भागकर कुएं के नजदीक जा, वह वहां पर से गुजरेगा, वहीं ये रोटी दे देना और फिर उसे जरा खुदा हाफिज भी कह देना ताकि उसके दिल में तेरी तरफ से किसी भी किस्म का खटका न रहे।
1: मगर क्या मैं इतनी जल्दी वहां पहुंच पाऊंगी?
0: जरा भाग कर जामा। नूरी जरा लाठी तो दे दे लाकर, वरना तेजी में कहीं ये जईफा फिसल न जाए।
2: कौन सी लाठी दू?
0: अरे वही जो सुलेमान ने पिछले साल मेला से लाया था।
1: ला दे लाठी। अजीब जमाना आ गया है। इस बड़ी सी वसी दुनिया में बूढ़े पुराने जमानों के लिए अपने बेटी बच्चों के लिए सामान छोड़कर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेटा बूढ़ी माँ के लिए कुछ छोड़कर मर जाता है।
0: नहीं, नहीं, अभी जरा ठहर जानूरी, कहीं वह वापस न चली आए। अरे जानती नहीं है इस वक्त जो गम में वह मुब्तला है, न जाने इन कपड़ों को देखकर क्या कुछ न कर लेगी। खुदा ही रहम करे उस पर।
3: अरे देखो तो वो झाड़ी के पार गई या नहीं?
0: हाँ अब वह चली गई। शबू जल्दी से गठरी उतार ला, खुदा ही जानता है वह किस तरह माँ धमकती है यहाँ पर।
3: अरे साहिल बाबा तो चले गए, उन्हें ये बताना है कि ये कपड़े सुलेमान के हैं या नहीं।
0: अच्छा ये उनमें से किसी ने बताया है कि ये किस हालत में मिले?
3: ये तो किसी ने साफ साफ नहीं बताया है।
0: हाँ एक ने इतना जरूर कहा कि वो अपने साथी के साथ गोदावरी के सीने में चप्पू चलाता हुआ चला आ रहा था कि ठीक पौ फटने के वक्त वो किसी चीज से टकरा गया और फिर उसके कपड़े चप्पू में उलझ गए। उस वक्त वो एक स्याह चट्टान के पास से गुजर रहे थे। जरा चाकू तो लाना नूरी, पानी की वजह से गिरह इतनी सख्त हो गई है कि खुल ही नहीं सकती। वो शख्स कहता था कि गठरी जहाँ पर मिली है वो यहाँ से उत्तर की तरफ काफी दूर है।
4: हाँ हाँ जिससे कल मैंने चाकू खरीदा वो भी ये कह रहा था कि जहाँ मल्लाहों को इस गांव के डूबे हुए किसी आदमी के कपड़े की गठरी मिली थी वहाँ गोदावरी काफी गहरी है।
3: और अगर वहाँ से कोई लाश बहकर हमारे किनारे तक आए तो न जाने कितने दिन लगेंगे।
0: कौन कह सकता है कि ये उसके कपड़े नहीं है? अरे ऐसी ही एक और कमीज तो उसके पास थी। ठहर नूरी, मैं उसे अभी ढूंढ लाती हूँ।
3: ये तो है, देखना ये जेब ऊपर से मिलिट्री रुमा है, उसके आस्तीन भी डबल है।
5: मिर्जू बेटी मेरी नजर से सुलेमान के कपड़े छुप नहीं सकते, मुझे इन कपड़ों में सुलेमान के जिस्म की खुशबू महसूस होती है।
6: रहीमो, ओ रहीमो, जरा जल्दी इधर आना।
7: क्या बात है बहना, कहो ऐसी घबराहट क्या है?
0: जरा तू भी इस कपड़े को पहचान, ये रुमाल तो तू भी पहचानता होगा।
7: मिर्जाना ये रुमाल तो सुलेमान भैया का ही है, मैं खूब पहचानता हूँ।
0: अरे जेब में ये भैया का रुमाल, ये कपड़े उन्हीं के हैं मिर्जाना। देखो रुमाल पर ये फूल मैंने काटे थे, इसमें इतनी पत्ती को देखो, तुम्हें याद होगा इसमें मैंने रेशम भरे थे और उसने कहा था कि जब वो मेला से रेशम लाएगा तो भर देना। जरूर उसने रेशम लाया होगा। ऐ गोदावरी तूने क्या किया, उसके चारों गोशों को मैंने खास तौर से सब रेशम के धागे निकालने के बाद बनाया था।
4: हाँ ये तो उसी के हैं। कौन जाने उस चट्टान के पास से उसकी लाश गोदावरी की मौजें कहाँ ले गई हो, कौन से गिद्ध की चोंच पर उसका गोश्त पड़ा हो, कौन जानता है वह उसी चट्टान के किनारे लग गया हो और रात के वक्त जंगली जानवरों ने उसके फूले हुए जिस्म के गोश्त को चखा हो। बेचारा सुलेमान।
6: हाय भैया तू कहाँ चला गया, इतना बड़ा है कल जवान, इतनी चौड़ी छाती, ऐसे पुट ऐसे बाजू, तुझे गोदावरी के नाली क्यों डस गए, तेरे ये कपड़े हमारे पास क्यों चले आए, तेरा जिस्म कहा और तेरे कपड़े कहा, रेशम भी ना ला सका और रुमाल को भेज दिया।

0: चुप हो जा, चुप हो जा नूरी, शायद माँ तो नहीं आ रही है। अब उसको हम कैसे कहें कि कपड़े तेरे सुलेमान के हैं, जबकि ताऊत भी चला गया, मर जाएगी बुढ़िया बेचारी।
1: अरे वही तो आ रही है, फौरन अंदर आ जाएगी।
2: जल्दी हटा इन कपड़ों को नूरी, हो सकता है दाऊद को दुआएं देने के बाद उसका गम हल्का हो गया हो, अभी उसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए।
1: देखो तुम्हें जाना, कैसे मालूम होता है कि मैं रो रही थी।
2: अपनी पीठ दरवाजे की तरफ करके बैठ जाओ, रोशनी नहीं आएगी चेहरे पर। तूने आखिर रोटी नहीं दिया उसे, क्या उसे तूने घोड़े पर पाया नहीं?
3: हाय, तू चुप क्यों है माँ?
2: अरे जो होने का था सो हो गया। दाऊद से तेरी मुलाकात नहीं हुई क्या? तूने वहां क्या देखा? बोल ना, कुछ तो बोल।
3: मेरी नासों को देखो, हमारे दिल के टुकड़े पिघल पिघल कर भर रहे हैं।
2: क्या दाऊद को तूने वहां देखा?
3: हाँ हाँ देखा, एक खौफनाक मंजर देखा।
2: बेचारा दाऊद कश्ती पर भूखा प्यासा कहाँ से कहाँ चला गया होगा।
3: एक घोड़े पर वो सवार था और दूसरा उसके साथ था।
2: तुझे क्या हुआ माँ?
3: लोगों ने देखा था, दारा अपनी कब्र से उठकर अपनी डूबी हुई बेटी को हाथ में लिए मुस्कुराता गोदावरी के किनारे किनारे चल रहा था। मैंने उससे भी ज्यादा खौफनाक, ज्यादा भयानक मंजर आज देखा है।
1: गोभी, क्या देखा तुमने?
3: मैं कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और दाऊद की सलामती की दुआएं करने लगी। फिर दाऊद अपने सफेद घोड़े पर सवार चला आ रहा था, उसके साथ साथ भूरा घोड़ा भी था। फिर वो कुएं के नजदीक आ गया, फिर गजब खुदा का मैं क्या देखती हूँ?
2: क्या देखा तूने?
3: सुलेमान को।
2: सुलेमान को?
3: लेकिन सुलेमान तो स्याह चट्टान के नजदीक गोदावरी की गोद में सो गया माँ। सुलेमान ही था वो। पहले मैंने देखा कि दाऊद अपने सफेद घोड़ी पर से गुजर गया, मैंने उसे रोकना चाहा, मगर जैसे किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया हो। और फिर मैंने देखा कि सुलेमान पूरे घोड़े पर निहायत ही शान से चला जा रहा है। मैंने चिल्लाना चाहा, कोई चीज जैसे हालत में फंस गई हूँ। सुलेमान के जिस्म पर नए कपड़े थे और उसके पैर में नए जूते, वो सुलेमान ही था। उसके आगे आगे दाऊद था, दोनों बहुत ही तेजी से जा रहे थे, जैसे अपने घोड़े वो नदी की लहरों के सपोर्ट कर देंगे। हमारी तरफ किसी ने नहीं देखा, किसी ने वो नहीं।
2: आज से हम बर्बाद हो गए माँ, बिल्कुल बर्बाद हो गए। क्या साहिल बाबा ने ये नहीं कहा कि खुदा ऐसी औरत से बेटा नहीं छीन सकता जिसके पास सिर्फ एक ही बचा हो?
3: अरे फिर अब सैना भी तो नहीं जानता है। नहीं नहीं, अब उसका भी वक्त आ गया है, वो जरूर मर जाएगा, मुझे यकीन है। जा मिर्जा, जा, तू कफन के कपड़े ले आ, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी। दाऊद भी अब चला ही गया, आज जिंदगी की आखिरी कड़ी भी गोदावरी की लहरों में खो गई। मैं अब नहीं जिंदा रहूंगी, किसके लिए जिंदा रहूं? इसी घर में तेरा बाप था, तेरे बाप का बाप था, और फिर छह नौजवान लड़के थे, छह हट्टे कट्टे नौजवान।

आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गई। किसी को आंधी ने पहाड़ से टकरा दिया, कोई बाबा के बोझ तले दब गया, कोई गोदावरी की भेंट चढ़ गया,

0: जाना
1: तो शिवाना,
0: ये शोर कैसा है?
1: तुम सुन रही हो कुछ?
0: हाँ, शायद कुछ लोग गले के किनारे हंगामा कर रहे हैं।
1: खुदा ख्याल करे।
2: मुझे अच्छी तरह से याद है मिर्जाना, तेरा भाई और तेरा भांजा दोनों को एक खौफनाक सियारात ने ढस लिया, उनका कुछ भी पता न चला। फिर एक दिन इसराइल नदी में गया, दूसरी रोज जबकि दाऊद को जो बच्चा था मैं गोद में बहला रही थी कि एक औरत चुपके से पूरे श्राद्ध तरीके पर हमारे कमरे में आकर दुबक गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी आई और मैं हैरत से जमीन तक रही थी कि कुछ मर्द एक तख्त को कांधे पर उठाए अंदर आए, तख्त से पानी के कतरे गिर रहे थे। वो इज़राइल था, उसकी आंखें निखरी हुई, अपनी माँ से रूठा हुआ इसलिए कि गोदावरी माँ ने उसे थपकी दे दी थी। कितना गर्म दिन था वो, गर्म हवाएं चल रही थी और फिर मैं हाथ बढ़ाकर कौन आया, क्या फिर इस्राएल आया? नहीं, ये सुलेमान होगा।
0: सुलेमान यहाँ कैसे आएगा माँ? वो तो सियाह चट्टान से टकरा कर पाश पाश हो गया होगा।
2: ऐसे बोलना भूल में जो हमारे जवान बेटे के बाजू में हम बला के कोबत थी, वो तैर कर चला आएगा। मगर मैं उसे पहचानूंगी कैसे? इतने दिन नई माँ की गोद में रहने के बाद तो उसका चेहरा भी बदल गया होगा। मैं उसकी असली माँ होकर भी उसे नहीं पहचान सकूंगी।
0: सुलेमान कैसे हो सकता है? उसके तो कपड़े भी मल्लाहों ने लाकर दे दिए हैं। लो ये देखो माँ।
1: अरे उधर देखो, कुछ लोग एक तख्त को कांधों पर उठाए इस तरफ चले आ रहे हैं। उसमें से पानी के कतरे टपक रहे हैं और उनके कदमों की छाप बालू पर पड़ती जा रही है। शायद दाऊद की लाश बुला रहे हैं।
3: ला उसकी रूह को चैन दे।
1: लेकिन वो डूबा कैसे?
3: जैसे उसकी कश्ती थोड़ी दूर गई थी, उस भूरे घोड़े ने ऐसे टांग चलाई कि वो मझधार में जा गिरा। फिर गोदावरी माँ ने उसे चैन की नींद सुला दिया।
2: आखिर तुझे भी भूरे घोड़े ने मुझसे छीन ही लिया। अब सारे के सारे चले गए, मैं तन्हा बच गई हूँ। तन्हा जाओ, सब चले जाओ। अब मैं गोदावरी के किनारे जाकर उसकी मौजों को जोर जोर से काकाएं बुलंद करूंगी। अब ये लहरें किनारे से टकरा कर झाग बुलंद करेंगी तो हमारा दिल डर से बेकरार नहीं होगा। अब आंधी आने पर मैं खुदा से दुआ नहीं करूंगी, जबकि पहाड़ियों की चोटी पर से ओले बरसेंगे तो मैं डर से रात भर जागती नहीं रहूंगी। मैं अब किसी के लिए रोटी बांध कर कुएं तक नहीं ले जाऊंगी।

0: हाँ मेरे बेटे, मैं तेरी खबर तो बड़ी कैसे बनवाऊंगी। शबाना जरा लुबान ले आना, मैं अपने बेटे को हर पाक धोआ दूंगी ताकि उसके रूह को सुकून मिलेगी। अम्मी जान, ये ले लुबान दान, ये रहा अल्लाह।
1: इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
0: दाऊद, मैंने तेरे लिए खुदा से कितनी दुआएं की होंगी रे। कितनी भयानक रात मैंने आंखों ही आंखों में इबादत करके इसलिए गुजार दी कि तू गोदावरी की ऊंची नीची लहरों पर जा रहा था। तुझे क्या मालूम दाऊद, तेरी मामूली सी मुसीबत हमारे लिए पहाड़ बन जाती थी। आज तो खामोश हो गया। शुक्र है अल्लाह का, अब तो मुझे किसी के लिए भी कुछ करना नहीं रहेगा। मैं चैन से रात को सो तो सकूंगी, चैन से। आप गोदावरी की मौजों में किसी दूसरे दाऊद के लिए, किसी दूसरे सुलेमान के लिए बेकरारी नहीं होगी। अब इतनी लंबी रातों को मुझे कोई भी जगाने नहीं आएगा जब मैं रुखी रोटी खाकर सो जाया करूंगी। अब मुझे कोई नहीं पुकारेगा।
2: साहिल बाबा, अब हम कपड़े सूरज निकलने से पहले ही बना डालू। माँ ने कपड़े ला कर रखे थे, उसने सोचा था कि सुलेमान की लाश एक दिन किनारे जरूर लग जाएगी। हमारे पास रोटी है जो दाऊद के लिए मैंने बनाई थी, लो इसे खाओ और कफन तैयार कर दो। रहीमो भैया, तुम तो जरा कब्र तैयार कर देना, आखिर हमारा कौन है यहाँ?
3: कुदाल कहाँ है मिर्जाना?
2: कुदाल तो हमारे पास नहीं है।
3: ताज्जुब है, इतने लोगों की कब्र खुदवाई है तुम्हारी माँ ने, एक कुदाल भी नहीं खरीदा।
2: बूढ़ी हो गई है ना, और फिर दिमागी तवाजुन भी तो जाता रहा है बेचारी का।
0: ये सुलेमान के कपड़े हैं। तुझे भी मैं अपनी दाऊद के साथ दफन कर दूंगी।
2: खुदा रहम कर माँ की हालत पर। अभी तो सुलेमान की मौत ने आंखों के आंसू खुश किए ही नहीं थे कि फिर से जारी हो गए।
3: आखिर बुरी औरत कहां तक सब्र करे? आज तो जोर से ये रो रही है, ये भी नहीं बच सकती।
0: आज सब भाई साथ हो गए, बाप भी वही है, और मुझे तनहा छोड़ दिया। लेकिन हमारा भी आखिरी वक्त आ गया है। खुदा करे, खुदा रहम करे सुलेमान पर, इज़राइल पर, दाऊद पर और उनके सारे भाइयों पर। मुझ पर भी रहम करे खुदा। नूरी, नूरी खुदा से दुआ करके मुझ पर रहम करे, इस बूढ़ी औरत पर जिसने उसे कभी नाराज नहीं किया, कभी नाराज नहीं किया। सुलेमान को सियाह चट्टान के नजदीक गोदावरी माँ के गोद में दफन कर दिया गया। खुदा ने चाहा तो दाऊद को भी ले

क्वीन सत्यजीत रे, सत्यजीत रे ने पहले कमर्शियल आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपनी पहली फिल्म पथेर पांचाली बनाई, जिसने कॉन फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ कई बैनुल अक्वामी इनामात जीते हैं। उनकी खिदमात फिल्मों के बनाने में कई तरह से रही है। जहां वह एक बहुत अच्छे कहानी नवेस थे, वहीं स्क्रिप्ट राइटर, कास्ट डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर और एडिटर वगैरह भी बहुत बेहतरीन रहे हैं। उन्होंने लगभग 37 फिल्में डायरेक्ट की, जिसमें फीचर्स फिल्म, दस्तावेजी फिल्में और शॉर्ट्स फिल्में भी शामिल हैं। उनकी खिदमात ने उन्हें कई एजाजात दिलवाए हैं, जिसमें ऑस्कर अवार्ड, भारत रत्न जो कि उन्हें 1992 में दिया गया था, लगभग उन्हें 32 फिल्म इंडियन फिल्म अवार्ड्स हासिल हुए हैं। सत्यजीत रे ने इस दुनिया को 1992 में हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया और हमारे दरमियान अपनी बेहतरीन फिल्में छोड़ कर गए। इसके साथ ही सामीन, आज के अंजुमन का वक्त यहीं अख्ताम पजीर होता है। अपने दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक प्यारी सी गज़ल, आइए समात करते हैं।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म बनवास का ये गीत सोनू निगम, मिथुन और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म बाजीराव मस्तानी से, आवाज़ें दी हैं श्रेया घोषाल और वैशाली मडे ने।

द फैमिली स्टार इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं हरजोत कौर की आवाज़ में। रश्मि विराग की रचना है, संगीत दिया है गोपी सुंदर ने।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। अब आइए अंतरा मित्रा और अरिजीत सिंह को सुनते हैं फिल्म दिलवाले में। अमिताभ भट्टाचार्य की रचना है, संगीत दिया है प्रीतम ने।

प्रेम रतन धन पायो, इस फिल्म का गीत सुनिए पलक मुच्छल और साथी की आवाज़ों में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म सभी का ये गीत जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में। रश्मि विराग की रचना है, संगीत दिया है जावेद मोहसिन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पापिया गांगुली के स्वर में भजन और गीत। इनसे पहले आइए सुनते हैं ये भजन।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पापिया गांगुली के स्वर में भजन। इनसे अब आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पापिया गांगुली के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है? इधर तो
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। समीर की रचना है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। फूल और कांटे, अब आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में।

चोरी चोरी चुपके चुपके, इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। समीर की रचना है, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म सोल्जर का ये गीत अलका याज्ञिक और कुमार सानू की आवाज़ों में। समीर की रचना है, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम स्टम्प्ड।
1: रात 9 बजे।

0: जी हाँ बिल्कुल, आपसे भी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: देशभक्ति गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला प्रसारण।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसे

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने को हैं। आप सुनेंगे बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम भोजपुरी लोकगीत सुनवा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कमलेश प्रसाद सिंह के गाए कुछ लोकगीत।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आपने कमलेश प्रसाद सिंह के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। एक अंतराल लेंगे, उसके बाद सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अभी आपने धनंजय पांडे के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। इसी के साथ बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
1: श्रोता सखियों को रंजना का नमस्कार। सखियों, आज आपसे हम बातें करेंगे हंसने से स्वास्थ्य और शांति कैसे मिलती है। पहले थोड़ा हंस तो लें, तो सुनिए क्या है हंसने की वजह। पति बोलते हैं, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? पत्नी बोलती है, क्योंकि मैं रोज़ आईने में देखती हूँ। तो पति ने कहा, तो मैं क्यों नहीं सुंदर हूँ? पत्नी बोली, क्योंकि तुम आईना नहीं मोबाइल देखते रहते हो। आईना थोड़ी सी हंसी तो थोड़ा और हंस ले। पति बोलते हैं, आज खाने में क्या बना है? पत्नी ने तपाक से कहा, स्पेशल डिश। पति ने कहा, क्या? तो पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो और खुश हो जाओ। आई ना हंसी। तो सखियों, इसी तरह छोटी छोटी बातों पर भी हंसने का मौका ज़रूर निकालिए। कहा जाता है, हंसी वह दवा है जो बिना किसी कीमत के हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। जब मन में खुशी होती है, तभी सच्ची शांति का अनुभव भी होता है। आज हम अपनी जिम्मेदारियों में उलझकर मुस्कुराना ही भूल गए हैं। लेकिन यह भी हम सखियों को समझना होगा कि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, तब तक परिवार को सच्ची खुशी हम नहीं दे पाएंगे। हंसी केवल चेहरे की मुस्कान नहीं, यह हमारे दिल की आवाज़ होती है। जब हम दिल से हंसते हैं, तनाव कम होता है और मन हल्का भी होता है और सोच सकारात्मक भी बनती है। और सकारात्मक सोच बनती है तो मन

सखियों, सचमुच खुश होने के कई तरीके हैं। अब आप कौन से किस तरीके से खुश होती हैं और आपके आसपास का माहौल कैसे अच्छा रहता है, ये आप पर ही निर्भर है। और एक और रास्ता है जब हम खुश होने के लिए अपने आप को मुखरित करें, यानी हमारी जो भी अच्छाई है, बुराई है, उसको किसी के साथ हम साझा करते हैं, तब भी हमको लगता है हमने अपने मन की बात कह ली। और प्रेस, हाँ, प्रेस भी एक ऐसा आईना है जो समाज को दिखाता है और हमारी आवाज़ को सुनाता भी है। प्रेस, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं, ये समाज में हो रही घटनाओं को उजागर करता है, न्याय की दिशा में कदम भी बढ़ाता है। और महिलाओं के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो सुरक्षा, शिक्षा, अधिकार, समानता को खुलकर सामने भी लाता है, जो पहले घर की चार दीवारी में दबकर रह जाते थे। और प्रेस ने उन आवाज़ों को भी मंच दिया है। प्रेस हमें जागरूक भी करता है और हमारे अधिकारों को, कानून को और कर्तव्य को भी बताता है। और हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, सही और गलत की जिम्मेदारी में कैसे फ़र्क करें, ये हमारे पर निर्भर है। और हमारे आसपास का माहौल भी हम इससे सीख सकते हैं कि हमको कहाँ, कैसे, कितनी स्वतंत्रता के साथ खुद को प्रस्तुत करना है और मीडिया का सकारात्मक उपयोग करना है, जिससे हमारी आवाज़ मुखर हो, लोगों तक पहुँचे। और जब हम इस ओर बढ़ते हैं तो हमको एक रास्ता भी मिलता जाता है और सहयोग करता है प्रेस मीडिया। और कई तरीके हैं, हम रेडियो के द्वारा, अखबार के द्वारा और टीवी के द्वारा जानकारी भी लेते हैं और अपनी जानकारी दे भी सकते हैं। सखियों, अपने विषय में हम यदि कुछ सोचते हैं और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। और यही हमारे महापुरुषों के बताए रास्ते से हम सीख सकते हैं। अब भगवान बुद्ध के संदेश अहिंसा, करुणा और सत्य मध्यम मार्ग पर आधारित हैं। उन्हें आत्मविजय, मानसिक शांति और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना उन्होंने बताया और इसको जीवन का सार भी बताया। उनके उपदेश मानवता को बैर भाव छोड़कर प्रेम और शील सदाचार से जीने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की बातों को, उनके बताए रास्ते को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम एक सफल और लोकप्रिय इंसान बन सकते हैं। और सखियों, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही लेकिन मिलता जरूर है। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसी थी।

जीवन में कितने ही सुख हो, साथ में दुख भी हो, किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है, क्योंकि मंजिल कितनी ही पास हो, कुछ कदम चलना तो जरूरी होता है। तो इसीलिए अपनी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता के इंतज़ार में अपने को सकारात्मक सोच में लगाए रखिए सखियों।

तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी बदलेगी। चलते चलते हम बहनों को और भी बातें करेंगे, और लेकिन चलने पर भी कुछ बातें हम कर ले सकियों, क्योंकि चलना भी जिंदगी है। और पार्क की पगडंडी, आसपास की हरियाली, खूबसूरत फूलों को देखते हुए, क्यारियों को देखते हुए, और चिड़ियों की चहचहाट के बीच जो कदमों की आहट होती है, वो बहुत सुकून देती है। सुबह सुबह हर शहर के हर पार्क में ऐसे लोग आम दृश्य में दिखते हैं, जो टहलते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग अकेले शांतिपूर्वक चलते हैं, कुछ ग्रुप में हंसते खिलखिलाते चलते हैं, लेकिन सबका फिटनेस ही एक फॉर्मूला होता है और मकसद भी होता है। कोई स्लो वॉक, कोई इंटरवल वॉक, तो इस तरह अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। लेकिन एक लोकप्रिय तरीका है आयुर्वेद में भी, तेज चलने को, चलने से प्राणवायु मिलती है और इसीलिए शरीर की सक्रियता भी बढ़ती है और शरीर को स्फूर्ति भी मिलती है। तो बस चलते रहिए।

0: चलते चलते अपनी सखियों से हम यही कहेंगे कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है, और आप हमारी सखी सहेली तो हैं ही। तो रंजना आज आपसे विदा लेती है, कहती है नमस्कार।
1: महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, श्रोता भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। और इस समय आप हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। हिंदी में समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: के साथ मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगण कर्मी का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
3: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
2: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं

0: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को 7 से हरा दिया। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 600 किलोहर्ट्ज पर 1:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम किस लय के अंतर्गत अब लीजिए सुनिए। छुट्टियां कैसे निखारे प्रतिभा, छुट्टियों में कैसे निभारे निभाएं, कृपया पुनः सुन लें। छुट्टियों में कैसे निखारे प्रतिभा विषय पर सुनिए सीमा कुमारी की ये वार्ता।
2: गर्मी की छुट्टियां यानी बच्चों के लिए मौज मस्ती और सीखने सिखाने के दिन, समर क्लासेस से लेकर ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके जरिए आप अपने बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ा सकती हैं और उनकी प्रतिभा तराश सकती हैं। छुट्टियों में बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं, वे सृजनात्मक होते हैं, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत होती है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि वो छुट्टियों में कुछ नया गढ़ सकें। खिलौने बनाना एक प्रतिभा है, बच्चे रचनात्मक कामों से ज्यादा सीखते हैं। आप चाहें तो उन्हें कागज के खिलौने बनाना सिखा सकते हैं। इन दिनों मोल्ड्स भी काफी फैशन में है। आप चाहें तो बच्चों को कागज या क्ले से जहाज, गुड़िया, पक्षी और जानवर बनाना सिखाने से शुरुआत कर सकते हैं। ये सीखने पर बच्चे स्कूल के क्राफ्ट असाइनमेंट खुद बना लेंगे। स्विमिंग करना भी बच्चों की प्रतिभा का अच्छा उदाहरण है। स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर बच्चे काफी खुश होते हैं। स्विमिंग बच्चों के लिए मस्ती के साथ साथ एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। समर क्लासेस से भी बच्चों को स्विमिंग का भरपूर मौका मिलता है। आज के दौर में स्विमिंग की बात करें तो बच्चों के साथ साथ किशोरों और युवाओं में भी स्विमिंग के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। अब बात कंप्यूटर क्लास की। दोस्तों, कंप्यूटर आज के जमाने की जरूरत बन गया है। ऐसे में आप चाहें तो गर्मी के इन छुट्टियों में कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। ऐसे कई कोर्स हैं जिनके जरिए न सिर्फ बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है बल्कि वे कंप्यूटर में दक्ष भी हो सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको ऑनलाइन या घर के पास स्थित कंप्यूटर सेंटर पर भी मिल जाएगा। बच्चों के संग बच्चा बन जाना भी उनके प्रतिभा को तराशने में मदद करता है। यदि आपका बच्चा अभी छोटा है यानी 4-5 साल का ही है तो आप बच्चों के साथ तरह तरह के गेम्स खेलकर बच्चों के साथ अपने रिश्तों को और भी प्यारा बना सकती हैं। आम दिनों में बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाती हैं, तो कम से कम गर्मी की छुट्टियों में हर दिन बच्चों के साथ कुछ समय जरूर

खेलें। बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहें। आप चाहें तो छुपा छुपी, कैरम जैसे खेल के जरिए भी बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकती हैं। शतरंज तथा व्यापारी जैसे खेल भी बच्चों की प्रतिभा निखारने में सहायक होते हैं। खेल बच्चों, किशोरों तथा युवाओं के प्रतिभा के साथ साथ सर्वांगीण विकास में भी सहायक हैं। अब बात करेंगे बच्चों को घुमाने की। स्कूल के दिनों में बच्चों के पास इतना समय नहीं होता कि वे कहीं घूमने जा पाएं। छुट्टियों में बच्चों को शहर में ही कहीं घुमाने ले जाएं, जैसे चिड़ियाघर, म्यूजियम आदि। इससे बच्चों को ढेर सारी जानकारियां मिलती है। इस दौरान बच्चा अपने अनुभव से जो कुछ सीखेगा वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। गर्मी की छुट्टियों में टैलेंट निखारने का भरपूर मौका मिलता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की प्रतिभा को पहचाने, बच्चों तथा किशोरों की प्रतिभा को तराशें, तभी उनका समुचित विकास हो पाएगा। म्यूजिक सीखना भी आज के दौर में प्रचलन में है। म्यूजिक क्लासेस के प्रति लोगों की रुचि इन दिनों काफी बढ़ गई है। यूं तो संगीत सीखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन आज के दौर में इसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन आया है। आज म्यूजिक को बच्चे तथा युवा करियर के तौर पर आजमा रहे हैं और उन्हें काफी सफलता भी मिल रही है। म्यूजिक शिक्षक के रूप में स्कूल तथा कॉलेजों में भी युवाओं को नौकरी मिल रही है। इतना ही नहीं, कला संस्कृति विभाग में भी हर जिले में एक अधिकारी का पद सुनिश्चित है। बच्चों की रुचि यदि म्यूजिक में है तो माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि बच्चे उस क्षेत्र में करियर भी बना सकें। डांस क्लासेस की बात करें तो डांस क्लास भी बच्चों को प्रतिभा निखारने का मौका खूब देता है। शास्त्रीय नृत्य तनाव को कम करने, मूड में सुधार करने और विश्राम को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। इस प्रकार नृत्य भी हमारी प्रतिभा को निखारता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां 8 हैं: कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, संत्रिया और मोहिनीअट्टम। ये तमाम शैलियां बच्चों की प्रतिभा निखारने में सहायक है। दोस्तों, वाद्य यंत्र बजाना भी प्रतिभा निखारने का एक माध्यम है। वाद्य यंत्र में तबला, बांसुरी, मृदंगम, वीणा, ढोलक, नाल, ढोल आदि प्रमुख हैं। वीणा सुर ध्वनियों के लिए भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाला सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सिलाई जानना तो न सिर्फ प्रतिभा निखारना है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जरूरत है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ये कला आनी चाहिए ताकि उन्हें जरूरत पड़ने पर दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। कई बार ऐसा भी होता है कि मम्मी घर पर ना हो और शर्ट की बटन टूट गई हो। ऐसे स्थिति में बटन टांकने की जानकारी नहीं होगी तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हमें लड़का लड़की में भेद न करते हुए उन्हें इस कला में भी दक्ष बनाना चाहिए। आजकल बड़े बड़े शहरों में महिला से ज्यादा पुरुष टेलर की संख्या है। इसमें करियर बनाने के लिए लोग अच्छे संस्थानों से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब बात कुकिंग की। कुकिंग का क्रेज भी लोगों में काफी बढ़ गया है। पहले महिलाएं खाना बनाने का काम करती थीं, लेकिन बदलते परिवेश में पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है। खाना बनाने का कौशल भी प्रतिभा को बयां करता है। पौष्टिक और डेलिशियस कुकिंग भी प्रतिभा है। कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है, यही वजह है कि पुरुष भी कुकिंग करने में रुचि लेने लगे हैं। आज बड़े बड़े होटलों में पुरुष शेफ की संख्या भी काफी तादाद में है। भोजन हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, ऐसे में कुकिंग की प्रतिभा तमाम पुरुष तथा महिलाओं में होनी चाहिए। कुकिंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए आज बड़े बड़े संस्थानों से बच्चे होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी रोजगार की संभावना खूब होती है। बड़े बड़े होटलों तथा रेस्तरां में अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिल जाती है। मतलब कुकिंग स्किल के साथ आपके पास यदि डिग्री भी है तो जॉब की गारंटी है। पेंटिंग जानना भी प्रतिभा है। तरह तरह के पेंटिंग्स हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
पहले

डिजाइन ड्रॉ करना फिर उसमें रंग भरना दोनों ही कला है। पेंटिंग की कला तो अद्भुत होती है। बच्चों में यदि पेंटिंग की रुचि दिखाई दे तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आज मार्केट में सस्ते से लेकर एक से एक महंगे पेंटिंग्स हैं। मतलब साफ है कि यदि हमारी रुचि पेंटिंग के क्षेत्र में है तो हम इसमें रोजगार भी तलाश सकते हैं। यदि आपके अंदर प्रतिभा है और आपने अपनी रुचि के अनुसार उसे रोजगार का रूप दे दिया तो आपकी कला में चार चांद लग जाता है। मूर्ति कला भी एक आर्ट का अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब बात हस्तकला की। दोस्तों, हस्तकला में भी कई तरह के आर्ट हैं जो आपकी प्रतिभा को निखारते हैं। इसमें मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुखौटे बनाना, बांधनी, रंगोली, बेंत का कार्य आदि शामिल है। टिकुली आर्ट भी हाथ के कार्यों में काफी विख्यात आर्ट माना जाता है। ये मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों से बनाया जाता है। हस्तकला प्रदर्शनी में युवाओं की प्रतिभा साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरकार द्वारा भी समय समय पर हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई जाती है ताकि युवाओं की प्रतिभा की गूंज दूसरे राज्यों तक पूरे देश में पहुंच सके आज युवाओं को हस्तकला में महारत हासिल है। इस प्रदर्शनी में लोग आते हैं। ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन प्रतिभा को सम्मान दिलाने के लिए किया जाता है। लोग दूर दूर से इस प्रतिभा के रंग को देखने के लिए आते हैं। हस्तकला समाज में जमी हुई है और हमारी परंपराओं को संरक्षित करने तथा प्रसारित करने में योगदान देती है। इसे माता पिता द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छुट्टियों में भाषा सीखकर भी हम अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। हमें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। कई भाषाओं का ज्ञान हमें भिन्न भिन्न समाज और संस्कृति में सामंजस्य बिठाने में हमारी मदद करता है। स्कूल के दिनों में बच्चों के पास समय की कमी होती है। पढ़ाई के अलावा उन्हें अतिरिक्त गतिविधियों पर भी काम करना पड़ता है। बेहतर होगा कि हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान कराएं। इसके लिए कई संस्थान भी शहरों में खोले गए हैं जहां बच्चे विभिन्न राज्यों या विदेशी भाषाओं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश आदि सीख सके। बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने गांव जाना चाहिए तथा दादा दादी नाना नानी के साथ रहकर अपनी संस्कृति और भाषा से रूबरू होना चाहिए। कई भाषाओं को जानना हमारे लिए फायदेमंद होता है। हमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नौकरी का मौका बड़ी आसानी से मिल जाता है। यानी गर्मी की छुट्टियों में हम विभिन्न भाषाओं को सीखकर अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। एक नई भाषा सीखने में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये सब महत्वपूर्ण है। इसमें कभी कभी एक नई वर्णमाला और लेखन प्रारूप भी शामिल है। भाषा सीखने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। भाषा सीखकर व्यक्ति उसकी अभिव्यक्ति आसानी से कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की जानकारी भी लें। बच्चों की प्रतिभा निखारने में पढ़ाई के अलावा कई एक्टिविटी होती है जिसमें कराटे क्लास भी एक है। बालिकाओं के लिए भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे लड़कियां किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना कर सकें। हालांकि स्कूल में भी आजकल कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है। गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप का आयोजन कर कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे बच्चों में काफी उत्साह देखा जाता है। कराटे सीखने के लिए एक सही स्कूल और एक अच्छे कराटे मास्टर की जरूरत होती है। वैसे तो हर प्रकार के कोर्स मौजूद हैं, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल का कोर्स। यदि आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। पूरी ट्रेनिंग करने के बाद आप इसमें करियर भी बना सकते हैं। इन दिनों कराटे की प्रतिभा भी डिमांड में है। तो देखा आपने, ऐसी कई कलाएं हैं जिसे सीखकर हम अपनी प्रतिभा में चार चांद लगा सकते हैं।
हमने इस बारे में कई लोगों की राय जाननी चाहिए।

0: रही, जिसमें डॉक्टर्स की राय से पता चला कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में भी मौका देना चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा में भी निखार आए और बच्चे अलग गतिविधियों को सीखकर मानसिक तौर पर आनंदित महसूस कर सकें। मैंने जब इस बारे में शिक्षकों की राय ली तो पता चला कि बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अन्य गतिविधियों से ही उनका सर्वांगीण विकास संभव है। पढ़ाई के अलावा बच्चों को जब अन्य कलाओं के प्रदर्शन का मौका मिलता है तो उनके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाता है, उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर भी निखर जाता है। एक अभिभावक के तौर पर मेरा ये अपना मानना है कि बच्चों तथा किशोरों को पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। छुट्टियों में उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का अच्छा अवसर मिलता है। शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में बच्चों की रुचि होगी तभी उनका सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा।
1: छुट्टियों में कैसे निखारे प्रतिभा, इस विषय पर अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी सीमा कुमारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे देशभक्ति गीत।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभवाणी,
6: लाभवाणी,
5: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
7: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सोनू निगम को सुनिए फिल्म वजीर में, विधु विनोद चोपड़ा के बोल, शांतनु मोहित्रा का संगीत और साथ में श्रेया घोषाल।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी। वैसे फिल्म से ये नगमा था मिर्जा गालिब के बोल। शांतनु मोहित्रा का संगीत, आवाज संवाद किरकिरे ने थी। और अब सुनिधि चौहान को सुनिए, गीत लिया है फिल्म अक्टूबर से। संवाद किरकिरे के बोल हैं, शांतनु मोहित्रा का संगीत।

सुनिधि चौहान का अपने सुना फिल्म अक्टूबर में संवाद किरकिरे के बोल और शांतनु मोइत्रा का संगीत। इन्हीं के संगीत में अगला गीत हम सुनवा रहे हैं मद्रास कैफे फिल्म से। अली हयात के बोल हैं, आवाज दी है पापुन ने।

खोया खोया चांद फिल्म से आप ये नगमा सुन रहे थे। प्रणव विश्वास और श्रेया घोषाल को आपने सुना, संवाद किरकिरे के बोल, शांतनु मैत्रा का संगीत। और अब अगला गीत है फिल्म विल्डन अब्बा से, अशोक मिश्रा के बोल, शांतनु मैत्रा का संगीत। आवाज दी है राघव और राजा हसन ने।

विल्डन अब्बा फिल्म में अभी आपने राघव और राजा हसन को सुना, अशोक मिश्रा के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात पटना स्थित 7 सर्कुलर रोड पर नीतीश कुमार के नए आवास पर हुई। लगभग आधे घंटे तक चली इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। हालांकि मुलाकात को औपचारिक बताया गया है, लेकिन इसे कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जल्द ही संभावित मंत्रियों की सूची लेकर दिल्ली जा सकते हैं, जहां पार्टी नेतृत्व के साथ अंतिम चर्चा के बाद कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी मिल सकती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया। राज्यभर में घरों की सूची बनाने और आवास गणना के साथ यह प्रक्रिया आरंभ की गई है। स्वगणना के लिए दी गई 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई थी। गृह मंत्रालय के अनुसार घर घर जाकर गणना और आवासों की गिनती की प्रक्रिया 30 मई तक जारी रहेगी। इस दौरान प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। जो नागरिक स्वयं यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं, उनके विवरण अब गणनाकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर दर्ज किए जाएंगे। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फलगन सिंह कुलस्ते करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम

आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड की विभिन्न मीडिया इकाइयों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री कुमार ने सभी मीडिया इकाइयों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया इकाइयों को डिजिटल मीडिया तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। यह संदेश केवल परीक्षण के लिए था। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसे दूर संचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत करने और आपदाओं के दौरान त्वरित सूचना देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज जदयू के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की। ये मुलाकात पटना वाक़ सात सर्कुलर रोड पर नीतीश कुमार के नए रेसिडेंस पर हुई। लगभग नसीब घंटे तक चली इस मीटिंग में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। हालांकि इस मुलाकात को रस्मी बताया गया है, लेकिन इसे काबीना की तौसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी जल्द ही मुमकिना वज़रा की फहरिस्त लेकर दिल्ली जा सकते हैं, जहां पार्टी क़्यादत के साथ आखिरी बहस के बाद काबीना की तौसी को हरी झंडी मिल सकती है। रियासत में मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला आज शुरू हो गया है। पूरी रियासत में घरों की फहरिस्त साजी करने और मकानों की गिनती के साथ इस अमल का आगाज़ हुआ है। खुद शुमारी के लिए दी गई 15 दिनों की कबल इत्तला की मुद्दत कल ख़त्म हो गई थी। वज़ारत दाखला के मुताबिक घर घर जाकर मरदमशुमारी और मकान शुमारी का अमल 30 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान तरबियत याफ्ता शुमार कुनिंदा घर घर जाकर ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे। जो शहरी बजाते खुद इस अमल को नहीं कर पाए हैं, उनकी तफसीलात अब शुमार कुनिंदा के ज़रिया घर घर जाकर दर्ज की जाएंगी। मरदमशुमारी 2027 का दूसरा मरहला अगले साल फरवरी में मुनाकिद किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साल 2026-27 के लिए चार पार्लियामानी बोर्ड की तश्कील नौ की है। लोकसभा से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 अराकीन वाले प्रेडिक्शन बोर्ड का चेयरमैन तकरर किया गया है। लोकसभा से कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल को पब्लिक ऑडिट कमेटी का सदर बनाया गया है। वहीं दर्ज फहरिस्त जात और कबाइल फलाह कमेटी की सदारत लोकसभा में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। इन कमेटी की मुद्दत कार अगले साल 30 अप्रैल तक रहेगी। वज़ारत इत्तला व नशरियात के सेक्रेटरी चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड की मुख्तलिफ मीडिया इकाइयों की जायज़ा मीटिंग की। इस मीटिंग में PIB, मरकज़ी संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अफसरान मौजूद

0: تھے۔ میٹنگ میں جناب کمار نے سبھی میڈیا اکائیوں کو بہتر رابطے کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سبھی میڈیا اکائیوں کو ڈیجیٹل میڈیا تکنیک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے اپنی صلاحیت کو بڑھانا چاہیے۔ مرکزی حکومت نے دیسی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے شہریوں کو آفات کی فوری اطلاع دینے کے لیے سیل براڈ کاسٹ سسٹم شروع کیا ہے۔ اس سسٹم کا تجربہ کرنے کے لیے آج دوپہر تقریباً 12 بجے لوگوں کے موبائل پر سائرن کے ساتھ ایک نوٹس بھیجی گئی۔ تجربہ کے دوران پیغام میں لکھا تھا، سترک ناگرک، سرکشت راشٹر۔ یہ پیغام صرف ٹیسٹنگ کے لیے تھا۔ مرکزی وزیر مواصلات جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا کہ اسے محکمہ ٹیلی مواصلات نے قومی آفات انتظامیہ اتھارٹی کے تعاون سے فروغ دیا ہے۔ جناب سندھیا نے کہا کہ مستقبل میں اسی سسٹم کے توسط سے آفات کی گھڑی میں مقامی زبان میں اور مقام کے مطابق فوری طور پر الرٹ بھیجے جا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہل شہریوں کی حفاظت کو مزید مضبوط کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ بہار کھیل یونیورسٹی راجگیر کے ذریعے تعلیمی سیشن 2026-27 کے لیے مختلف کھیل شعبے میں داخلہ کی آخری تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ اب خواہش مند امیدوار 15 مئی تک آن لائن درخواست کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कहां चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
7: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 19 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.crpf.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर तथा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अथवा अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या 2 अथवा 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 3

वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 14 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर के 731 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 27 वर्ष एवं ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा जिसकी अंतिम तिथि है 15 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के समय 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।

0: Linnika. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में

0: डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में मत पत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
3: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष

0: से आकर्षिता सिंह।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई

0: रणजिंग स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: वे 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने अरिजीत सिंह को सुना। इस गीत को हमने लिया था फिल्म बाजीराव मस्तानी से। नासिर फराज के बोल और प्रीतेश नीतीश शंकर का संगीत। और अब श्रेया घोषाल को सुनिए। फिल्म है कलंक। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत प्रीतम का।

कलंक, इसी फिल्म से ये नगमा आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत था। और अब उस्ताद राशिद खां को सुनवा रहे हैं फिल्म जब वी मेट में। इरशाद कामिल के बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

जब वी मेट। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म में उस्ताद राशिद खान को, इरशाद कामिल की बोल, प्रीतम का संगीत, और अब अदिति पाल को सुनवा रहे हैं फिल्म रामलीला में सिद्धार्थ गरिमा की बोल और संजय लीला भंसाली का संगीत।

पद्मावत, इस फिल्म में भी आपने शिवम पाठक को सुना। ए एम तुराज के बोल, संजय लीला भंसाली का संगीत, और अब सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज के गाए इस गीत को, जिसे लिखा है सईद कादरी ने, प्रीतम ने इसे संगीतबद्ध किया है फिल्म बर्फी के लिए।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अपराह्न के 3 बज रहे हैं, संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।

फिल्म दो चोर का ये गाना आप सभी सुनना चाहते थे। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, सुनवी और जयपाल यादव, और इसी गाने को सुनना चाहते थे। आपने ये खत लिखा है, नोखा से प्रेम बलबीर, हरि सिंह, दुर्गा देवी, अनिल, अनुप्रिया, सीता और कैलाश। आप सबने भी अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

यह अवस्थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था, सुनने वाले हैं आप जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियांज और रिफाकत। इसी गीत को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और ये हैं देशमुख पेट अकोला से महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस जैन, जयेश, ऋषभ और संयम जैन। हमें उम्मीद है आप सभी ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

यह अवस्थी किशोर कुमार की फिल्म याराना के लिए गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे राजेश रोशन। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखा गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और उनके परिवार वालों ने। और आप हैं अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आपने अपना नाम लिखा है। कृष्ण कुमार डागी, भूपत कुमार डागी, राधा देवी डागी, विक्रम, अर्चना और पूरा डागी परिवार। आपने लिखा है जिला बालोतरा से ये खत। हमें उम्मीद है आपने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

0: जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी,
1: रूठा यार मना मित्रा,
0: यार को यार बना मित्रा,
1: न खुद से रहो।

फिल्म शोर का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर और अन्य साथियों का गाया हुआ। गीतकार थे राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वालों ने इस गीत को सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे एक श्रोता हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, आवाज मोहम्मद रफी की। सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं कवन कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूराज और उनके परिवार वाले।

मोहम्मद रफी को आपने सुना, फिल्म का नाम था आप तू ऐसे न थी। गीतकार निदा फाजली थी और संगीतकार थी उषा खन्ना। मनचाही गीत की कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम है ममता। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी की रचना और रोशन की धुन। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला अम्बाला से शहनवाज आलम, सरफरोज बेगम, शाह उमर आलम और उनके परिवार के अन्य लोग। और इसी गीत को सुनना चाहती हैं बोरीवली गोराई महाराष्ट्र से एकता और उनके परिवार वाले।

इस दो गाने के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ही कार्यक्रम पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल। ये नाटक गोगोल के मूल नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल, इस नाटक का पहला भाग।
1: मिश्का, मिश्का।
2: जी हजूर।
1: सब लोग आ गए या नहीं?
2: जी जज साहब और स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब तो तशरीफ ले आए। लेकिन आरती फिलपौतिक जामली निका साहब,
1: इतने लंबे चौड़े नाम की जगह हेल्थ ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है?
2: जी हाँ, बस वही नहीं आए।
1: आएंगे कैसे, वो तो अस्पताल के कोने में बैठे तंबाकू का धुआं उड़ा रहे होंगे। उन्हें इस बात की क्या फिक्र के यहाँ बैठे बैठाए मुझे मौत का परवाना मिल गया है। शहर का मेयर होना भी क्या मुसीबत है। अबे तू खड़ा खड़ा मुझे अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रहा है? भाग यहाँ से, चल चल। और सुन, जैसे ही वो हेल्थ ऑफिसर अंदर कदम रखे ना, मुझे इत्तला मिलनी चाहिए, समझा?
2: जी अच्छा।
1: अच्छा अच्छा, तू रहने दे रहने दे रहने दे, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हाँ
2: जी बहुत अच्छा। मौसम कितना प्यारा हो रहा है।
1: अरे आप आ गए मिस्टर जेमलियानी का।
2: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए।
2: माफी चाहता हूँ मेयर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। दरअसल मैं
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा ख्याल है अब मुझे असली बात शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ दी गई है।
2: जी जी।
1: साहिबान, आज सुबह सुबह एक बुरी खबर मिली है
2: जी।
1: मुझे मालूम हुआ कि पीटर्सबर्ग से एक इंस्पेक्टर जनरल हमारे शहर का मुआयना करने आ रहे हैं।
2: इंस्पेक्टर जनरल पीटर्सबर्ग से?
1: जी हाँ, सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल साहब को सीक्रेट ऑर्डर्स दे रखे हैं। वो इस शहर में भेस बदल कर रहेंगे।
2: भेस बदल कर?
1: यकीन मानिए साहिबान, मुझे तो जैसे पहले से ही इंस्पेक्टर जनरल के आने का अंदेशा हो गया था। ठहरिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं आप लोगों को अपने दोस्त की चिट्ठी सुनाता हूँ जिसके जरिए मुझे ये खतरनाक खबर मिली है। लिखा है, प्रिय एंटनोविच, ईश्वर तुम्हारी सेहत बराबर बनाए रखे, वगैरह वगैरह। हाँ सुनिए सुनिए दोस्त, एक जरूरी खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर जनरल भेस बदलकर पूरे प्रांत का दौरा लगा रहे हैं जिसमें वो हमारे शहर का खास तौर से मुआयना करेंगे।
2: मुआयना खास तौर से?
1: जी हाँ, मुझे ये सूचना एक बहुत ही खास आदमी से मिली है, लेकिन जो अपने को बहुत ही मामूली आदमी कहने का ढोंग करता है। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्त, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम जरा ज्यादा ही अपनी मुट्ठी गर्म करने की फिराक में रहते। मेरा दोस्त भी देखो ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग कोई गैर थोड़े ही हैं। हाँ हाँ, तो साहिबान आगे लिखता है, ध्यान रखना एंटन एंटोनोविच, इंस्पेक्टर किसी भी दिन पहुंच सकता है, और क्या मालूम पहुंच ही गया हो और खुफिया तौर पर वहां रह रहा हो। परसों मैं अपनी चचेरी बहन अन्ना की लोबना के यहां गया था। मेरा जीजा तो एकदम भैंस जैसा भारी हो गया है, और हर बाकी सब हमारी घरेलू बातें लिखी हुई है।
3: लेकिन मियां साहब, ये तो एकदम नामुमकिन लगता है, भला यूं चोरी से हमारे शहर में आना।
2: क्यों साहब, हमारे शहर में इंस्पेक्टर भेजने का मतलब, हम तो राजधानी से पहले ही इतनी दूर पड़े हुए हैं, बेबात ही हमें छेड़ने में फायदा।
1: ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट

0: लेफ्टिनेंट साहब,
1: जी
0: आज तक दूसरे शहरों का मुआयना होता रहा
1: जी
0: और हम चैन की बंसी बजाते रहे।
1: जी हाँ
0: आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाती? आज हमारा भी नंबर आ गया।
2: मेयर साहब,
0: जी
2: अगर मैं गलती पर नहीं हूं
0: हाँ।
2: तो इस मुआयने के पीछे जरूर कोई गहरी राजनीतिक वजह है।
0: जी
2: हमारी सरकार जल्द ही लड़ाई की घोषणा करने वाली है।
0: हैं।
2: सरकार ने चुपचाप इस आदमी को भेजा होगा कि देखना इधर उधर बगावत तो नहीं हो रही है।
0: वे वे, वे वे, वे वे, क्या बात कही है। इस पर आप अपने आप को बहुत ही अकलमंद और विद्वान कहते हैं। इस छोटे से

0: की किचकी आंखें हैं।
1: इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना काम देखना है अपना। इस शहर के मेयर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। आप लोगों को भी मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ।
2: जरूर जरूर,
3: जरा ध्यान दीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब।
1: मैं आप सबसे ये बात कह रहा हूँ, पहले आप ही सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब
2: जी।
1: इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे, जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए। ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप
2: जी?
1: चाहे तो वो भी ढका हुआ हो। हाँ, सिर पर टोपी पहना दीजिए।
2: ये तो बहुत मामूली बात है मेयर साहब, मैं अभी सब इंतजाम कर रह देता।
1: और मरीजों से कहिए तंबाकू पीना बंद करें। अस्पताल के कमरे अच्छी खासी फैक्ट्री की चिमनी दिखाई देते हैं। सुनिए, मरीजों को पहचानने के लिए उनके बिस्तरों पर तख्तियां लटका देना जिनमें झूठ मूठ मरीज का नंबर, बेड नंबर और बीमारी का नाम लिखा होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रहे कि ये तख्तियां लेटिन, ग्रीक या किसी और भाषा में लिखी जाए ताकि इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ ना पड़े, समझे आप? और हाँ, कुछ मरीजों को जबरदस्ती छुट्टी भी दे दीजिए। अफसर इतनी भीड़ देखेगा तो समझेगा यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है।
2: जी जनाब, मैंने और डॉक्टर हिब्बर ने तो शुरू से ही अस्पताल को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही उत्तम मानते हैं, बेकार कीमती दवाओं पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा। देखिए, और हमारे मरीज, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जगह दे, बहुत ही भले नागरिक हैं। जिन बेचारों को अच्छा होना होता है अपने आप अच्छे हो जाते हैं, और जिन्हें मरना होता है चुपचाप मर जाते हैं।
1: अब आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ जज ल्यापकिन त्यापकिन
4: जी।
1: आप इस शहर के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज हैं
4: जी। हाँ,
1: लेकिन आपकी अदालत और जेल से तो चिड़ियाघर अच्छा है, है?
4: जी,
1: हर कमरे में चपरासियों की पाली हुई मुर्गियां और बत्तखें आजादी के साथ घूमती रहती हैं, और आने जाने वाले वकीलों और मुवक्किलों के पैरों से चिपटकर जबरदस्ती प्यार करती रहती है। मैं मानता हूँ मुर्गी पालन बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ईश्वर के लिए इस नेक काम से अदालत को तो बख्शिए।
4: ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब, मैं सारी मुर्गियों बत्तखों को आज ही हलाल कर देता हूँ। अभी आइएगा ना आज शाम के खाने पर।
1: जेल तो परले सिरे का कूड़ा घर ही नजर आता है, कहीं जंगली जानवरों की खाल सूख रही है तो कहीं आपकी बंदूक शोभायमान हो रही है। खुशी की बात है कि आपको शिकार का इतना शौक है, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर मुआयना नहीं करता आप ये गोदाम किसी और जगह बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। बाद में चाहे फिर उन चीजों को यहाँ ले आइएगा, समझे आप? और आपका जो वो बूढ़ा मुंशी है ना
4: जी,
1: माना कि उसे सारा कानून पहाड़े की तरह रटा हुआ है, लेकिन उसके पूरे शरीर से शराब की ऐसी भयंकर बू आती है कि बाप रे, मैं तो एक मिनट भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता।
4: मजे की बात यह है मेयर साहब कि ये मेरा मुंशी शराब छूता तक रही। बात यह है, हुआ ये कि बचपन में
1: अगर उसके बदन से कुदरती तौर पर ऐसी बू आती है तो मामला और भी टेढ़ा है। उससे कहिए प्याज लहसुन या ऐसी किसी तेज बू वाली चीज का सेवन करे जो शराब की बू को मार दे, या फिर फौरन डॉक्टर के पास भागे। और हाँ, वो जज साहब, जरा आप भी अपने को अच्छी तरह टटोल
4: लीजिए। साहब मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, देखिए ना, रिश्वत भी लेता हूँ तो न लेने जैसी। शिकारी कुत्तों के पिल्ले, भला ये भी कोई रिश्वत है?
1: मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे वो शिकारी कुत्तों के पिल्लों के रूप में हो या किसी और रूप में।
4: वाह साहब, ये कैसे हो सकता है? रिश्वत तो वो होती है जनाब कि जब एक

0: दूरदर्शी और अपने विषय का पंडित है
1: जी,
0: लेकिन पढ़ाते वक्त उसे जो बेतहाशा जोश आ जाता है उसका क्या किया जाए। अभी उस दिन की बात है, वो बच्चों को जब तक असीरियनों का इतिहास बताता रहा तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सिकंदर महान पर आया, बस कुछ ना पूछो, अपनी कुर्सी से कूदा, एक कुर्सी उठाई और जोर से डेस्क पर दे मारी। मैं जानता हूं इस तरह से वो युद्ध का वर्णन कर रहा था। ठीक है, सिकंदर महान एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन इसके लिए स्कूल की कुर्सियां क्यों तोड़ी जाएं?
1: जी आप ठीक कहते हैं मियां साहब, मैंने भी एक दिन स्कूल का टूटा हुआ फर्नीचर सामने रखकर उसे समझाया, लेकिन उसको तो बस एक ही रट है।
0: क्या?
1: आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मैंने तो शिक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की कसम खा रखी है।
0: और मिटा वो हमें रहा है। जीवन कितना रहस्यमय है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है।
1: अजी शिक्षा विभाग से तो ईश्वर ही बचाए। अजी मेयर साहब, ये भी कोई चमत्कार ही है कि मैं इस लाइन में रहकर भी जिंदा हूँ, वरना ये अपनी अकल के आगे किसी की चलने दें।
0: मुआयना, वैसे मुआयना वैना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यूं भेष बदल कर।
1: जी, भेष बदल कर,
0: भेष बदल कर। मान लो वो अभी प्रकट हो जाए और कहे, अच्छा मित्रों तुम सब यहाँ जमा हो, हाँ तो तुम में से हेल्थ ऑफिसर कौन है
1: जी,
0: जरा आपके हाल चाल पूछने हैं, और जज साहब आप भी जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। दोस्तों हमारे लिए तो ये डूब मरने की बात हो जाएगी।
1: कौन? कौन? कौन?
2: नमस्कार
0: नमस्कार, तुम कोई नया समाचार लाए हो पोस्टमास्टर? मेरा मतलब है कोई खास चिट्ठी तो नहीं आई?
2: नहीं हुजूर, मैंने तो अभी अभी बॉब चिंस्की से ही ये भयानक खबर सुनी है।
0: तुम्हारा क्या ख्याल है पोस्टमास्टर?
2: ख्याल क्या है मेयर साहब, लड़ाई है और कुछ नहीं।
0: लड़ाई?
2: जी हाँ, हमारा देश भयंकर युद्ध करने वाला।
0: तुम्हारी बेवकूफी का भी जवाब नहीं है पोस्टमास्टर। अरे मियाँ, ये हमला हमारे शहर पर हो रहा है। ये चिट्ठी बता रही है कि इस लड़ाई के शिकार हम हैं, सिर्फ हम।
1: जी, जी।
0: मुझे लगता है जरूर किसी ने मेरी शिकायत की है। वैसे मैं डरता वरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नेक कामों का भगवान साक्षी है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट जरूर हो गई है। शहर के व्यापारियों ने जरूर मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर राजधानी में जहर उगला होगा।
2: जी हाँ, किसी की शिकायत पर ही इंस्पेक्टर यूं चोरी चोरी आ सकता है।
0: देखो पोस्टमास्टर, ये हमारे तुम्हारे दोनों के हित में है कि इस शहर से बाहर जाने वाली हर एक चिट्ठी को तुम खोल कर देख लिया करो। अगर उसमें हमारी शिकायत जैसी कोई बात नहीं लिखी है तो उसे फिर से चिपका कर या खुली ही आगे भेज दिया करो। और अगर वो समझ गए ना?
2: जी हाँ, समझ गया बिल्कुल समझ गया। और इसमें आपके समझाने की बात ही क्या है, मैंने तो बरसों चिट्ठियां खोलने और पढ़ने का धंधा किया है। कुछ चिट्ठियों में तो इतनी मजेदार बातें लिखी रहती है कि उन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करता।
0: सुनो, कोई ऐसी चिट्ठी तो तुमने नहीं देखी जिसमें पीटर्सबर्ग से अफसर आने की इत्तला हो?
2: जी नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चिट्ठियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। मेयर साहब, काश आपने भी एक आध चिट्ठी पढ़ी होती। वो मनोरंजक बातें, वो लच्छेदार शैली के पढ़ने वाले की तबीयत फड़क उठे।
0: अच्छा?
2: एक लेफ्टिनेंट ने अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिख रखी थी। आप वो चिट्ठी पढ़ना चाहेंगे?
0: शुक्रिया शुक्रिया, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ। मैंने जो सुझाव दिया है उसका तुम्हें ध्यान है ना?
3: ये भी ध्यान रहे पोस्टमास्टर साहब कि ऐसी हरकतों से तुम्हें जेल जाने में देर नहीं लगेगी।
0: आप बकते हो लियापकिन त्यापकिन, कोई सरे बाजार रिश्वत ले तो बेशक ये बुरा है, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है।
3: आपके सारे मामले व्यक्तिगत ही होते हैं मेयर साहब
0: जी।
3: हाँ छोड़िए, हाँ याद आया, ये बताइए क्या आप एक बहुत अच्छी नस्ल का शिकारी कुत्ता लेना पसंद करेंगे? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था।
0: मैं ये भेंट तुम्हें मुबारक हो मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, मुझ पर मेहरबानी करो। मेरे चारों तरफ तो भेष बदला हुआ इंस्पेक्टर नाच रहा है। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ बैठकर माज करो और इंतजार करो कि कब दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर है? लगता है इंस्पेक्टर जनरल सरपंच आ गए हैं। हे भगवान,
4: दरवाजा खोलिए मेयर साहब,
5: दरवाजा खोलिए मेयर साहब।
4: तुम चुप रह सकते हो डॉक्टर चिंस्की, मेरा बोलना काफी है।
5: पर बॉब चिंस्की, मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। मेयर साहब दरवाजा खोलिए।
0: ये आप दोनों महाशय हैं।
4: कमाल हो गया मेयर साहब, कमाल हो गया।
6: सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी।
1: क्या हुआ डॉबचिंस्की? क्या बात है, हुआ रे भाई, क्या हुआ?
6: अजीब
1: क्या
6: खबर है? हम लोग होटल में पहुंचे थे कि
4: हाँ, मैं और डॉबचिंस्की होटल में पहुंचे ही थे कि
6: डॉबचिंस्की, जब मैं बता रहा हूँ तो
4: अरे पर मुझे ही बताने दो ना डॉबचिंस्की, तुम्हारा कहने का ढंग बहुत ही बचकाना है।
6: लेकिन तुम बीच में भूल जाओगे, तुम्हें आज तक कोई चीज याद रही?
4: अरे जहाँ मैं भूल जाऊँ मुझे बता देना।
0: क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, यहाँ पहले ही मेरा दिल बैठा जा रहा है।
4: सुन लिया ना डॉबचिंस्की? लीजिए मेयर साहब, मैं शुरू से सारी बात सुनाता हूँ। रहा हूँ। सुबह आपसे वो अहम खबर सुनकर मैं कोरोबकीन को बताने के लिए गया, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था। मैंने सोचा रूस्ता को विंस्की को ये समाचार दे दूं, लेकिन वो भी अपने साली की शादी

0: बाहर गया हुआ था, मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी मुलाकात डॉबचिंस्की से हो गई,
1: समोसे वाले की दुकान के पास।
0: हाँ, समोसे वाले की दुकान के पास। लेकिन इसे ये खबर आपकी नौकरानी अवधोत्या से पहले ही मिल चुकी थी, वो आबकारी की दुकान पर कुछ लेने गई थी।
1: मेयर साहब के लिए फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी।
0: हाँ, फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। बीच में मत रोको डॉबचिंस्की, इसने मुझसे कहा कि मारे भूखे इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए होटल में ले गया। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो एक लंबा तगड़ा खूबसूरत नवयुवक
1: सूट बूट पहने हुए
0: डॉबचिंस्की, तुम बार बार टोकते हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो हाँ साहब, सूट बूट पहने हुए खूबसूरत नौजवान कमरे में चहलकदमी कर रहा था, रोबीला गंभीर चेहरा, जैसे कोई बहुत अहम बात सोच रहा हो। मैंने छूटते ही डॉबचिंस्की से कहा, हो न हो ये वही आदमी है। हम दौड़े दौड़े होटल के मालिक के पास गए, उसने बताया ये कोई सरकारी मुलाजिम है, पीटर्सबर्ग से आया है और सारातोव की तरफ जा रहा है। इसका नाम इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव है, लेकिन अजीब शैतान आदमी था वो भी। 2 हफ्ते से उनकी रोटियां तोड़ रहा था और उनकी छाती पर मूंग दल रहा था, न होटल से निकलने का नाम ले और न उनके बिल के चुकाने का नाम ले। होटल मालिक की बात सुनकर मैं तो जैसे उछल पड़ा। मैंने डॉबचिंस्की से कहा, पकड़ा, ये वो आदमी।
2: नहीं बाप, पहले मैंने ये कहा।
0: अरे हो सकता है पहले तुमने कहा हो, लेकिन फिर मैंने भी तो कहा था यही है वो पीटर्सबर्ग का अफसर।
1: कौन सा अफसर?
0: अरे भूल गए मेयर साहब, अजीब पीटर्सबर्ग का अफसर
1: क्या,
0: यानी इंस्पेक्टर जनरल।
1: क्या, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता?
3: वही है मेयर साहब, वही है। वो होटल में एक पैसा नहीं देता, वहां से जाता भी नहीं। इतनी हिम्मत एक इंस्पेक्टर जनरल की ही हो सकती है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं।
0: एक बड़े अफसर की तरह वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था। हम लोग जब खा रहे थे तो उसने जिस ढंग से हमारे खाने की तरफ देखा, वो पैनी नजर एक इंस्पेक्टर जनरल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
1: अगर सचमुच वो इंस्पेक्टर जनरल ही है तो फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है। बॉबचिंस्की, तुमने उसका नाम क्या बताया?
0: इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव।
1: उसके कमरे का नंबर क्या है?
0: नंबर 4,
1: जहाँ पिछले साल कमेटी के अफसरों में मारपीट हुई थी ना? और उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए?
0: 2 हफ्ते।
1: मारे गए, अब क्या होगा?
4: मेरा एक सुझाव है मेयर साहब, हम सब मिलकर इंस्पेक्टर साहब का स्वागत कर दिख लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही वहाँ जाऊंगा, अकेला। आप लोग तो वहाँ जाकर ठूंठ की तरह खड़े हो जाएंगे। डॉबचिंस्की, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर नव युवक सा लगता है।
3: जी हाँ, मुश्किल से 23-24 साल का होगा।
1: ये भी गनीमत है, नौजवान अफसरों को उल्लू बनाना आसान है। अच्छा साहिबान, आप लोग फटाफट सब चीजें ठीक ठाक कर लीजिए, समझे आप। मैं होटल का दौरा लगाने और यात्रियों की सुख सुविधा मालूम करने का बहाना कर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। मिश्का, मिश्का
5: जी हुजूर,
1: गाड़ी तैयार है?
5: जी तैयार।
1: प्रोहरात कहाँ है?
5: हुजूर वो आज ड्यूटी पर नहीं है।
1: क्यों नहीं है?
5: जी वो रात आबकारी वाले नुक्कड़ पर पहरा दे रहा था, सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो नशे में धुत था। 2-3 टप पानी डाले जाने पर भी उसका नशा ज्यों का त्यों है।
1: तुम लोग सिपाही नहीं हो, बादशाह हो, बादशाह। तुम भागकर अंदर जाओ। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, भरो भरो भरो, और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को बुला लो, समझे, जल्दी जल्दी।
4: अभी जज साहब, मेरा ख्याल है कि अब चलकर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए।
6: अबे तुम्हें क्या फिक्र है हेल्थ अफसर साहब, मरीजों को साफ वर्दी पहना दोगे, सब ढक जाएगा।
4: जी हाँ, और अस्पताल के कोने कोने से जो बदबू के झोंके आते रहते हैं उसे आप किस तरह से?
6: बदबू तो जनाब मेरी अदालत से भी बहुत आती है, पर मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। डर ये है कि कहीं इंस्पेक्टर साहब ने भूले भटके कागज पर नजर डाली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पिछले 15 साल से मैं फैसला देता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कसम खाने को भी कभी कागज पर नजर नहीं डाली और ना पढ़ा।
7: चिंता मत करो मित्र, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं रहेंगे। हाँ,
1: कौन
0: कौन है?
1: कौन
8: हुजूर, आपने मुझे याद किया।
7: आ गए आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब, पलक झपकते देर नहीं होती कि आप ना जाने कहां उड़नछू हो जाते हैं। ये आलम है हमारे शहर के सम्मानीय पुलिस सुपरिंटेंडेंट का।
8: मगर हुजूर, मैं तो बाहर के गेट पर ड्यूटी दे रहा था।
1: सुनिए, इस शहर के मुआयने के लिए पीटर्सबर्ग से अफसर आ पहुंचा है, आपको सारा इंतजाम करना है। जल्दी से किसी लंबे तगड़े सिपाही को नई वर्दी पहनाकर पुल पर खड़ा कर दीजिए, ताकि अफसर पर रौब पड़ जाए। शहर का सारा कूड़ा किसी बुत या किसी स्मारक के पीछे फेंकवा दीजिए। शहर के एक किनारे कुछ खुदाई करवा दीजिए और मजदूरों को हिदायत दे दीजिए कि मिट्टी इधर उधर करते रहे, जिससे लगे वहां जमीन बराबर की जा रही है।
8: जी बहुत अच्छा।
1: और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अफसर ने किसी पुलिस वाले से सवाल किया, तुम अपनी नौकरी में खुश तो हो, तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए, जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ऐसे आदमी को बाद में सचमुच संतुष्ट करने पर विचार किया जाएगा।
8: जी मैं इस बारे में अभी एक नोटिस घुमा देता
1: हूं। एक बात और है, अगर कोई पूछे कि अभी तक अस्पताल में गिरजा क्यों नहीं बनवाया गया, जबकि इसके लिए 5 साल पहले ही चंदा इकट्ठा कर लिया गया था, तो उसका जवाब यह है कि गिरजाघर

0: बना था लेकिन उसमें आग लग गई, समझे आप। मैंने इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी भेज रखी है। डर यही है कि तुम में से कोई बेवकूफ कहीं ये ना कह दे कि गिरजे का निर्माण तो कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब मैं जाता हूँ डॉपटिंस्की, तुम मेरे साथ चलो।
1: जी बात मेरे साथ, मुझे भी साथ ले लीजिए।
0: समझदारी की बात करो डॉपटिंस्की, गाड़ी में दो ही आदमियों की जगह।
1: कोई बात नहीं, मैं पायदान पर ही खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। दरअसल मैं भी दरवाजे की दरार से अफसर और आपकी भेंट देखना चाहता हूँ।
0: अच्छा आइए आइए, चलिए चलिए,
2: सुनिए सुनिए। अरे पापा तो चले गए मम्मी।
3: और क्या मारिया, ये देर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है।
2: मम्मी मेरा नेकलेस कहाँ रखा है? मम्मी मेरे हेयर पिन नहीं मिल रहे। मम्मी क्या अफसर आ गया है? कैसा दिखता है, जवान है या बूढ़ा है?
3: लेकिन लेकिन पापा ने जाने से पहले हमें बुलाया क्यों नहीं? अब हम अफसर को कैसे देखेंगे?
2: तू क्या देखेगी, तुझे तो पोस्ट मास्टर को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती।
4: न जाने पापा का अफसर कैसा होगा, मेरा दिल कहता है वो बहुत सुंदर होगा।
5: धत तेरे की, हमें पीटर्सबर्ग से चले 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक आधे रास्ते में अटके हुए। लेकिन हमारे मालिक साहब को इसकी कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें कोई काम ना काज ना नौकरी ना चाकरी, उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है। और इवान अलेक्जेंड्रोविच इलिस्टकोव के लिए, यानी हमारे लिए शानदार होटल का शानदार कमरा बुक कर लो। आसिफ जल्दी से बैरे को खाना लाने के लिए बोलो, लेकिन ध्यान रहे खाना एकदम लजीज हो, हमें घटिया खाना खाने की आदत नहीं।
6: घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुला ले।
5: अरे कभी इधर उधर से पैसे आ भी गए तो साहबजादे को जैसे पर लग जाते, फौरन बड़े बड़े आदमियों को जा घेरेंगे और जुए में तब तक जुटे रहेंगे जब तक जेब में आखिरी सिक्का रहेगा। हाँ अरे कई बार मालिक जेबें गर्म करके भी आते हैं, तब मैंने भी खूब गुल छर्रे उड़ाए। कुछ ना पूछिए, खूब दावतें खाई हैं, बढ़िया कपड़े पहने। मैं और मालिक बाजार से निकलते हैं तो दुकानदार सिर झुका झुका कर स्वागत करते हैं, आइए आइए श्रीमान हमारी दुकान पवित्र कीजिए। ओह आज तो भूख के मारे ठीक से हंसा भी नहीं जा रहा, और होटल का मालिक है कि हमारी तरफ देखता तक नहीं, जोर की भूख लगी है कि ओह मालिक आ गए। ओह मालिक आज तो आप सह से जल्दी वापस आ गए।
0: नीचे जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है।
5: मालिक ये काम मेरे बस का नहीं है।
0: क्या
5: मालिक, मेरा मतलब है मेरे जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, होटल के मालिक ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप उसका पिछला बिल नहीं चुका देते वो हमारे खाने की छुट्टी रखेंगे।
0: उसकी शेम अजाल की हमें खाना देने से इनकार करे।
5: आज ही उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो शहर के मेयर के पास हमारी शिकायत लेकर जा रहा है। कहने लगा मैं मेयर साहब को बताऊंगा कि पीटर्सबर्ग का एक उचक्का लफंगा अपने नौकर के साथ 2 हफ्ते से मुफ्त मेरे होटल की रोटियां।
0: और तुम बहुत चाव के साथ ये सब सुनते रहे।
5: सुनना ही पड़ा मालिक, मुझसे कहने लगा फिक्र ना करो बच्चू, कल से तुम्हें जेल की रोटियां मिलेंगी।
0: बस भी करो, जाओ एक बार फिर उसे खाना भिजवाने के लिए बोलो।
5: मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए ना।
0: मैं ऐसे घटिया आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता।
5: अच्छा आप कहते हैं तो एक बार फिर बात करता हूँ।
0: इतनी भूख लगना भी मुसीबत है इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्तकोव, तुम भी किस भूखे शहर में आकर फंस गए। यहाँ तो रहने का मजा ही नहीं आ रहा, पर यहाँ से निकले भी कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और उधर सारा तो मैं बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा समझते हैं मैं पीटर्सबर्ग में किसी अच्छी खासी नौकरी में हूँ, और हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि नौकरी किस बला का नाम।
5: मालिक लीजिए वेटर खाना लेकर आ गया।
0: खाना
5: जी,
0: यानी कि खाना। खाना
7: हमारे मालिक ने कहा है आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा।
0: भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, मेरा मतलब है मित्र पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे खाने का इतना चाव नहीं है लेकिन इसलिए खाता हूँ क्योंकि क्योंकि क्योंकि मुझे खाना है। हाँ
7: जी जी,
0: खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शे क्या सिर्फ सुपर मुर्गा, शे क्या बदतमीजी है, इसे ले जाओ और अपने मालिक से कहो ये बहुत कम है।
7: मालिक कहते हैं ये जरूरत से ज्यादा है।
0: बकता है, और बाकी चीजें कहाँ गई, मछली कलेजी कटलेट और वो अचार चटनी?
7: बाकी चीजें नहीं है।
0: क्यों नहीं? अरे मैंने ऊपर आते हुए खिड़की से झांक कर देखा था तो पिद्दी से ग्राहक उंगलियां चाट चाट कर दुनिया भर की चीजें अड़प रहे।
7: अजीबे ऊंचे ग्राहकों के लिए है, आप जैसों के लिए नहीं।
0: बको मत, मेरे गले में वो चीजें अटकती, वो लोग भी तो मुझ जैसे मुसाफिर हैं।
7: फर्क है हुजूर, वो नकद दाम देते हैं और आप।
0: मैं इतनी गजा नहीं खाता कि तुम जैसे जाहिल गमार से बहस कर सकूं। ये सूप, ये सूप है जैसे गर्म पानी में नमक खोल दिया गया।
7: कोई बात नहीं हुजूर, मालिक ने

0: कहा था आपको जरूरत ना हो तो वापस ले आना।
1: वापस ले आना। लो आसिफ,
2: जी
1: बाकी तुम पी लो।
2: बहुत अच्छा।
1: ये मुर्गा बना मुंह में रखते ही जबड़ा अलग हो जाए जैसे किसी पेड़ का ठूंठ हो। लो आसिफ, थोड़ा तुम भी लो। मैं अब जा सकता हूँ। सुनो मित्र, खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आसिफ, तुम बेटो जी के साथ चले जाओ। ये खाना है, सूप की जगह उबला पानी और गोश्त।
3: मालिक, मालिक नीचे मेयर आया हुआ है और आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है।
0: क्या?
3: जी हाँ।
0: आखिर उस बदमाश ने मेयर के पास मेरी शिकायत करी थी। नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेयर की क्या मजाल कि मुझे जबरदस्ती जेल भेजे। मैं उसे ऐसी झाड़ दूंगा कि याद रखेगा। तुम्हारी ये हिम्मत हुई कैसे? तुम्हारी ये मजा?
4: श्रीमान, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप भी मेरी नमस्ते दीजिए। क्षमा कीजिएगा, बिना पूछे ही चला।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
4: दरअसल शहर के मेयर की हैसियत से ये मेरा पहला फर्ज हो जाता है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी तरह।
0: लेकिन आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो होटल की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दरअसल शरारत तो होटल के मालिक की है। वो मुझे जान बूझ कर घटिया खाना देता है। मांस ऐसा जैसे पत्थर के टुकड़े हों, और सूप भगवान ही जाने उसमें क्या डाला जाता है। मैंने अभी अभी उसे खिड़की से बाहर फेंका है। चाय में मछली की बू आती है, और ऊपर से वो मुझे धमकी देता है कि मुझे वो।
4: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हुजूर, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे सच बताऊं, उसमें मेरी जरा भी गलती नहीं है। हमारा शहर तो ताजे गोश्त के लिए मशहूर है। ताज्जुब है, ये आदमी कहां से कूड़ा उठा लाता है। दरअसल ये होटल आपके रहने लायक है भी नहीं। मैं आपसे कहीं और चलने की प्रार्थना कर सकता हूँ?
0: नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खूब समझता हूँ कहीं और से आपका मतलब क्या है। आप इस बहाने मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे जेल ले जाने का क्या अधिकार है?
5: हे भगवान, ये तो सब जानता है, जरूर किसी ने इससे मेरी शिकायत की।
0: जनाब, आप पूरी फौज लेकर आइए तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधा जार के पास जाऊंगा। आप लोग मुझे समझते क्या हैं?
5: ऐसा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे।
4: खूब खूब, तो आपके बीवी बच्चों को बचाने के लिए मैं जेल चला जाऊं?
0: माफ कीजिए, मैं भी सब जानता हूं।
5: मुझसे गलती हुई हुजूर, दरअसल मुझ में अकल की बहुत कमी है। और क्यों ना हो हुजूर, तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि सारा दिमाग उधर सोचने में ही खत्म हो जाता है। तभी तो भूले भटके रिश्वत लेने की गलती हुई है हुजूर। लेकिन विश्वास कीजिए, रिश्वत में भी हमेशा छोटी मोटी चीजें ही ली हैं मैंने। और वो जो आपने वो देखी ना, हवलदार की विधवा को कोड़े लगाने वाली बात सुनी होगी ना, वो बिल्कुल झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है। मेरे दुश्मनों का गढ़ा हुआ किस्सा है। और हुजूर आपसे क्या कहूं, इन दुश्मनों से तो मुझे अपनी जान का भी खतरा हो गया।
0: मुझे
5: है
0: इन बातों से क्या लेना देना। लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते।
5: नहीं, नहीं,
0: मैं होटल का एक एक पैसा चुका दूंगा, पर इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
4: धूर्त कहीं का, किस चालाकी से पैसे की बात छिड़ी है। पर बच्चों, में भी तुझे अपने जाल में फांस कर ही छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा हुजूर, अगर आपको पैसों की दिक्कत हो तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूं। शहर में आने वाले प्रत्येक यात्री की सेवा करना तो मेरा पहला।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे कुछ रूबल उधार दे दीजिए ताकि मैं होटल का बिल दे सकूं। मेरा ख्याल है 200 रूबल में काम चल जाएगा।
4: ये लीजिए, गिनने के कष्ट नहीं कीजिएगा,
6: पूरे 200।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा।
1: अरे आसिफ
3: डॉबचिंस्की,
4: शुक्र है इतने पैसे चुपचाप ले लिए इसने। मैंने भी समझदारी की, 200 की जगह 400 रूबल दे दिए।
0: आसिफ, वेटर को बुला लाओ।
2: जी अच्छा।
7: इंस्पेक्टर जनरल गोगोल के इस प्रसिद्ध नाटक के हिंदी रेडियो रूपांतरण का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार थे शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

कथा सुनते हैं फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहां आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं, मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया
0: जी
1: और संवाद के लिए बुलाया, तो हम आपका आभारी है और हम ऐसी चीज़ों पर बातचीत करेंगे जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रिकर जी, आप पूछिए क्या प्रश्न है।
0: दिलीप जी, फिल्मों में कहानी के मुताबिक जितने सीन्स शूट किए जाते हैं, गीतों का एडिटिंग होता है, इसकी तो बात हमने की, मगर कई बार एक एक्शन सीन्स होते हैं जो मारधाड़ वाले सीन्स हुए हैं या कहीं से मोटर आ रही है उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह के सीन जो एक्शन सीन्स होते हैं, इनमें एडिटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: क्यों? तो सर, वो शॉर्ट में क्या करते हैं, वो एक्शन सीन में
0: जी,
1: एक्शन सीन तो अभी सब तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले रियल हो जाता था।
0: अच्छा,
1: मतलब पहले गाड़ियां उड़ाते थे।
0: हाँ।
1: तो एक पिक्चर हमने की थी, उसमें 6 गाड़ियां उड़ा दिए थे।
0: ओहो,
1: रियल चेस हुई थी।
0: अच्छा,
1: और वो इतनी बड़ी चेस है, हिंदुस्तान की पहली चेस थी।
0: हाँ।
1: जो राजश्री ने पिक्चर बनाया था एजेंट विनोद।
0: हाँ।
1: उसमें 6 के 6 गाड़ियां उन्होंने उड़ाए थे, उसमें कोई वायर नहीं था।
0: हाँ।
1: या कोई ट्रिक नहीं थी।
0: अच्छा,
1: वीरू देवघन उसका ये था फाइट कंपोजर, एक्शन सीक्वेंस।

0: जी
1: उन्होंने गाड़ियां कैसे उड़ाए थे आज भी हम देखते हैं।
0: ओहो
1: और उन्होंने तो यहां तक किया था कि बॉम्बे में कुलाबा में शूट चल रही थी, मोटर बाइक जाते ऐसा ऊपर से, वो तो उन्होंने अपना ऐसे कहते, उस टाइम में कोई वायर नहीं था, अभी तो क्या है थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते, जैसा अभी टेबल पर से कूदना है वायर लगाए कूदे, मतलब उस टाइम के जो हीरो थे जितने भी हीरो है, धर्मेंद्र है, शम्मी कपूर है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग
0: स्टंट किया करते थे पूरा,
1: एक्ट करते थे, उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता, बाकी खुद कर लेते थे सब। और बहुत सारे सीन रहते थे जैसे जंप मारने का वगैरह, उसमें कहीं जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे। और उस टाइम में तो क्या होता था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है
0: जी,
1: और एक आई थी हमराई, रामानंद सागर की
0: जी,
1: उसके अंदर एक सीन है हमराई में, रणधीर कपूर, तनुजा और गजानन जागीदार
0: जी,
1: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर, आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
0: जी जी,
1: तो पहले टेक में वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप उधर,
0: अच्छा
1: तो 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा ब्रिज, तो आपको मालूम है छोटे नाले पर रहते हैं,
0: अच्छा,
1: मगर सेकंड टेक में वो गिर गए थे उधर आधे में,
0: ओहो,
1: तो ऐसा है। और एक पिक्चर आई थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान, सुनील दत्त और साधना
0: जी
1: तीनों के चेस, तीनों भी क्रॉस करते पूरा,
0: अच्छा,
1: जंप करके, तो उसमें पहले जोखिम रहता था, कर लेते थे पहले, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी वो फाइटर ये हो जाता था। और अभी क्या है तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया
0: जी, तो ऐसे जो ये एक्शन सीन्स होते हैं इन दृश्यों को जोड़ना,
1: हाँ,
0: ये कितना मुश्किल काम होता था?
1: मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर,
0: अच्छा,
1: शॉट वो कटिंग में ले लेते शॉट,
0: अच्छा,
1: कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया, जैसा विलन ने भी एक्सीलेटर दबा दिया,
0: अच्छा,
1: हीरो उधर से आ रहा है,
0: हाँ,
1: विलन इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते हैं वो,
0: अच्छा,
1: कट में,
0: हाँ,
1: तो हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रू किया उधर, उसने ड्रू किया, फिर इसने देखा,
0: हाँ,
1: उसने देखा, बैंग आ गया उसमें, फिर उसके बाद ये कर लेते, ये सब पूरे यूनिट का काम है सर। अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है, उसका थॉट रहता है,
0: जी, जी,
1: उसको वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में,
0: हाँ,
1: फाइट कंपोजर उसको एक्सिबिट कर लेता है, पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे, ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है, उसको असेंबल करते हैं,
0: हाँ,
1: और उसका असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका,
0: हाँ,
1: जो इम्पैक्ट क्या रहता है कि सिक्वेंस जब रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा, इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे,
0: हाँ,
1: इधर गिरेंगे, उधर गिर गए, रिएक्शन आ गया, दोनों उठ के भाग गए, ये तो
0: अच्छा,
1: अपना कहानी में हो गया,
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: शूट कर लेते,
0: हाँ,
1: शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलके अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते, बाद में एडिटर को लाके दे देते भाई काट दो, तो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए।
0: अच्छा।

0: बहुत सारे एडिटर पहले के ये थे, तो कि वो डायरेक्टर को क्या चाहिए, आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था।
1: कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो?
0: पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट बहुत पिक्चर किया था।
1: हाँ जी,
0: एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक।
1: हाँ
0: मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर
1: जी,
0: उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था।
1: हाँ
0: उसका था, और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी
1: जी जी
0: जो सनी देओल की,
1: हाँ
0: उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें, तो उसके अंदर टूनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तेरी तरफ से अब्बास अली मुगल,
1: अच्छा।
0: तो वो इतना अच्छे तरह से शूट किए थे। वो हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहाँ से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा। तो उसमें क्या है कि जो पंच रहते थे जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो लॉन्ग शॉट में अलग रहता था। जैसा आपने बोले ना लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक, क्लोज में फेस के ऊपर विषम कर दिया,
1: अच्छा,
0: तो वो अलग शॉट रहता था। फिर गिरने का इनका, अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते गोल गोल घूमते, मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था। तो वो पूरा वो मैच करके वो पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको।
1: जी जी
0: कुछ
1: जी
0: एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे, मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागेंद्र के साथ में,
1: जी
0: मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पंचाल,
1: जी जी
0: तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाभलो सौभाग्य चलेनी,
1: मराठी फिल्म
0: मराठी फिल्म।
1: जी।
0: तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में।
1: हाँ
0: उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो,
1: हाँ
0: 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म,
1: अच्छा,
0: 1 तारीख से डबिंग चालू,
1: हाँ
0: और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर। तो वहां पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट। तो मुझे बुलाया डायरेक्टर ने,
1: जी
0: तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह, राजेंद्र काले और अमित मंगतानी, 3 प्रोड्यूसर थे।

0: अनित मकदानी का था, कैसेट का, कैसेट बनाते थे।
1: जी
0: और ये राजेंद्र काले तो कॉरपोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे,
1: जी
0: तो उनको तो कुछ ज़्यादा नहीं था। तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं बोले करके दे दूंगा बताओ। तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्लैशबैक्स चालू होती थी,
1: जी
0: एक समारोह है उधर शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी। तो उसमें क्या फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक एक नंबर में चालू होता था, 16 नंबर में खत्म हो जाता था।
1: अच्छा
0: तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, आप मुझे कहानी बताओ, खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, समझे ना। और बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था, भाई ये सीन है इसमें इतनी शॉर्ट है,
1: अच्छा
0: वो स्क्रिप्ट हमको दिए जाते थे, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती थी, बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे, मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया हो गया, और हम सीन दिखे दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो ईजी रहता था, प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर की है एक ही डायरेक्टर के साथ में,
1: अच्छा
0: तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 को मार्च को खत्म किया
1: हाँ
0: तो मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं।
1: अच्छा
0: आने के बाद देखे उन्होंने, क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए, क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता है, थॉट रहता है ना उनका, कहाँ से चालू करना है, कहाँ खत्म करना है,
1: हाँ
0: बाकी तो सब था, और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे। तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया, तो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं,
1: अच्छा
0: 10 पिक्चर किया, मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था।
1: अच्छा। तो कार्यक्रम के इस मोड़ पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मेरा सर एक गाना था मैं जिसको बहुत लाइक करता हूँ,
1: हाँ जी।
0: हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है हर
1: जी
0: एक का, लड़की का भी रहता है, लड़के लड़की को लगता है कि हमको राजकुमार मिले,
1: हाँ
0: लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले, जो जीवन संगिनी है,
1: हाँ
0: अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको,
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: अच्छी मिले तो हमेशा सपने में सोचते रहता है।
1: हाँ
0: एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया तो एक बात जानू, ये
1: क्या बात,
0: जिंदगी पिक्चर का गाना है,
1: जी जी
0: राजेंद्र कुमार वैजयंती माला का,
1: हाँ
0: रामानंद सागर की पहली पिक्चर, मतलब उनके बैनर में बनी थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था,
1: अच्छा
0: और वो गाना बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही गाना।

0: दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं,
1: जी
0: तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर, और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है?
1: सर, जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है
0: हाँ जी,
1: फिल्म लाइन में, आर्टिस्ट का,
0: हाँ जी,
1: उसके बाद प्रोड्यूसर का,
0: हाँ
1: डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है उनके।
0: अच्छा,
1: यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है जो
0: हाँ
1: कि गवर्नमेंट रिकनाइज है,
0: हाँ
1: तो
0: ओके,
1: उसका नाम है AFE लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर,
0: एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो
1: वीडियो
0: एडिटर।
1: एडिटर एडिटर।
0: अच्छा, तो वो
1: वो
0: शॉर्ट में
1: हमारा
0: लिखा गया।
1: पूरा जो है ना,
0: हाँ
1: कुछ जितने भी एसोसिएशन है मेरे, 20-30 जितने भी है,
0: हाँ
1: वो सारे का एक फेडरेशन है, वो
0: अच्छा,
1: उड़ जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है। जैसे डायरेक्टर का IFDA,
0: हाँ
1: IFDA,
0: हाँ
1: IADA नहीं, इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन,
0: अच्छा,
1: WICA कैमरेमैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है
0: तो ये
1: इमेज।
0: यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो वो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते
1: नहीं,
0: हैं।
1: हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं,
0: जी
1: चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो,
0: हाँ
1: राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है आपको,
0: अच्छा,
1: बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि भाई
0: जी
1: ये पिक्चर का एडिटर मैं हूँ, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था, तो
0: अच्छा
1: एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ,
0: जी
1: और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए
0: जी
1: हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं।
0: तो आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे?
1: मैं 78 में,
0: 78 में ही, शुरुआत में ही।
1: हाँ
0: जी,
1: 78 में जुड़ा था,
0: हाँ
1: जो मेरा राजश्री में 1 साल पूरा हो गया था,
0: हाँ
1: जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था। तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में ₹25 में हमको भर के कार्ड मिलता था,
0: जी
1: तो आजकल सब कार्ड बने हैं, वो हम दिखाते थे तो हमको लैब में जाने देते थे,
0: अच्छा,
1: शूटिंग में हमको जाना है जाने देते थे, क्योंकि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल वो
0: हाँ
1: नहीं था, तो वो हम दिखाते थे हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में,
0: जी
1: उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था, तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे ₹251 लिए थे
0: अच्छा
1: एसोसिएशन ने,
0: जी
1: जो कि
0: जी
1: उनको लेते हैं सब एसोसिएशन में मेंबर बने लेने आते हैं, तो उसके बाद वो कार्ड देते, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA, जो आप बोले ना
0: हाँ, AFE लिखा होता है।
1: AFE लिखा रहता है, तो
0: हाँ
1: वो कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है
0: जी जी जी
1: लेके,
0: जी
1: तो ये कार्ड में हमको, हम किधर भी जा सकते हैं, और
0: अच्छा
1: एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से,
0: हाँ
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है।
0: हाँ
1: जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था, तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था,
0: अच्छा,
1: तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है, तो AFE का मतलब ये है, मतलब एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर।
0: चलिए यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
1: मैं तो सर जिंदगी में नोक झोक,
0: जी
1: प्यार के साथ में नोक झोक जो होना जरूरी है,
0: हाँ
1: आज हम

0: बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते,
1: अच्छा।
0: हमारी लाइन ऐसी है, कभी कभी हम 2-3 दिन घर नहीं जाते थे तो रूठी रहती थी। तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवां मोहब्बत पिक्चर का,
1: हाँ,
0: रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
1: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

ऐसा समा होगा न किस्मत जगमगाएगी। जरा सी बात का आखिर बनाती हो क्यों अफसाना।

0: रूठो ना रूठो मेरी जान, किसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
1: मैं रूठूंगी तुमसे रूठ।

चलो अच्छा हुआ उलझन दिलों की रंग ले आई। खुशी आंखों में चमकी है हंसी होठों पे लहराई।

मीड एवे 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 और 15 सेकंड हो रहे हैं। श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपकी सेवा में आज की अपने सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ। और लीजिए पेश है इस समय युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम ये वाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अंजलि।
1: श्रोताओं नमस्कार, अंजलि के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त धारिणी। दोस्तों आज का सफर कुछ खास होने वाला है, तो अगले एक घंटे बने रहिए हमारे साथ युववाणी में।
0: धारिणी, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं लेकिन दूसरों को देखने का नजरिया कुछ अलग होता है?
1: हाँ अंजलि, और शायद इसी बात को समझना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है, क्यों है ना?
0: हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटिज्म जागरूकता की। कुछ बच्चे या लोग दुनिया को हमसे अलग तरीके से महसूस करते हैं, अलग तरीके से जीते हैं और देखते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में भी बहुत कुछ होता है। हमें बस उसे सुनने की जरूरत है।
1: जी हाँ दोस्तों, जरूरत है उन्हें बदलने की नहीं बल्कि उन्हें समझने की, क्योंकि सब में अपनी अपनी कुछ खासियत होती है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। मतलब इसका ये बिल्कुल नहीं है कि उनमें कुछ लेस है, बस कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है।
0: और जब बात आती है समझ की, नजरिए की, तो कुछ ऐसे लोगों को याद करना तो बनता है जो अपने काम से दुनिया को एक नया नजरिया दे जाते हैं।
1: अंजलि क्या बात कही आपने, बिल्कुल। और आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व को, और वो है सत्यजीत रे। एक नाम जिसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई अपने कामों से।
0: बिल्कुल, उन्होंने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं माना बल्कि उन्होंने फिल्मों को हमारे समाज का आईना बना दिया।
1: दोस्तों वैसे भी हमेशा कहते हैं कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, और जो समाज होता है वो फिल्मों का भी आईना होता है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। अंजलि आपने सुना है ये बात?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है, क्योंकि उनकी कहानियां कहाँ से आती हैं? हमारे बीच से ही तो वो ये कहानियां उठाते हैं।
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने अंजलि। और आज उन्हीं की 150वीं जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके योगदान को आज हम याद करने जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और आगे हम जानेंगे जॉब अपडेट्स, और अंत में होंगे कुछ रोचक तथ्य जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे अरे ये तो पता ही नहीं था।
1: और फिल्मी गानों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा दोस्तों, तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस बेहतरीन सफर पर चलने के लिए। चलिए करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की एक सुरीली मधुर सी शुरुआत इस गाने के साथ।

0: दोस्तों, लाइफ इन अ मेट्रो मूवी से अभी आप सुन रहे थे सोहम की आवाज़ में ये गीत। इस गीत के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। तो दोस्तों, चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं आज की प्रेरक पंक्ति के साथ।
1: धारणी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप जानती ही
0: जी
1: होंगी,
0: बिल्कुल।
1: तो आज उन्हीं की एक पंक्ति मैं लेकर आई हूँ। आज की पंक्ति है कि उन्होंने एक बार कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल ही देगी।
0: अंजलि, वैसे तो हम सब चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, ब्राइट हो बिल्कुल, लेकिन क्या हम सच में अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर कर ही देते हैं ध्यान देने पे।
1: हाँ, ये तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने बड़े हम सपने देखते हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या हम सिर्फ छोटे छोटे बदलाव नहीं कर सकते? इतनी बदलाव तो लाने जरूरी है ना, क्योंकि अगर हम सपने इतने बड़े देख रहे हैं तो छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, मतलब यानी सिर्फ फर्क ये नहीं पड़ता कि आदतें क्या हैं, छोटी छोटी जो आदतें हैं उन्हें धीरे धीरे हमारी हम जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी आदतों में तब्दील हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है अंजलि कि उन्हें जाने में जितना समय लगता है उतना उन्हें आदत बनाने में समय नहीं लगता। तो दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखें कि जो भी हम आदतें लगा रहे हैं वो आदतें तुरंत हमें लग तो जाएंगी, लेकिन उनके जाने में, अगर बुरी आदतें लग गई हैं खास करके, तो उनके जाने में बहुत समय लगता है।
1: तो दोस्तों, अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए आज से ही, आज से क्या, अभी से शुरुआत कीजिए उन छोटी छोटी बदलावों की। जैसे आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर सकते हैं, रोज थोड़ी देर की, मतलब आज रोज क्या, मैं कितना भी व्यस्त रहूं 1 घंटे तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, या मैं पढ़ूंगी, या फिर मोबाइल का कम इस्तेमाल करना, वो भी तो बहुत जरूरी है धारिणी।
0: हाँ बिल्कुल अंजलि, और इस बात पर तो आप सच बोले तो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि मोबाइल कम इस्तेमाल करना, ये बात सोचते ही ना मुझे टेंशन सी होने लग जाती है, क्योंकि मोबाइल की आदत ही ऐसी पड़ चुकी है हमें, हम सभी को, बल्कि मुझे लगता है कि आप भी इस चीज़ से, इस आदत से बहुत ज़्यादा
1: बिल्कुल,
0: परेशान होंगी।
1: हर चीज के लिए, हमें कहीं जाना है कैब बुक करना है मोबाइल, पढ़ना है मोबाइल, गाना सुनना है मोबाइल, चलना है मोबाइल।
0: बल्कि अगर कोई रिमाइंडर है तो उसके लिए भी मोबाइल पर अलार्म सेट कर
1: बिल्कुल,
0: दे, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस
1: और
0: मोबाइल हर
1: अभी
0: चीज का
1: तो
0: सलूशन।
1: शादियों का जो सीजन चल रहा है, आजकल तो कार्ड भी ऑनलाइन मोबाइल पर।
0: जी बिल्कुल, और इतना ही नहीं, मतलब आप कार्ड खुद से भी बना सकती हैं। तो देखिए, हर जगह आजकल मोबाइल फोन का यूज हो रहा है, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करिए, इसकी लत ना लगाए, इसे अपनी लत ना बनने दे, इसका इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए करें, क्यों, है ना? और दोस्तों, लेकिन एक और बात मैं इसके साथ साथ ऐड करना चाहूंगी कि जो बदलाव है वो हम अपने में धीरे धीरे लाएं तो ये बदलाव उतने भी मुश्किल नहीं है, हमें धीरे धीरे ये आसान लगने लग जाते हैं।
1: और डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो अगर जो सपने आपको सोने नहीं दे रहे हैं, उसके लिए प्रयास तो करना बनता है।
0: जी बिल्कुल, और क्योंकि सोना भी हमारी एक बुरी सी आदत है, हम बहुत ज़्यादा भी सोने लग जाते हैं, और खास करके आज तो गर्मी, आजकल गर्मी के दिन चल रहे हैं, और गर्मी में और ज़्यादा लगता है कि हम सोएं, खास करके दोपहर के समय में।
1: दोपहर के समय में, गर्मियों में तो आलस हावी होता ही है।
0: तो दोस्तों, आलस से थोड़ा त्यागे, और जो खुली आंखों से हम सपने सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए कुछ आदतों को तो बदलना पड़ेगा, और ये आदतें उनकी पहली सीढ़ी, पहले कदम है।
1: तो दोस्तों, आज की ये प्रेरक पंक्ति हमें सिखाती है कि अगर हम आज अपनी आदतों पर काम करना शुरू करेंगे, तो कल हमारा भविष्य जरूर बदल सकता है।
0: वैसे अंजलि, बातों बातों में आपने एक ही बात नहीं, एक ही प्रेरक बात नहीं, बल्कि दो प्रेरक बातें कह दी, कि आपको पता चला?
1: बिल्कुल धारणी, यही तो हमारा काम है कि श्रोताओं को कम समय में, कम बातों में अच्छी अच्छी और ज्यादा बातें पहुंचा सके उन तक।
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, और इसी के साथ चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला ट्रैक सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में।
2: हलचल हुई, जरा शोर हुआ।

0: दोस्तों, फिल्म आजा नचले से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गाना। और इस मधुर से गाने के बाद अब वक्त है ऐसे विषय पर बात करने की जो कि समझ भी मांगता है और संवेदनशीलता भी।
1: बिल्कुल धारणी, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ऑटिज्म डे की।
0: अंजलि, सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ऑटिज्म होता क्या है।
1: अगर बहुत ही सरल तरीके से कहें तो ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों का बोलना, समझना और दूसरों से जुड़ने का तरीका बाकी आम बच्चों से थोड़ा अलग हो सकता है।
0: यानी अंजलि, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि सोचने और महसूस करने का एक अलग तरीका है, और इसे आप पहचान सकते हैं अगर आप अपने बच्चे पर खास ध्यान दें। दोस्तों, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी में कुछ डिफरेंट है तो उसे हम उसकी कोई खामी ना समझें, बल्कि हम इस तरह से लेके चले कि वो कुछ यूनिकनेस भी हो सकती है। क्यों, है ना अंजलि?
1: बिल्कुल, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन एज अ पेरेंट आप कुछ संकेतों पर ध्यान

0: दे सकते हैं, जो कि है अगर आपका बच्चा आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता है, आपसे आंखें चुराता है, अगर आप उसका नाम पुकारते हैं और उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी देर से आती है, तुरंत नहीं आती, जवाब देने में देरी होती है, या वो बार बार एक ही काम को करता है और उसे ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
1: वैसे दोस्तों, इस बात पे मुझे एक बात याद आई कि हमारी जो अंजलि जी हैं, ये भी हैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की। आपको बेशक नहीं लग रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि हम आते ही आपसे बात करने हैं यहाँ पे, मगर
0: लेकिन यहाँ धारणी आप गलत साबित हो जाइएगा, क्योंकि अगर कोई सुन रहे होंगे तो इस पर विश्वास करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन जो मेरा सर्कल है उसमें मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ।
1: जी, और यही बात मैं आपको समझाना भी चाह रही थी कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि वो बच्चा या कोई इंसान उसमें कोई कमी है, उसकी ये यूनिकनेस भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, ये तो मजाक की बात रही, चलिए हम वापस से आते हैं ऑटिज़म के ऊपर। और तो दोस्तों, इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बेशक बच्चा आपका थोड़ा अलग हो, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, वो कम बोल रहा हो, आपसे आंखें चुराता हो, ऐसी कुछ गतिविधियां हो जो कि वो ना करता हो, तो इसको आपको ना समझने की ज़रूरत होती है थोड़ी। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे बच्चों के साथ हमें व्यवहार बहुत ही संयम से करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर उन्हें हमसे हमें उनसे प्यार से बातें करनी चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए, उन्हें समझानी भी चाहिए अपनी बात।
0: बिल्कुल धारिणी, और ऐसे बच्चों के साथ डील करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए ताकि हम उनसे अच्छे से डील कर
1: जी
0: सकें।
1: बिल्कुल,
0: जैसे उनसे जब बात हम करते हैं तो हमें उनसे बात करते समय पेशेंस, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। उनसे आराम से बात करें, उन्हें डांटे नहीं, उन्हें कोई काम करने के लिए मजबूर ना करें। धीरे धीरे से कोशिश करें उनसे जुड़ने की, उनसे कनेक्ट करने की, उनकी छोटी छोटी कोशिशों को प्रेज करें, उनकी तारीफ करें, उनको प्रोत्साहित करें कि हाँ बेटा ये तुम अच्छा कर रहे हो, ये चीज़ें तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, वाह क्या काम किया है, और प्यार से उनके साथ बैठे, उनसे कनेक्ट करें। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा धारिणी,
1: जी
0: लेकिन बच्चों के साथ कनेक्शन बैठाना बहुत आसान हो जाएगा।
1: बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है, और आज के समय की ये मांग भी है, क्योंकि आज जिस तरह से हमारा वर्ल्ड वास्ट एंड फास्ट हुआ जा रहा है, ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना, उन्हें समझना, उनसे कनेक्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें पेरेंट्स अपना बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को समझना आजकल के युग में ना बहुत कम टाइम मिल रहा है पेरेंट्स को भी। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों पर नहीं ध्यान दे पाते हैं, मगर सारे पेरेंट्स के लिए मेरा ये संदेश है कि कुछ टाइम अपने बच्चों के लिए भी निकालें, उनसे बात करें, उनकी क्या परेशानियां हैं ये भी समझें, जानें और उन्हें भी समझाएं।
0: क्योंकि पेरेंट्स को भी समझना ये बहुत ज़रूरी है कि उनका बच्चा एक्सक्लूसिव है, स्पेशल है, तो उसको अटेंशन भी थोड़ा स्पेशल देना पड़ेगा,
1: जी बिल्कुल,
0: जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं अपनी डेली डे रूटीन को फिक्स करने से। उनका एक फिक्स रूटीन बनाइए, उनके साथ खेलिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ करिए, स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश कीजिए क्योंकि वो दिमाग पर सीधे अफेक्ट करता है, और उनके साथ खूब सारी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए, चाहे वो पिकनिक हो, साथ में गेमिंग करना हो, या इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स हो, उनके साथ प्लान कीजिए, और इस तरह के एक्टिविटीज़ की लिस्ट आपको इंटरनेट पे धारणी आजकल
1: जी बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: सारे वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल है।
1: जी बिल्कुल, और लिस्ट के साथ ही साथ कुछ सुझाव भी आपको अवेलेबल है वहाँ पे कि किस तरह से आप अपने बच्चों से और ज़्यादा जुड़ सकती हैं, स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकती हैं, इन चीज़ों के भी सुझाव आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी बात कि जितनी जल्दी आप अपने बच्चे को पहचान पाएंगे, उतनी जल्दी सुधार संभव है। और अब बात करते हैं अपने बिहार की, खास करके अपने पटना की और पटना के आसपास के क्षेत्रों की, तो इस तरह की सुविधाएं हमारे आसपास भी बहुत धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, काफ़ी गतिविधियों वाल गतिविधियां जहाँ पे कराई जा रही हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हम देख सकते हैं
0: बिल्कुल
1: जहाँ पे समर में कुछ एक्टिविटीज स्पेशली करवाई जाती हैं, क्यों है ना।
0: बिल्कुल धारणी, और एनजीओस के साथ साथ IGIMS पटना, एम्स, PMCH, यहाँ पे भी ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, काउंसलिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: और अंजलि, सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में अवेयरनेस कैंपेन्स, अर्ली स्क्रीनिंग और स्पेशल बच्चों के लिए योजनाएं बना रही है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो समर में जो कैंपेन्स लगते हैं, जो कैंप्स लगते हैं, वो भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन उनका

0: अच्छा रह रहा है बच्चों की तरक्की में।
1: इनफैक्ट आजकल तो जो मेटर्निटी वार्ड्स होते हैं
0: जी
1: उसमें जब जो अर्ली पेरेंट्स हैं जो अभी जस्ट प्रेग्नेंट हैं वो भी जा करके इस तरह की काउंसलिंग्स अटेंड करते हैं ताकि वो पहले से अवेयर रहें कि उनको क्या-क्या चीज़ें अपने आने वाले बच्चों में चेक करनी है ताकि हर बच्चे तक सही मदद पहुंच सके। और याद रखें कि ऑटिज्म कोई कमी या कोई बीमारी नहीं है, ये बस दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया है, तो उस नज़रिया को भी हमें समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी।
0: तो दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा समझे, थोड़ी सी समझदारी से काम लें और अपनापन दिखाएं, थोड़ा स्नेह दिखाएं, तो उनकी दुनिया और भी खूबसूरत हो सकती है दोस्तों।
1: बिल्कुल, और धारणी सच कहूँ तो उन्हें समझना उनका सबसे बड़ा सपोर्ट होता है और यही अवेयरनेस हमें आगे बढ़ाती है क्योंकि इन बच्चों का साथी आप ही हैं, उनके आसपास रहने वाले उनके भाई बहन हो, उनके माँ बाप हो या उनके रिलेटिव्स हो, आप सब मिलकर के इन्हें एक नॉर्मल लाइफ जो कि वो जी रहे हैं बट हमारे नज़रिए से भी उनको देखने की एक ताकत हम दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, और क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है, हमारे देश के भविष्य हैं, तो उनको आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई, अब कार्यक्रम में फिर से समय है एक प्यारे से ट्रैक का। तो चलिए सुनते हैं शफकत अमानत अली की आवाज़ में ये प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, तो अभी आप सुन रहे थे माई नेम इज़ खान फिल्म से ये प्यारा सा गीत शफकत अमानत अली की आवाज़ में। दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी सूचना खासकर बिहार के सभी श्रोताओं के लिए।
1: जी हाँ, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है।
0: दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं क्या होगा।
1: आपके मोबाइल पर अचानक एक अलर्ट मैसेज या नोटिफिकेशन आ सकता है और कई फोनों में ये तेज आवाज या वाइब्रेशन के साथ भी आ सकता है।
0: ये अलर्ट सामान्य एसएमएस से अलग दिखेगा और आपके मोबाइल स्क्रीन पर साफ लिखा हो सकता है इमरजेंसी अलर्ट, ताकि आप तुरंत ध्यान दे सकें।
1: अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ऐसा मैसेज आए या आ चुका हो तो घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खतरे का संकेत नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट, एक मॉक ड्रिल, एक परीक्षण है।
0: इसका उद्देश्य है कि भारत में भूकंप, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपको समय रहते चेतावनी मिल सके, ताकि आप पहले से सावधान हो सके और सुरक्षित जगह पर जा सके।
1: याद रखिए, अगर 2 मई यानी आज आपके मोबाइल पर ऐसा कोई मैसेज आए या अलर्ट आए तो घबराइए बिल्कुल नहीं, बस सतर्क रहें और किसी भी तरह की अफवाहों से बचें।
0: ये कदम आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता और हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो ये थी एक जरूरी जानकारी। अब बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर, जो कि है फिल्म दिल से सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में। आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, इस एनर्जेटिक से ट्रैक के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय सिनेमा के सबसे चमकते तारे सितारे की, जिसने पर्दे के पीछे छुपकर बड़े पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, आज है प्रख्यात फिल्म निर्माता, लेखक, चित्रकार, ग्राफिक डिजाइनर और संगीतकार सत्यजीत रे की 105वीं जन्म वर्षगांठ। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1921 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था।
1: उन्होंने करियर की शुरुआत विज्ञापन जगत से की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विज्ञापन जगत से जुड़कर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ख्याति की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास के बाल संस्करण का चित्रण करते हुए उन्हें प्रेरणा मिली कि अपनी पहली फिल्म पंथेर पंचाली के बनाने की, जिसने उन्हें प्रसिद्ध और सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया।
0: दोस्तों, रे साहब ने इसके बाद चारुलता, आगंतुक और नायक जैसी कई बेहतरीन फिल्मों के साथ हमारे दिलों में अपनी जगह बनाई रखी। सत्यजीत रे बस एक बेहतरीन फिल्मकार ही नहीं, बल्कि रचनात्मक लेखक भी थे दोस्तों, जिन्होंने प्रसिद्ध जासूस फेलुदा और वैज्ञानिक प्रोफेसर शोंकू का किरदार प्रस्तुत किया, जो बंगाल

0: साहित्य का एक लोकप्रिय हिस्सा रहा है।
1: बिल्कुल धारणी। और सत्यजीत रे का प्रभुत्व केवल सिनेमा से ही नहीं आया समझा जा सकता है, वे एक बहुमुखी विद्वान भी थे। जैसे अभी आपने उनकी जासूसी उपन्यास विज्ञान की कथा के बारे में बताया,
0: जी।
1: उससे भी मुझे याद आया कि मैंने उनके बाल साहित्य और निबंध भी पढ़े हैं जो सही मायनों में रचनात्मकता से भरपूर थे।
0: और अंजलि, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किए हैं। उनकी रचनात्मकता यहीं तक नहीं रुकती दोस्तों, उनके ग्राफिक डिजाइन कार्य जिसमें पुस्तक आवरण और टाइपोग्राफी जैसे कई चीजें भी शामिल है, इनके जरिए उन्होंने बंगाली प्रकाशन की जो दृश्य संस्कृति है उसको भी एक नवीन आकार दिया।
1: दोस्तों, जब क्रिएटिविटी रे साहब में इतनी थी तो पुरस्कारों की कमी उन्हें कहाँ से होती। जहाँ एक तरफ भारत सरकार ने उन्हें ईयर 1992 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा, वहीं दूसरी ओर ऑस्कर अवार्ड को भी उन्होंने अपना बना लिया। ऑस्कर से जुड़ी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑस्कर रे साहब को उनके बीमारी के कारण उन्हें रूल्स चेंज करके उन्हें घर पर आकर सम्मानित किया गया था।
0: क्या कमाल रुतबा था उनका, वाह। मैंने कहीं पढ़ा था सम्मान की सूचना पर सत्यजीत साहब फूले नहीं समाए, उनकी भाव भंगिमा से वो खुशी, वो जो प्रसन्नता, वो जो उत्साह थी वो साफ झलक रही थी, जो एक रचनाकार के रोम रोम को और रचनात्मक बनाने पर मजबूर करती है। आखिरकार उनसे रुका नहीं गया और उन्होंने अपनी इस रचनात्मक पहचान और सम्मान को अपने लिए अप्रत्याशित कह डाला और दोहराते रहे कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।
1: दोस्तों, उनकी झोली में देश विदेश के कई सम्मान पड़े हैं। जितने नाम लूं उतने कम है। लगता है मानो पुरस्कारों और सम्मानों की सूची खत्म ही नहीं होगी। 1985 में उन्हें दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया। इससे पहले 1958 में भी उन्हें पद्मश्री और 1965 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जितने सम्मान उन्हें परदेश में मिले वो भी आपको अचंभित कर देंगे। स्टार ऑफ यूगोस्लाविया हो, फ्रांस का लीजेंड ऑफ ऑनर से लेकर सेंट मार्क का विशेष गोल्डन लॉयन, और ऐसे कई पुरस्कार रे साहब को सम्मान में दिया जा चुका है।
0: अरे वाह दोस्तों, और रे साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिनके सम्मान में कितना भी कुछ कह लो कर लो आपको वो कम ही लगेगा, लेकिन फिर भी उस सम्मान को पाने वाला फलों से लदे पेड़ की तरह झुका रहे, ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल है दोस्तों। और ऐसे ही व्यक्तित्व के स्वामी रह चुके हैं हमारे सत्यजीत रे साहब। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर हो जाए एक प्यारा सा मधुर सा गाना श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में।

0: आप सुन रहे थे परिणीता फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर।
1: दोस्तों स्वागत है आपका युववाणी के शनिवार विशेष सेगमेंट स्टार्टअप सैटरडे पे। दोस्तों कहते हैं कुछ कर दिखाने का जोश और जज्बा हो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज ऐसे ही एक प्रेरणा स्रोत से आपको जोड़ने और उनकी स्टार्टअप सफलता की कहानी से आपको प्रेरित करने की कोशिश है हमारी। आइए लेते हैं हम भी कुछ प्रेरणा इस टेलीफोनिक वार्ता से। सुनते हैं एंटरप्रेन्योर सुमित द्विवेदी से दिव्याराज की ये बातचीत।
2: नमस्कार, स्वागत है दोस्तों युवाणी के स्पेशल सेगमेंट स्टार्टअप सैटरडे में। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। आज के स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कल के भारत को बनाने का सपना देखा है। स्वागत है RBM कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित द्विवेदी जी का। सुमित जी कैसे हैं आप?
3: जी ग्रेट, फैंटास्टिक। नमस्कार आपके सारे ऑडियंस को भी मेरी तरफ से।
2: सुमित जी, हम सब आपके और आपके स्टार्टअप के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। प्लीज आप अपने स्टार्टअप और अपने बारे में श्रोताओं को बताइए।
3: स्टार्टअप एक बिजनेस प्लान हमने शुरू किया था 2016 में, जो उसमें हम लोग RBM ऑयल कॉर्पोरेशन के नाम से फर्म है। इसमें हम लोग बनाते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, ग्रीसेस का काम है इसमें। तो जितना भी मशीनरीज है हमारे पास जो हमारे सराउंडिंग में चलती है, इन सभी मशीनों को लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। इन सभी मशीनों के लुब्रिकेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हम कम्प्लीट करते हैं RBM ऑयल कॉर्पोरेशन से। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, करेंटली मैं कंपनी रन कर रहा हूँ।
2: ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली में लुब्रिकेंट ऑयल हर एक मशीनरी की जरूरत होती है, वो हमारी गाड़ियां हो, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हो, सब में जरूरत होती है। शुरुआत में तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा।
3: मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा कि जहाँ चुनौतियां हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटीज है। तो आप चुनौतियों को देख के या तो आप पीछे हट सकते हैं या तो उनमें अपॉर्चुनिटीज तलाश के आप उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे करियर के दौरान मेरे सामने काफी चैलेंजेस थे, जैसे कि काम शुरू करते ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट था कोरोना का पीरियड। एंड आफ्टर कोरोना तो हमारा टर्नओवर हमने लगभग ट्रिपल एक्स के आसपास हमने रन किया था। मतलब चैलेंजेस के टाइम पे हमने बिजनेस को डबल और ट्रिपल लेवल पे हमने ग्रोथ दर्ज की थी।
2: ये बहुत अच्छी बात है और काफी इंस्पिरेशनल बात कही आपने कि चुनौतियों से हमें और सीखना चाहिए, इनकरेजमेंट मिलता है। तो RBM ऑयल कॉर्पोरेशन का आइडिया आपको एक्चुअली में आया कहाँ से?
3: जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कंसेप्ट से जस्ट पहले हमें एक प्रोजेक्ट रन करने के लिए दिया जाता था कि कोई तो एक प्रोडक्ट के ऊपर आप एक पूरा प्रोजेक्ट बनाए। ऐसा समझे कि इस पे आपको बिजनेस ही खड़ा करना है, इस पे प्रोडक्शन लाइन ही आपको पूरी बनानी है। तो उस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस लग रहे थे कि इम्पोर्ट, जिस हिसाब से इंडिया की पूरी डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर, बाहर से देखें तो हम कितना सारा ऑयल इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में।
2: बिल्कुल।
3: तो उस टाइम के हिसाब से मुझे जब एक मार्केट सर्वे किया तो हमें बायोडीजल के ऊपर हमें लगा कि इस पे काम करना चाहिए। 2014-15 के आसपास से उन दिनों डीजल पेट्रोल को लेके काफी सारा, बायोडीजल को लेके मार्केट काफी गर्म महसूस होता था। मतलब पता चलता था, हर जगह चर्चा होती थी बायोडीजल क्या है, कैसे कर रहे हैं। तो वहां पे

0: हमने प्रोडक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया था, तो काफी श्योर शॉट था कि मैं आगे जाके उस पे ही काम कर सकता हूँ, आगे जाके उस पे मुझे काम करना है। लेकिन जब हम लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते पता चला कि जो मार्केट में उस टाइम का जो रनिंग कॉस्ट चल रहा था डीजल का अप्रोक्सीमेट 60-63 रुपीज लीटर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोजेक्ट था कॉस्ट एस्टिमेटम जो हम लोग निकाल रहे थे, जो हमारी कॉस्टिंग आ रही थी वो 67 के आसपास जो कि फिजिबल नहीं था। तो वहां से मुझे लगा कि यार बायोडीजल का प्रोजेक्ट तो हमने बना लिया लेकिन इसे काम करने लायक नहीं, क्योंकि हम अल्टीमेटली डेट में जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वहीं से फिर लगा कि ऑयल से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स पे जो हमने मार्केट सर्वे करना चालू किया तो पता चला ल्यूब्रिकेंट्स एक अच्छा फील्ड है जिसकी डिमांड काफी अच्छी है। इंडिया में काफी विदेशी कंपनियां जो मार्केट में चल रहे थे उस टाइम, तो हमें लगा शायद इन लोगों को हम लोग रिप्लेस करने का कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमारा कंज्यूमर खुश हो। और अपॉर्चुनिटी देखी हमने वहाँ पे मार्केट सर्वे के दौरान, दिखा कि गैप अप है काफी एंड वहां से हमने इसमें काम शुरू।
1: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुमित जी, अक्सर स्टार्टअप तो लोग शुरू कर लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है फंडिंग की। क्या बाहरी निवेश यानी बाहरी इन्वेस्टमेंट के बगैर भी स्टार्टअप सफल हो सकता है?
0: ये मेरे से पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उन्होंने ये चीज करके दिखाया है और 100% मैं इस चीज से अग्री करता हूँ। जो पॉइंट है ये बहुत सारे जो आपके ऑडियंस है उनमें कंफ्यूजन होगा कि बिना पैसे, जैसे किसी का भी बिजनेस, अभी मैं कॉलेजेस में जाता हूँ कभी गेस्ट लेक्चर वगैरह के लिए, तो आप कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर बिना फंड के हम काम कैसे ग्रो शुरू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पे लोग कई बार आके रुक जाते हैं, वो फंड का इंतजार करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि बिना फंड के भी आप चीजों को प्लान करके कर सकते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ तो जैसे एक होता है कि डेडिकेशन, आइडिया, टाइम और मनी, ये सारी चीजें, चार चीजें हैं जो बहुत की फैक्टर मतलब प्ले करती हैं आपके बिजनेस को, किसी को स्टार्टअप बनाने में और उनको रन करने के लिए। अगर आपके पास किसी एक चीज का अभाव है, मान लीजिए अगर आपके पास फंड की शॉर्टेज है, तो आपको प्लान इस तरह से करना चाहिए जहाँ पे फंड की जरूरत है वो कम हो। अब मैं एग्जांपल के लिए इसको आपके ऑडियंस के लिए मैं एक चीज बता दूं। जैसे मान लीजिए मैं पुणे में बैठा हुआ अभी पटना से इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है, यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट आई थिंक 1700-1800 किलोमीटर के आसपास होगा अंदाजन, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। यहाँ पे जाने के लिए हमारे पास कई अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सपोज हम ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं या फिर एरोप्लेन से जा सकते हैं। अगर हम एरोप्लेन का आइडिया लेते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक होता है कि यार फंड नहीं हमारे पास, तो हमें अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ हमें तलाशना होता है। तो मैं ऑडियंस को क्लियर करूँ कि अगर फंड की जरूरत पड़ती है तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं बिजनेस रन करने के लिए, आप वहां से इन चीजों को उठा के कर सकते हैं। और ये नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत चेंजेस प्लान में करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर चार पैरामीटर जो मैंने आपको बताया, टाइम, मनी, इफर्ट, आइडियाज, तो अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पे प्लानिंग को देता हूँ कि अगर आपके पास फंडिंग की शॉर्टेज है तो ऐसे जगह पे आप बाकी चीजों को फ्रंट फुट पे लेके आप वहाँ पे काम करके ले सकते हैं। वहाँ पे फंड को प्रायोरिटी नंबर 2 या 3 पे आप रख सकते हैं या जितनी जरूरत की फंड आपके पास अवेलेबल है उसको सही तरह से उसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे भारत सरकार में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्टार्टअप इंडिया के लिए
0: ये कमाल की चीज है। मतलब आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही है, जैसे CGTMSE प्रधानमंत्री का योजना चलती है जिसमें वो फंडिंग करते हैं। तो ये बहुत सारे आइडियाज है, मतलब यहाँ पे भी है जिनके थ्रू हम फंड उठा के काम करके ले सकते हैं।
1: हाँ जी, तो अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सुमित जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है हर एक इंडस्ट्री में, तो आपने अपनी कोर टीम कैसे चूज?
0: एक स्टार्टअप के लिए ये भी एक दूसरा पॉइंट है मैम, जिसमें आपने बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि आप अकेले कब तक कैसे रन करेंगे, आपकी टीम कैसे खड़े करेंगे। मेरा जर्नी रहा है अगर मैं उसको देखूं तो इनिशियली मैं देखिए केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट को बनाना है, फिर मार्केट सर्वे करके आपका टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करके उनमें आपको हैमर करना है, आपको वहाँ पे सेल्स भी करना है। मतलब अगर एक लाइन में मैं इसको बोलूँ तो आपको बनाना भी है, बेचना भी है, अकाउंटिंग भी करनी है, आपको बाकी सारी चीजों का भी ध्यान रखना है, राइट? तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आपको टीम चाहिए, तो मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे टीम में लोगों को लो जिनका डेडिकेशन हो काम करने का, जिनको सीखने की चाह हो, तो धीरे धीरे चीजें पॉसिबल हो जाती है, लोग मिलते रहेंगे आपको। अपने इंडिया में तो अभी देखिए जिस हिसाब से भी सिचुएशन है, यूथ का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा खासा है, टीम आपको सिलेक्शन धीरे धीरे हो जाती है और धीरे धीरे फिर प्रोडक्शन के लिए फिर लाइन अप करना, फिर सेल्स के लिए लाइन अप करना, फिर अकाउंट्स के लिए, फिर मार्केटिंग के लिए, तो समय रहते धीरे धीरे कर सकते हैं। बट हाँ, इनिशियली आप हर फेज में आपको खुद पहले खड़ा होकर काम करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया सुमित जी, RBM ऑयल कॉर्पोरेशन जो आपकी कंपनी है वो कई जगहों पे है, तो आप इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएंगे कि ये किन किन

0: जगहों पे अभी आप काम कर रहे हैं?
1: आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि 2016 में हमने एक काम शुरू किया किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्किंग के साथ। अभी हम इंडिया के लगभग 17 से 18 स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे जो डीलरशिप नेटवर्किंग है लगभग 750 डीलर के आसपास कनेक्टेड है। एंड इंडिया के अलावा भी हम लोग अपना जो प्रोडक्ट है वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं समुद्री जहाजों के जरिए। 16 से 17 कंट्रीज हैं आउट ऑफ इंडिया जहाँ पे हम लोग अभी मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं।
0: अच्छी बात है, बहुत खुशी महसूस होती है कि जब हमारे भारत से इतने अच्छे स्टार्टअप्स, इतने अच्छे ब्रिलियंट आइडियाज निकलते हैं, या आगे के युवा के लिए आप लोग इंस्पिरेशन बनते हैं, एक आइडिया बनते हैं कि लोग अपना नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनते हैं।
1: आपके ऑडियंस को एक ही मैसेज है, कई बार लोग स्टार्टअप के आइडियाज तक ही फंस के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। मेरा उन लोगों को एक ही मैसेज है कि अगर आप एक जॉब लेके बैठे हैं तो आपने एक सीट रिजर्व करके रखी हुई है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है 10 नए सीट जनरेट करने की, तो आपको हमेशा उसके लिए आगे आके बढ़ के काम करना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए। बिना रिस्क के वही बात हो जाएगी कि आप अपॉर्चुनिटी तक वो नहीं लेके जा पाएंगे, वो फिर प्रॉब्लम ही रह जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी तक लेके जाना है प्रॉब्लम को, तो आपको थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा डेडिकेशन वर्क एंड प्लानिंग के साथ उतरना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका इतनी कीमती समय हमें देने के लिए। और
2: दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वार्ता आपके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं रहा होगा, आपकी सोच और नई समझ को एक नए आयाम मिला होगा। इसी के साथ धारिणी, आज के जॉब अपडेट्स के बारे में हमें श्रोता को बताइए।
3: जी बिल्कुल, ट्रांसलेशन में रुचि रखने वाले हमारे युवा दोस्तों के लिए सुनहरा अवसर है। SSC द्वारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत 84 रिक्त पदों के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 14 मई 2026। बाकी विस्तृत जानकारी लेने के लिए आप पहुँच सकते हैं SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर।
2: दोस्तों, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी गाने की ओर।

0: दोस्तों इस एनर्जेटिक से गाने के बाद चलिए अब जानते हैं आज का रोचक तथ्य।
1: दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से सूरज निकलता है और गुजरात में जाके ढलता है, तो दोनों जगह के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो वो कैसे होता है ये जान लीजिए। इस गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में लगभग 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आता है, यानी देशांतर विस्तार, और 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री का मतलब हो गया 120 मिनट, यानी 2 घंटे का फर्क आता है। इसलिए हमारे देश में मिर्ज़ापुर यानी यूपी के मिर्ज़ापुर से जाती है IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन। तो यही था आज का रोचक तथ्य, तो आइए जानते आगे बढ़ते
0: दोस्तों हैं। इसी के साथ हमें आपसे लेनी होगी इजाजत।
1: दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पटना।
0: दोस्तों आप दीजिए अपनी रेडियो दोस्त धारिणी और अंजलि को इजाजत। हम फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में नए उत्साह जगाए। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेब 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है मगही भाषा का कार्यक्रम माग थी।

मगधी के सुनिहार श्रोता लोगिन के दिव्या भारती के प्रेम भरल प्रणाम। श्रोता लोगिन, हर साल 2 मई के सौंसे दुनिया भर में विश्व टूना दिवस मनावल जा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित ई दिन टूना मछली के महात्म और एकर संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलावे के लिए समर्पित है। दिसंबर 2016 में आधिकारिक तौर पर ई दिन के घोषणा कैल है। विश्व स्तर पर पहला बार 2017 में मनावल गेल हल। एकर उद्देश्य सौंसे दुनिया में टूना मछली के घटल आबादी के बचाना और एकर अवैध शिकार के रोकना है। टूना केतना देश के लिए भोजन और पोषण के मुख्य स्रोत है। ई मछली पालन उद्योग और एगो बड़ हिस्सा है जे लाखों लोगन के रोजगार और आर्थिक स्थिरता दे है। ई मछली ओमेगा 3, विटामिन B12 और प्रोटीन और केतना दूसर महात्म वाला खनिज से भरपूर है। ई बहुते तेज तैरे वाला मछली है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लेल एगो जरूरी हिस्सा भी है। लगातार बढ़ल मांग के कारण टूना के केतना प्रजाति अब खतरा में है। आधुनिक और औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़े के तरीका से इनकर संख्या में भारी गिरावट आई है। विश्व स्तर पर लगभग 80 से ज्यादा देश में टूना मछली पालन होवे है और हर साल लगभग 70 लाख टन टूना पकड़ल जाए। आय के दिन के मुख्य संदेश ई है कि हम समुद्र के ई अनमोल संसाधन के उपयोग ई तरह से करथिन कि आवे वाला पीढ़ी के लिए भी बचल रहे। अब अपने सब लगी हम लेके लिए लोक भजन। गायक कलाकार हथिन राम विनय शर्मा कमल, तसुंतिनी लोक भजन।

0: वाह बहुत नीमन। लौट चला अयोध्या श्री रघुवीर। अभी हमने सब सुन रही है लोक भजन। गायक कलाकार हलथिन राम विनय शर्मा कमल। त आगे हिनका से और भी गीत सुनम। श्रोता लोगिन हर साल 3 मई के दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनावल जा है। ये दिन लोकतंत्र के चौथा स्तंभ प्रेस के आजादी के महात्म के रेखांकित के लिए है और उ पत्रकार के श्रद्धांजलि देव है जे अपन जान के जोखिम में डाल के सच के दुनिया के सामने रखा थीन। एसो के थीम है शांतिपूर्ण भविष्य के आकार देना, मानवाधिकार विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस स्वतंत्रता के बढ़ावा देना। एसो के मुख्य वैश्विक सम्मेलन लुसाका जाम्बिया में 4 से 5 मई के आयोजित किए जेते। साल 2026 में प्रेस के स्वतंत्रता के सामान कुछ नया गंभीर चुनौती है जेकरा पर विश्व स्तर पर बात हो रहले है। एकरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भ्रामक जानकारी सुरक्षा और स्वतंत्रता सूचकांक है। एकर महात्म है कि दुनिया भर में प्रेस के आज़ादी के स्थिति के मूल्यांकन करे के मीडिया के स्वतंत्रता पर होबे वाला हमला के बचाव करे के। अब कार्यक्रम में हम अपने सबके सुनवा रही है भेंट वार्ता। बचपन के जानलेवा बीमारी और ओकरा से बचाव के टीका भेंट वार्ताकार हथिन डॉक्टर संजीव कुमार और हिनका से बातचीत कर रही है दिव्या भारती। आज हमने के स्टूडियो में हथिन डॉक्टर संजीव कुमार जे शिशु रोग विशेषज्ञ हथिन और अपने अभी अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हथिन। तो आज डॉक्टर संजीव कुमार से बच्चा सबके जान होबे वाला जानलेवा बीमारी और ओकरा से बचे के उपाय के बारे में बात करम। तो सबसे पहले डॉक्टर संजीव कुमार के स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब अपने के कि अपने इतना कीमती समय हमनी सबके दिलथिन।
1: धन्यवाद दिव्या।
0: आज डॉक्टर साहब से बहुते जानकारी के बात करम और जानम कि बच्चा सब में होबे वाला जे जानलेवा बीमारी है ओकरा पर अपने कुछ टिप्पणी डालथिन।
1: देखियो बचपन के जे जानलेवा बीमारी हन ओकरा में कुछ गंभीर बीमारियां जो है ज्यादा हम लोग हाईलाइट कर रही है।
0: हाँ।
1: पहला है डिप्थीरिया।
0: अच्छा।
1: जेकरा हिंदी में मांस संतिका भी कहा है।
0: ओ।
1: दूसरा है पर्टुसिस जेकरा लोग कहे कुकुर खांसी सुनलहु।
0: अच्छा। हो। हाँ हाँ, जरूर।
1: तीसरा है टीटनस जरा हिंदी में धनु स्तंभ भी कहा है।
0: अच्छा।
1: चौथा ट्यूबरक्लोसिस है बच्चे

0: में आजकल भी ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा पावल जा रहे हैं। तो आप छठा है पोलियो, सातवां है हेपेटाइटिस बी, और मीजल्स भी अब बहुत खतरनाक रूप ले लेके हैं। सरकार के नज़र में है और हमारी सब के नज़र में है कि अगर कैसे हम लोग इरेडिकेट कर सके ये, यहाँ
1: हाँ
0: से उखाड़ फेंकवे, है ना। तो डिप्थेरिया पर्टुसिस से सुन लो, एक सब के सब जानलेवा बीमारी है और बहुत पहले से एक रुकावट के लिए, रोकने के लिए टीकाकरण के प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब, तो एक कारण की होवा है?
0: हाँ, डिप्थीरिया, ये पूछ लो, बड़ा अच्छा चीज। डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है, कीड़ा हुआ है। हाँ, एकरा में की हुआ है कि गला में झिल्ली नुमा कुछ सांस के आसपास, जहाँ से सांस लेवे है, जहाँ से झिल्ली जो पतला सा है वहाँ आसपास एक आवरण बना दे है, जेकरा से सांस लेवे में काफ़ी तकलीफ होए लगे बच्चन से के। ओकरा चलते हमार के तुरंत सांस उखड़ल बच्चा के रिपोर्ट कैलियन, तो हमन डॉक्टर साहब के काम है कि तुरंत ओकरा पता करके, रिकॉग्नाइज करके, और जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन के अलावा इंट्यूबेट करे पड़े, ट्यूब लगा करके गला में, और वेंटिलेटर पर भी चढ़ावे पड़े, या नहीं हुआ तो कभी कभी गला के छोटा सा छिद्र करके हवा जाइलक, पाइप लगेलूँ, ओकरा से बच्चा सब सांस लेबल लगलक।
1: ओ
0: इतना खतरनाक है, ऐसे ही
1: अच्छा
0: दवाइयों से तुरंत न सुने है।
1: वो
0: ये
1: तो गला में पाइप लगा के ओकरा
0: हाँ,
1: सांस लेवे के
0: सांस
1: उपाय
0: लेवे
1: कैल
0: के
1: जाए।
0: अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो यूजुअली ज़्यादा हो ही जाए।
1: अच्छा, तो
0: या
1: डॉक्टर साहब, एक लक्षण के बारे में कैसे पता
0: यह
1: चलते,
0: लक्षण होले
1: कैसे
0: कि
1: पता
0: सांस
1: चलता
0: लेवे में
1: कि
0: तकलीफ होलन, खांसी बहुत ज़्यादा हो है, खूब तेज बुखार लग,
1: ओ अच्छा, बहुत तेज बुखार हो
0: बहुत
1: जाए,
0: तेज बुखार,
1: साथ में खांसी भी हुआ
0: खांसी, और धीरे
1: है
0: धीरे
1: ना?
0: बढ़ते बढ़ते सांस ले में तकलीफ होवे लगले। हाँ,
1: अच्छा
0: ये देखते पता चल जाए कि सांस अगर लेवे में तकलीफ है, लगतन जैसे कि गला में कुछ अटक गए हैं।
1: ओ
0: जी
1: अच्छा, डॉक्टर साहब, तो एकला लगी तो कोई कोई टीका भी होता
0: हाँ, टीका है, बहुत
1: है
0: दिनों
1: ना?
0: से टीकाकरण चल रहे हैं,
1: हाँ
0: लेकिन टीकाकरण प्रभावी रूप से चले इसके लिए सरकार हमेशा तत्पर रहे। DPT नामक टीका एकरा आवा है,
1: अच्छा,
0: जे बच्चा
1: डीपीटी
0: के, हाँ
1: है
0: बच्चा
1: ना?
0: के 6 सप्ताह से एकरा शुरू कैल जाए के चाहे,
1: अच्छा, 6 सप्ताह से शुरू कर
0: शुरू
1: देवल
0: कर
1: जाए।
0: देना चाहिए। 1.5 महीना के जैसे बच्चा होलन
1: हाँ
0: टीकाकरण केंद्र में जा करके टीका ले सको।
1: ओ अच्छा, तो टीकाकरण केंद्र में मतलब कि कोई पैसा वैसा
0: सरकार के
1: भी नहीं
0: नहीं,
1: लगते
0: कोई
1: सरकार
0: निशुल्क
1: के
0: है,
1: तरफ से, है
0: सरकार के
1: कि
0: द्वारा
1: नहीं?
0: एकदम निशुल्क है, एकरा कोई खर्चा ना है,
1: तब तो
0: सिर्फ जाए
1: जरूर
0: के
1: है।
0: है। आई बहन, आप आंगनवाड़ी दीदी सब भी बताबा है टीका के बारे में, वहाँ भी नाम दर्ज करा करके सेंटर पर जा सके, टीका ले सको,
1: ओ, तो कोई परेशानी नहीं है,
0: कोई
1: सरकारी
0: परेशानी नहीं है,
1: है,
0: एकदम
1: मुफ्त
0: सरकारी
1: में
0: है, निशुल्क
1: अच्छा
0: है।
1: इलाज है कि
0: अच्छा
1: नहीं? सरकार की तरफ से इतना अच्छा
0: अच्छा
1: अच्छा
0: रोक है।
1: नीमन
0: हाँ
1: नीमन योजना
0: और
1: बनावल गए हैं,
0: जी
1: है कि
0: जी
1: नहीं?
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: एकरा जरूर फायदा उठावे के चाहिए। और डॉक्टर साहब, एकरा में उपचार भी कुछ होता है, मान लेथिन कि
0: उपचार बतैरिए ने, उपचार एकरा रोकने वाला जो टीका है सबसे बढ़िया चीज़ है, और उपचार
1: हाँ,
0: थोड़ा कठिन है। अगर हो गए कितना
1: मान
0: भी
1: लेथिन कि
0: कोशिश,
1: जैसे टीका
0: हाँ
1: नहीं
0: हो गए,
1: लगेली
0: नीक नहीं
1: है।
0: लगे हो गए, तो
1: हाँ
0: तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके डॉक्टर के बताबे के चाहिए कि देखा हमारा बच्चा बुखार लग रहे हैं, खांस रहे हैं, या अगर उनका देखे में लगा कि नहीं सांस लेवे में तकलीफ है और ओकर सुविधा वहाँ नहीं हो सका है केंद्र पर, तो ओकरा आगे भी मेडिकल कॉलेज जैसे जगहों में भेज सका हैं, जहाँ पर सारा इलाज फ्री निशुल्क उपलब्ध है,
1: अच्छा, सब जगह निशुल्क
0: सब जगह
1: है ना,
0: सरकार, जी,
1: कि
0: सरकार के
1: बच्चा
0: मेडिकल
1: सब?
0: कॉलेज जगह टर्सरी सेंटर कहल जा है, वहाँ निशुल्क सब सुविधा उपलब्ध है।
1: अच्छा, पहले तो कितना परेशानी हो
0: पहले
1: वाले,
0: परेशानी
1: अब
0: बहुत हो
1: पैसा
0: वाले।
1: लगे भी सोचे
0: हाँ,
1: पड़ा
0: एकरा
1: ले।
0: में एक्चुअली 2 तरह के डॉक्टर की जरूरत हमेशा पड़ा है, एक तो जो बच्चा होले तो बच्चा के डॉक्टर की जरूरत पड़ा है, और
1: हाँ
0: दूसरा जो है गला रोग विशेषज्ञ हो, ENT वाला डॉक्टर कहला है, उनका
1: अच्छा
0: भी जरूरत पड़ा है,
1: अच्छा नाक कान गला रोग
0: नाक कान गला
1: विशेषज्ञ
0: रोग
1: है ना?
0: विशेषज्ञ, एकदम सही समझ लो दिव्या।
1: हाँ अच्छा, तो डॉक्टर साहब, एगो सरकार द्वारा इंद्रधनुष काहे चलावल जाए थे,
0: जी
1: सुनलिए कि
0: जी जी
1: इंद्रधनुष
0: जी
1: एगो
0: जी
1: सरकारी
0: जी जी
1: योजना है?
0: इंद्रधनुष नाम बड़ा रखल गए हैं सोच करके, इंद्रधनुष जैसे सब जाना खिन, जरा हिंदी में सतरंगी भी कहल जा है,
1: हाँ,
0: कि
1: सात रंग से बना
0: सात
1: है
0: रंग
1: इंद्रधनुष।
0: से 7 बीमारियों के बचाव के लिए इनाम रखल के
1: ओ
0: सरकार,
1: अच्छा, ये लगी
0: जकरा में
1: इंद्रधनुष नाम
0: टेटनस
1: के।
0: पहला है, जरा बतैलियन,
1: हाँ
0: पर्टुसिस है, टिटनस है, चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियो है,
1: हाँ
0: हिपेटाइटिस बी है, खसरा है, ये 7ों बीमारी जानलेवा है और टीका से रोकल जा सका है, इसलिए सरकार एकरा पर स्पेशल ध्यान देले हखिन। इसी संबंध में 25 दिसंबर 2014 की प्रोग्राम जो है कार्यक्रम चलावल गए हैं, भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा।
1: हाँ
0: एकरा से पूरे 100% कैसे जो है बच्चा कवर कर जा सके, होवे कि

0: बिहार में और बहुत जगह हिंदी, जहाँ मगही हिंदी और कुछ बोलल जा है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, ये सब
1: हाँ
0: जगहों में टीकाकरण बढ़िया से न हो पावा है। 100 बच्चा में 65 पर बच्चा टीका बढ़िया से ले पावा है, और बाकी सब बच्चा छूट जा है।
1: ओ
0: तो
1: अच्छा
0: कैसे हम करिए कि 90% तक ये हम टीका दिला सके बच्चा के?
1: हाँ हाँ
0: तो सरकार एगो गोल रखलखिन है कि 2020 तक एकरा हमरा कंप्लीट करके 90% बच्चा के हमरा टीकाकरण दे देना है, जिससे कि इस बीमारी से मृत्यु जो हो रहे हैं ओकरा रोकल जा सके।
1: अच्छा देखते सरकार कितना बढ़िया बढ़िया
0: सरकार
1: निमन
0: एकदम
1: निमन
0: तत्पर रखें,
1: है ना
0: बस
1: योजना बना
0: खाली जाए
1: रखिन
0: के है,
1: है।
0: सेंटर पर दीदी से मदद लेवे के है, और उनका बतावे के है सब टीका निशुल्क उपलब्ध है, ये सब जानलेवा गंभीर बीमारी के,
1: थोड़े जरूरत है हमने के जागरूक होवे के,
0: जागरूक होवे के एकदम
1: जानकारी रहे
0: एकदम
1: के है ना, ये तो अपने को
0: एकदम
1: बोल
0: सही
1: लिए हैं।
0: कहलखिन है। जागरूक होना
1: हाँ
0: बहुत जरूरी है, क्योंकि एकर इलाज बहुत मुश्किल है, और कभी कभी हमारा बच्चा खोवे भी पड़ा है।
1: अच्छा
0: जी,
1: ओ बच्चा के एकरा से जान भी जा
0: जान
1: सकेला
0: जान
1: है ना।
0: जानलेवा बीमारी है, कभी कभी जान चल जाए, क्योंकि अगर ज्यादा मेम्ब्रेन बन गए कुछ के लिए, तो हो सके हमारा से ट्यूब नहीं हो जाए। ENT वाला बोले लियन, तुरंत नहीं मिललखिन, मिललखिन मुश्किल से, तो ट्यूब लग नहीं पैलन, और
1: हाँ
0: लग भी गए तो वेंटिलेटर जैसा सुनो सांस संबंधी मशीन होबा है,
1: हाँ
0: एकरा पर जब रखल जाए तो ये खुद भी एक जानलेवा होबा है। कभी कभी
1: अच्छा
0: कराए वेंटिलेटर जनित रोग होवे लगा है,
1: ओ
0: तो
1: मशीन भी
0: जा
1: जानलेवा हो
0: मशीन
1: जाए
0: में
1: है ना।
0: सर्किट अगर बढ़िया स्टरलाइज होने के बावजूद भी ओकरा से बैक्टीरिया की बीमारी अलग तौर से, डिप्थीरिया के अलावा दूसरा बीमारी लग सका है। तो
1: हाँ
0: दिव्या एकदम ये न है कि हम वेंटिलेटर पर रख देवे तो बुतरुआ बचिए जेते,
1: अच्छा
0: बचना मुश्किल यहाँ तक, इसलिए टीका दिलाना बहुत जरूरी है।
1: हाँ
0: हाँ,
1: ऐसे भी तो सोचे चाहिए कि बीमारी से पहले है
0: रोग करना
1: ना
0: चाहिए,
1: रोक करे
0: रुकावट
1: के
0: करना
1: चाहिए
0: चाहिए, एकदम
1: कि
0: सही
1: बाद में कुछ
0: कहलो। ये तो
1: परेशानी
0: होले
1: नहीं होवे।
0: डिप्थीरिया के, पर्टुसिस में देख लो कि महीनों बच्चा खांसते रहे,
1: हाँ
0: आंख से जैसे लगाए खून फेंक दिलक, कभी कभी इतना खांसा है जोर से बच्चा कि ब्रेन में हेमरेज भी हो जाए,
1: हाँ
0: हर्नीएट भी कर जाए बच्चा के,
1: हाँ
0: इसके रुकावट के लिए भी टीका है, कुकुर
1: अच्छा
0: खांसी टीका से रुक जाए। DPT में तीनों कंबाइन है, और टिटनेस जो है जेका सब जानलखिन, पहले से लोग अवेयर भी होले हैं, इनका टीकाकरण करावे है, और करावे की जरूरत है, और नहीं तो ये भी एक जानलेवा बीमारी है टिटनेस, जैसा सब हम सब जाने ही है कि टिटनेस बड़ी ही खतरनाक बीमारी है और जानलेवा
1: हाँ
0: है, और टीका से रोकल जा सका है, तो एकदम टीका लेना जरूरी है। और DPT एक टीका में तीनों बीमारी का हमारा बचाव हो जीते दिव्या,
1: अच्छा एक टीका में तीनों
0: एक टीका
1: बीमारी।
0: तीनों कॉम्बिनेशन से आवा है, सरकार के यहाँ निःशुल्क मौजूद है, एकरा दिला से हमारा डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस तीनों एक साथ रुक सका है। या मदर अगर गर्भवती है तो 2 गो टेटनस टॉक्साइड के टीका लगेला से, केंद्र पर जाके लगेला से नवजात बच्चों के टेटनस न होते कहियो।
1: अच्छा
0: जी,
1: कितना
0: आप
1: बढ़िया
0: पोलियो के
1: सर।
0: बारे में तो जानबे कर रहे थे कि सरकार बहुत तत्पर है टीकाकरण के लिए, और उसका इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, अगर हम लोग सब मिलकर सहयोग करबे तो ये भी बहुत जल्दी स्मॉल पॉक्स नियर भाग जीते, एकरा
1: अच्छा
0: हमरा भगा देना है,
1: हाँ हाँ सब मिलके कोशिश
0: सब
1: करते
0: मिलकर
1: तब
0: कोशिश
1: जरूरे
0: करके भगा
1: भागते
0: देना। जी जी
1: है
0: जी
1: कि नहीं।
0: जी जैसे ही पोलियो भागते तो हम लोग जरा कहे छोटी माता, जगह से बहुत बच्चा मृत्यु हो जाए है,
1: हाँ
0: उसका नेक्स्ट जो है हम लोगों का उस पर जो है ध्यान रहते कि कैसे जल्दी मीजल्स के टीका दे के भी ओकरा खत्म करिए।
1: ओ अच्छा
0: ये
1: पोलियो के बाद देकर
0: पोलियो के बाद
1: मेजर्स
0: मीजल्स
1: के
0: पर,
1: टीका
0: मीजल्स
1: है
0: के लिए
1: ना।
0: एक।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात बताइए
0: जी
1: कि जे समाज में अंधविश्वास और भ्रांति के चलते जे बीमारी फैल रहा
0: जी जी
1: है ना, ओकरा बारे में भी कुछ अपना रोशनी डालती ना।
0: अंधविश्वास देखो, टिटनेस में बहुत सारा अंधविश्वास के बहुत जगहों में की करे, पुराना कोई औजार से, हंसुआ से, कोई छोटा पुराना घर के रखल छोटी सी कटार से जे
1: हाँ
0: नाभ काट दे हखिन, तो ओकरा में
1: अच्छा
0: टिटनेस होवे के संभावना आओ बढ़ जाए। कहीं कहीं पर तो यहो सुनलिए हैं कुछ गोबर गाँव के गाय के या कुछ के गोबर
1: हाँ
0: भी लगा देवे है, लोग सोचे है कि एकरा से जल्दी नाल गिर जेते, जो गलत है,
1: ओ
0: गिरते नहीं, हो सका है कि बच्चा के टेटनस हो जाए और जल्दी से मौत हो जाए, ई सब से एकदम बचना चाहिए।
1: अच्छा
0: टीका एक ऐसा चीज है जो बहुत मुश्किलों से बहुत वैज्ञानिक ने बड़ी कोशिश से बनेलखिन है, आ
1: हाँ
0: एकरा हम सब के इस्तेमाल करे के चाहिए, मान लेना चाहिए कि यह सत्य है। बहुत सारा भ्रांति होवे कि टीका देला से ओकर बुतरुआ ई हो गेले, ओकर बुतरुआ बीमार
1: हाँ
0: पड़ गेले,
1: हाँ
0: ई सब गलत बात है, टीका से जल्दी बीमार न पड़े है, ज्यादातर बचाव होवे है, तो ज्यादातर के हम लोग बात करिए, जब तो एकाध को कोई बीमार पड़ जाए ओकरा बारे में दौड़ के घबरा नहीं जाइए इनकी बीमारी के लिए हम छोड़ दिलिए।
1: हाँ तब इतना बढ़िया बढ़िया मतलब बात बतेलखिन है
0: जी
1: कि
0: जी
1: ना।
0: जी जी सब
1: ऐसे
0: हाँ
1: भी
0: जी
1: सरकार द्वारा इतना जब चलावल गेल है योजना, तो हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि जे आंगनबाड़ी के दीदी जी
0: जी
1: हथिन
0: जी जी
1: चाहे जे भी हथिन
0: जी
1: उनका से मिल गई।

0: सरकार के इतना केंद्र
1: जी
0: है कि
1: आजकल तो
0: नहीं?
1: कुछ महंगी वैक्सीन जो पहले प्राइवेट में बड़ी महंगा मिल रहा है, जरा
0: हाँ
1: का नाम सुन लो, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजी वैक्सीन, ये
0: हाँ
1: मेनिनजाइटिस निमोनिया के बच्चा के रोग है। कभी कभी तो मेनिनजाइटिस ऐसा हो जा ले कि
0: हाँ
1: बच्चा मानसिक तौर से विकलांग हो जा ले,
0: ओ
1: और अगर बचा हले भी तो, नहीं तो मेनिनजाइटिस से ही मर जा हले। तो उस सब केसेस में जो है हीव नामक वैक्सीन जो है ओकरा फ्री
0: अच्छा
1: है, सरकार निःशुल्क उपलब्ध करेलखिन
0: अच्छा अब निःशुल्क हो
1: उनका।
0: गए ना?
1: हाँ अब निःशुल्क है, अब
0: देखिन
1: ओकरा
0: हमें और
1: पैसा नहीं
0: लगे लिया
1: लगते।
0: तो कितना
1: हाँ,
0: है
1: पहले
0: ना
1: 500 रुपया
0: पहले,
1: दे पड़े
0: वो भी
1: प्राइवेट में
0: एक
1: जाके,
0: बार में।
1: एक बार में।
0: हाँ 4 बार में
1: आए आप
0: तो
1: तो सोच लो कि 2000 लग जीते, वो
0: हाँ
1: टोटल जो है हमेशा पैसा बचते और बच्चों बचते।
0: हाँ अच्छा, ये जैसे लड़की सब के भी तो एगो सर्वाइकल के टीका नया चल रहे हैं
1: हाँ, सर्वाइकल कैंसर की
0: तो।
1: बात हो रही, क्योंकि हम लोग
0: हाँ
1: में बहुत सारा जो है,
0: हाँ
1: औरतन के सुनलखिन होत कि बचदानी कैंसर, सर्विक्स के कैंसर होवा है, ओकर
0: अच्छा
1: बचाव खातिर टीका आल है, और सबके उम्र 13 से लेकर के 45 तक सब
0: हाँ
1: ले सका हखिन,
0: अच्छा
1: और ये बचदानी और बचदानी के मुंह से संबंधित कैंसर से बचाव पा सक पा हम लोग रोक सके
0: अच्छा तो
1: हिए।
0: एकला लगी भी सरकार कुछ योजना बनेल थी ना कि नहीं?
1: योजना अभी चल रहे हैं, चूंकि अभी बहुत जगहों में एक ट्रायल हो रहे हैं, और
0: हाँ
1: प्राइवेट में तो सब जगह उपलब्ध है,
0: हाँ
1: सरकार भी तत्पर है, जैसे ही जानलेवा बीमारी सबसे बचाव होते तब तो ओकरा पर भी जाल जीते।
0: अच्छा, तब अब तो डॉक्टर साहब लेकिन समय भी तो हो रहा
1: जी जी
0: है
1: जी
0: ना?
1: जी
0: आपने स्टूडियो में एलथिन इतना नीमन नीमन फरिया फरिया के बात बदलथिन,
1: जी जी
0: तब
1: जी
0: आशा करिए कि श्रोता लोग जरूर एक फायदा उठेथिन।
1: एकदम दिव्या, हम लोग सब यही
0: हाँ
1: कामना कर रही है कि सब बात सुनथिन। आ हम लोग के स्पेशल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान पिछड़ रहले हैं,
0: हाँ
1: एकरा में हमारा गिनती ना आवे, सब बुतरू के कैसे हम टीकाकरण करिए एकरा पर हमारा ध्यान देना है। इस
0: हाँ
1: मिशन के यह है बात है कि सब लोग समझथिन आगे, और
0: हाँ
1: जल्दी से जल्दी जाके दीदी से मिल के या केंद्र पर जाके टीका बच्चन के लेथिन, और
0: देखिए सुविधा तो है ना,
1: सुविधा
0: बस
1: बहुत है,
0: जरूरत है थोड़े जागरूक होवे के।
1: जागरूक है।
0: आज अगर जो हमरा नहीं जरूरत है तो अगल बगल के जानकारी दिए
1: हाँ
0: जिनका जरूरत
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना?
1: हाँ दिव्या जी बहुत अच्छा कहलखिन है कि जगह जानकारी है वो अपने तक बात न रखे, लोगों को ही बतावे कि जो जल्दी टीका लेगन एकरा से
0: हाँ
1: बुतरू कम से कम ई सब 7 बीमारी जो बतलियन उनका से बचाव कैल जा सके है।
0: बहुत डॉक्टर साहब बढ़िया बात बतेलखिन।
2: अभी हमने सब सुन रहे भेंट वार्ता, बचपन की जानलेवा बीमारी और ओकरा से बचाव के टीका। भेंट वार्ता कर रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार और हिंका से बातचीत कर रही हम दिव्या भारती। श्रोता लोगिन, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस हर साल 3 मई के मनावल जा है। एकर मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में तेंदुआ के संरक्षण और ओकर सामने आवे वाला चुनौती के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ई आधिकारिक तौर पर हाल के साल में 2023 से ज्यादा व्यापक रूप में मनाए जाए लगल है। एकरा रेगिस्तान, घना जंगल और इंसानी बस्ती के पास भी जीवित रहे के अद्भुत क्षमता है। ई दिन के मनावे के लगी वन्य जीव के प्रति अपन समझ के बढ़ाथिन और दूसर के जागरूक करथिन। पर्यावरण के बचावे लेल जुड़ल संस्था के समर्थन करथिन। सोशल मीडिया पर तेंदुआ के संरक्षण से जुड़ल संदेश के डालथिन। भारत में तेंदुआ के संख्या में पिछला कुछ साल में वृद्धि देखल गेले है। मध्य प्रदेश के तेंदुआ राज्य भी कहल जाए। इनकर खाल और हड्डी के लेल एकर अवैध व्यापार भी केल जाए। जंगल के कटला से इनकर रहे के जगह पर कम हो रहा है, तो एकरा लेल हम सब के जागरूकता फैलावे के चाहिए। और अब अपने सब सुनथिन पूर्वी गायक कलाकार हथिन राम विनय शर्मा कमल।

अभी हमने सब सुन रहे हल पूर्वी गायक कलाकार हलथिन राम विनय शर्मा कमल, तिनका बहुत एक धन्यवाद। श्रोता लोगिन, अपन देश भारत में कोयला खनिक दिवस हर साल 4 मई के मनावल जा है। ई दिन उ खनिक के योगदान और कड़ा मेहनत के सम्मान देवे लेल समर्पित है, जे जमीन के गहराई में जाके देश के ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के लिए कोयला निकाल हथिन। एकर महात्म और उद्देश्य में है कि उ लाखों लोगन के प्रति आभार व्यक्त करे के जे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक परिस्थिति में काम कर रहे थे। खदान में काम करे वाला श्रमिक के लिए बेहतर सुरक्षा मानक और स्वास्थ्य सुविधा के मांग और जागरूकता फैलावे के उ खनिक के याद करे के जे काम करित खेवा हादसा में अपन जान गवैलन है। भारत में कोयला खनन के इतिहास बहुते पुरान है। एकर शुरुआत 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय रानीगंज कोयला के क्षेत्र जे पश्चिम बंगाल में है उहे से होले हल। कोयला खनिक दिवस के परंपरा खदान में काम करे से कठिन अनुभव और उनकर अधिकार के रक्षा के उद्देश्य से शुरू होले हल। भारत में बिजली उत्पादन के एगो बहुते बड़ हिस्सा आज भी कोयला पर निर्भर है। एकरा काला सोना भी कहल जा है, कहे कि ई औद्योगिक विकास के लिए बहुते जरूरी है। जहां कोयला विकास के लिए जरूरी है, वहीं आधुनिक समय में टिकाऊ और खनन और पर्यावरण के रक्षा पर भी बहुते जोर दिल जा रहे हैं, जेकरा से प्राकृतिक संसाधन के दोहन कम से कम होबा है और पर्यावरण के नुकसान नहीं पहुंचाए। एक साथ साथ हमने के समय ओरिया रहले, अपन दिव्या के विदा दे दिन। प्रणाम।

श्रोता अभी सुन रहे थे मघी कार्यक्रम मागधी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है अब आज की हमारी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शीर्ष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। शाम 6:30 पर श्रोताओं हम आपके लिए लेकर आएंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। कृषि प्रसारण खेती गृहस्थी का समय रहेगा संध्या 7 बजे। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लोकगीत कलाकार होंगे सर्वजीत यादव अनुज। रात 9:30 पर श्रोता सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे HM स्मिथा और सिंधु सुचेतन से कर्नाटक संगीत सभा में वायलिन युगलबंदी। आज की प्रस्तुति हमारे बेंगलुरु आकाशवाणी की होगी।

सुगम संगीत ये कार्यक्रम प्रसारित होगा हमारे केंद्र से रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चंद गजलें, कलाकार होंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह।

फिल्म संगीत श्रोता सुनेंगे हमारे केंद्र से आपसे कुछ ही देर बाद शाम 6:05 पर और रात्रि 8 बजे। ये थी आज की हमारे इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का पटना केंद्र मीडिया वेब 483.1 मीटर।

लीजिए पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार के गाए इस गाने से, जिसे मिल लिया है फिल्म ब्लैकमेल से।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गाना अभी आप सुन रहे थे, श्रोता हूँ फिल्म थी चा चा चा। इसी के साथ फिल्म संगीत का आज का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी पटना है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: नमस्कार सुगिया बहन,
1: नमस्कार नमस्कार सुधा बहन, कहीं का सब समाचार?
0: सब ठीक ठाक है। अभी देखिए तो इतनी गर्मी पड़ रही थी, थोड़ी सी
1: हाँ
0: राहत मिली है,
1: सही।
0: लेकिन मैं आज ही यही सोच रही थी कि बस 2 दिन की बात है, फिर तो वही
1: हाँ,
0: गर्मी।
1: फिर तो वही गर्मी से हल्का होए के
0: हाँ,
1: बाद।
0: लेकिन चलिए कुछ राहत तो मिली, अच्छी बात
1: हाँ
0: है।
1: हाँ
0: देखिए, गर्मी पड़ती है तो बहुत सारी तरह की परेशानी होती है, मतलब त्वचा से लेकर के हर तरह आँखों में भी परेशानी होती है। तो आज थोड़ा हम आँखों के बारे में बात करते हैं।
1: हाँ
0: वैसे
1: बिल्कुल
0: भी देखिए, आँखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग तो है ही, सबसे
1: हाँ
0: कोमल अंग भी कह सकते हैं
1: सही
0: इसको,
1: बात।
0: है।
1: हाँ
0: और हमारे दैनिक गतिविधियों के लिए तो बेहद ज़रूरी है आँखें।
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: तो
1: वो
0: आप
1: तो
0: उन्हीं से पूछ सकती हैं जिन्हें
1: हाँ, जे
0: नहीं
1: कि ये
0: है।
1: दुनिया की खूबसूरती
0: बिल्कुल
1: नहीं देख
0: हाँ,
1: पावत।
0: तो
1: हाँ
0: इसकी महत्ता को समझना चाहिए हमें, और इसकी कुछ विशेष देखभाल हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब समस्या आती है तब हम सचेत होते हैं। ऐसा नहीं
1: हाँ
0: हम पहले से अगर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा
1: हाँ
0: मौसम का भी असर पड़ता है,
1: सही बात है।
0: प्रदूषण का भी असर पड़ता है, साफ सफाई का भी, तो इन सारी तमाम बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आंखें इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
1: सही बात।
0: क्योंकि अगर दृष्टि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि दूसरों पर निर्भर न पड़ेगा।
1: हाँ, तो
0: और
1: है।
0: देखिए, एक बात और मैं ये कहना चाहूँ कि आंखें इतनी महत्वपूर्ण है, या यूँ कहिए कि इस पे जितने गीत और गजल बने हैं शायद ही किसी अंग पे बने हो।
1: आंखें पे अभी ये मेरा याद आवता कि ये आंखें देख के हम सारी दुनिया भूल
0: तो वही मैं
1: जाते
0: कह रही थी कि कितना
1: हैं ये
0: महत्वपूर्ण है ये।
1: गाना।
0: बहरहाल, आज हम के देखभाल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी दृष्टि में अगर किसी तरह का बदलाव हो तो उसके प्रति ध्यान दें और नियमित जांच करवाते रहें।
1: सही
0: और गर्मियों में खास तौर से अगर धूप में निकलें तो
1: निकले।
0: तेज सूर्य की रोशनी से आंखों को बचाना चाहिए
1: हाँ,
0: अक्सर।
1: मतलब गॉगल्स पहन ले, कई तरह के उपाय बा।
0: हाँ हाँ
1: टोपी लोग पहन ले वेला, कैप जो नागे निकल रहा
0: हाँ
1: ना, जेकरा
0: आगे
1: के
0: से निक
1: हाँ, तो मतलब सीधा धूप ना लगे के
0: बिल्कुल,
1: चाहिए
0: जो
1: आंखों।
0: सूर्य की यूवी किरणें होती हैं उनसे नुकसान होता है आंखों पर, तो इसलिए हमें बचाना चाहिए। और अलावा इसके देखिए, आजकल तो सभी मोबाइल है, कंप्यूटर है, आजकल तो पूरा डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो अब शौक नहीं है बल्कि आवश्यकता बनती जा रही है।
1: जरूरी बात।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: तो कुछ
1: जरूरत
0: लोगों का
1: बात।
0: कार्य ऐसा होता है कि बहुत देर तक कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि एक विशेषज्ञों का मानना है कि 20-20-20 रूल्स अपनाएं। अब ये 20-20 रूल्स क्या है
1: हाँ, काबा
0: कि अगर
1: फिर।
0: आप लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो 20 मिनट बाद, हर
1: हाँ
0: 20 मिनट बाद
1: हाँ
0: 20 सेकंड के लिए
1: हाँ हाँ
0: 20 फीट की दूरी पर
1: हाँ
0: देखें, दूर
1: अच्छा,
0: देखें।
1: दूर देखे के।
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो इसे
1: हाँ
0: ही 20-20 रूल कहते हैं,
1: हाँ
0: इसलिए कि
1: हाँ
0: देखिए, आपने पता नहीं गौर किया होगा कि नहीं, जब आप हम देख रहे होते हैं, चाहे वो टीवी देखिए या फिर
1: हाँ लगातार अगर देख
0: स्क्रीन
1: रहे हो।
0: देखिए, तो पलके हम कम झपकाते हैं,
1: हाँ, सही
0: है
1: सही
0: ना?
1: बात बा।
0: हाँ, तो उससे क्या होता है, जब पलके हम झपकाते हैं तो आंखों में जो हमारे ये द्रव्य है तो वो कम होता है, तो आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि 20 मिनट के बाद जो है
1: पलक झपकावे के चाहे।
0: हाँ, जैसे कैसे कहा जाता है कि आप बहुत देर तक बैठे काम कर रहे हैं तो बीच बीच में उठ करके टहलिए,
1: टहले के
0: वैसे ही
1: चाहे।
0: आंखों के लिए भी है कि बीच बीच में स्क्रीन पर से आप अपना ध्यान हटाएं।
1: सही बात। ये बहुत मतलब सही बात बतौनी, और बहुत ही अभी गर्मी के मौसम में मतलब आंख से संबंधित है जो सतर्कता बा वो खाती बहुत जरूरी बा। और कभी कभी देखें बहुत अधिक जोन बा आंधी तूफान में भी आंख में जोन उकर हवा लगेला कबो कबो, तो उसे भी कई नुकसान होला, हम
0: चाहे
1: ऐसन
0: कभी
1: महसूस
0: कभी
1: केले
0: ऐसा
1: बनी।
0: होता है कि आंखों में कुछ पड़
1: हाँ,
0: गया,
1: पड़
0: मतलब
1: गई।
0: बल मामूली सी भी चीज पड़ती है तो आंखों में किरकिरापन होता है,
1: अरे बाप रे
0: तो
1: बाप।
0: सामान्यतः लोग क्या करते हैं, आंखों से मसल देते हैं, जो कि बहुत
1: हाँ,
0: नुकसान करता
1: नुकसान
0: है।
1: दे बा।
0: वैसे
1: सही।
0: में क्या कीजिए कि ठंडे पानी में स्वच्छ जल, पानी
1: हाँ
0: साफ होना चाहिए,
1: हाँ
0: उसमें आंखों को डुबाकर खोले बंद करें तो वो
1: हाँ
0: स्वतः निकल जाता
1: निकल
0: है।
1: जाला।
0: वैसे भी आंखों की साफ सफाई का ध्यान देते रहना चाहिए, गंदे हाथ से आंख को नहीं छूना चाहिए। लोग कहीं भी कुछ रहते हैं बस फट से हाथ पे हाथ
1: हाँ,
0: चला
1: छूले
0: जाता है,
1: लाला।
0: हाँ
1: हाँ, छूले
0: वैसा नहीं
1: लाला।
0: करना।

0: ऑपरेशन ना करें
1: देखती
0: किसी।
1: हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर आंख में कोई ड्रॉप डालनी है तो पहले
0: हाँ
1: हाथों को साफ कीजिए तब फिर डालिए,
0: तब सही
1: तो
0: बात बोला
1: इसीलिए। और
0: बिल्कुल।
1: रोज सुबह शाम तो हम लोग ठंडे पानी से आंखों को धोते ही हैं, उससे
0: हाँ
1: राहत
0: हाँ
1: भी मिलती है
0: सही।
1: और आंखों की सफाई भी होती है। और इसके अलावा अगर कभी कभी ज्यादा थकान हो तो क्या करते हैं कि गुलाब जल एक से
0: हाँ
1: दो बूंद अगर आंख में डाल लिया जाए तो उससे आंखों की सफाई भी होती है और राहत भी मिलती है।
0: ठंड ठंड ठंडक जुम्बा
1: हाँ
0: लगेला आँख के
1: और
0: तो
1: आंखों के
0: हाँ
1: स्वास्थ्य के लिए रोज

0: की सफाई भी होती है और राहत भी मिलती
1: ठंड
0: है।
1: ठंड ठंड
0: हाँ
1: ठंडक जुलवा
0: हाँ
1: हाँ
0: लगेला आँख
1: हाँ
0: के,
1: और
0: तो
1: आँखों के
0: हाँ
1: स्वास्थ्य के लिए रोज
0: हाँ
1: 7 से 8 घंटे नींद तो
0: नींद जरूरी
1: नींद
0: है
1: नींद
0: ही, ये
1: एकदम
0: तो हम सभी
1: जरूरी बा
0: जानते हैं।
1: सही। हाँ
0: और आँखों की बात चली है सुगिया
1: हाँ
0: बहन, तो एक बात
1: हाँ
0: मैं और कहना चाहूंगी
1: हाँ
0: कि हर व्यक्ति अगर संभव हो तो नेत्रदान अवश्य करे,
1: एकदम सही बात कहनी, ये
0: है
1: बहुत
0: ना।
1: नेत्रदान महादान कहल गई बा
0: हाँ
1: सुधा बहन,
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ
1: ऐसे ही शुभ कार्य के जो बा हर व्यक्ति के करे के चाहिए।
0: बिल्कुल। देखिए कि अगर एक व्यक्ति नेत्रदान करते हैं तो
1: हाँ
0: एक से दो लोगों को दृष्टि मिल सकती है,
1: हाँ सोचिए
0: तो
1: मतलब
0: इसमें बिल्कुल ही मतलब कोताही नहीं बरते और इसमें कोई मतलब कि इसमें दिक्कत नहीं है। लोगों को
1: ना,
0: डर लगता है, ऐसा कुछ
1: हाँ
0: नहीं है।
1: ना
0: और
1: ना
0: अभी कुछ दिन पहले मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है,
1: हाँ
0: नेत्रदान अंगदान पर उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि लोग
1: हाँ
0: आगे आएं
1: हाँ
0: और इस पे जो है ये करें,
1: अमल करस लोग।
0: हाँ अमल
1: हाँ
0: करें। तो चलिए
1: तो
0: अभी
1: अब
0: अपनी बातों
1: हाँ
0: को हम लोग यहीं विराम देते हैं और आगे
1: हाँ
0: बढ़ाते हैं कार्यक्रम को।
1: हाँ
0: पहले सुना जाए एक लोकगीत।
1: हाँ हाँ
0: कलाकार हैं सर्वजीत यादव अनुज।
1: सुने के

0: बहुत बढ़िया था।
1: सुंदर। हाँ
0: लोक भजन हम लोग सुन रहे थे, तो एक और गीत हम लोग इनसे सुनते हैं।
1: हाँ
0: इस
1: हाँ
0: बार झूमर सुनते हैं,
1: सुनेंगे
0: सरोजीत यादव अनुज से।
1: सुनेंगे।

0: बढ़िया लगा कि
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अहिये परदेसिया मोरा गांव रे, बहुत
0: तो
1: बढ़िया।
0: आगे फिर खेती गृहस्थी में इनसे सुना जाएगा।
1: हाँ
0: बहरहाल अभी तो समय हो रहा है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो
1: हाँ
0: चलिए सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम
1: हाँ
0: ममता का आंचल।
1: सुने के
2: भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर से आप सबों के अपने कार्यक्रम, हम अपना कह रहे हैं क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं और जिसका नाम हमने रखा है ममता का आंचल। जी हाँ, ममता का आंचल। हाँ, माँ का आंचल, ममता का आंचल। हर माँ के गोद में बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन विडंबना ये है, हाँ कुछ इस तरीके की बीमारी है, विकार है, जिसके कारण कुछ महिलाओं को बच्चा शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी नहीं हुआ है और संकोच कर रही हैं, तो उनके लिए खास करके हमारा ये कार्यक्रम है।

0: दूसरी बात ये है कि वैसे बड़े बुजुर्ग जो घर में बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि आप सजग होइए, सचेत होइए, और अगर ऐसे हाँ बहू है, ऐसी बहू है, ऐसे बेटे हैं आपके पास जिनके पास अभी भी बच्चा नहीं है, और हम तो इससे एक कदम आगे निकल कर कहेंगे कि अगर पास पड़ोस में भी देखिए कहीं किसी के पास बच्चा नहीं, शादी के 2-3-4 साल हो गए, तो उनके लिए भी आपकी जिम्मेदारी है। बड़े बुजुर्ग घर में भी और बाहर में भी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, जैसे श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी जो है अपना निर्वाह कर रही है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही है, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से हम उस अंतिम कपल तक, दंपत्ति तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें शादी के बाद अभी भी बच्चा नहीं हुआ है। जी हाँ, लगातार डॉक्टर श्रद्धा चकहियार आती हैं, बातचीत करती हैं, लेकिन हम आपको भी अपनी बातें बताने का मौका देते हैं। नोट कीजिए डॉक्टर श्रद्धा का नंबर, आप सीधे सीधे बात कर लीजिएगा, करिएगा, बात जरूर करिएगा। ये सिर्फ एक बीमारी है, चुप्पी तोड़ना होगा आपको। हाँ, चुप्पी तोड़िए और आगे बढ़ जाइए। कौन क्या कहता है इसके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर नोट कीजिए 9162562266, 9162562266 ये नंबर है डॉक्टर श्रद्धा का। एक और बड़ी बात, पैसे की समस्या आ रही थी, लेकिन श्रद्धा IVF ने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है, आपके इलाज के लिए उसने EMI की व्यवस्था कर दी है। अब आप 24 महीने में पैसा चुका सकते हैं, इसलिए अब वो समस्या भी नहीं रही। तुरंत इसी नंबर पर बात कीजिए, 9162562266 ये नंबर है, इसी नंबर पर बात कीजिए। जी हाँ, मोबाइल का जमाना आगे बढ़ गया, अब AI का जमाना आ गया, उससे इलाज हो रहा है और आप चुपचाप घर में बैठे हैं, अच्छी बात नहीं है, ये आपके जीवन का सवाल है। बात कीजिए, हर चीज का सॉल्यूशन है, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा बैठी हैं, हम सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं इस कार्यक्रम में, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
0: डॉक्टर श्रद्धा, हमने कहा है कि मोबाइल से अब हम AI में आ गए, फिर भी लोग चुप बैठे हैं।
1: बिल्कुल, हम बहुत लोग, विज्ञान बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, हम लोग मोबाइल से AI में आ रहे हैं, तो उसी तरह से लोगों को भी अपना विचार बदलना है। मैं आज बात करना चाहती हूँ निसंतानता के बारे में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि निसंतानता क्या होती है। वैसे दंपति जो पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, उन्हें निसंतान दंपति कहा जाता है। जरूरी है कि ऐसे दंपति अब अपना जांच कराना शुरू करें। जांच आप कहीं भी करा सकते हैं, आसपास के कोई भी डॉक्टर से करा सकते हैं, लेकिन अगर अब 2 साल हो गया है, यानी कि 2 साल हो गया है, 1 साल तो आपने खुद से कोशिश किया, 1 साल आपने जांच कराया, कुछ दवाई लिया और अब भी बच्चा नहीं ठहरा, तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने का।
0: बिल्कुल,
1: तो वो सही बीमारी पकड़ेंगे, इलाज करेंगे, और आपका जो कीमती समय है कि सही समय पे बच्चा हो जाए, वो आपका उसमें आपको मदद करेंगे।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है। बड़े बुजुर्ग सामने आए और ऐसे कपल को खुद डॉक्टर के पास भेजे, हम आपके लिए सहूलियत कर देते हैं। रास्ता नंबर बता रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा चकहियार का, नंबर नोट कर लीजिए 9162562266। जी हाँ, अब संकोच का वक्त नहीं है, इलाज कराने का वक्त है। ये कार्यक्रम ममता का आंचल हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से, बहुत ही उम्दा संस्थान, EMI की सुविधा भी है, इलाज कराइए और 24 महीने में पैसा दीजिए। जब बच्चा 2 साल का हो जाए ना, 1.5 साल का, तब तक पैसा चुकाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके लिए ये व्यवस्था की गई। डॉक्टर श्रद्धा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हम बार बार आपसे पूछते भी रहे, आज फिर हम पूछना चाहते हैं और आपका जवाब चाहते हैं कि कुछ भी परेशानी होना तो महिलाओं को दोष दे दिया जाता है, IVF के विषय में क्या स्थिति?
1: बिल्कुल, निसंतानता में अगर आप कारण का बात करें तो ये पता लगा है कि 40% निसंतानता, यानी कि 10 में से 4 अगर दंपति जो निसंतान है, अगर

0: को देखा जाए तो 10 में से 4 का कारण निसंतानता का कारण पुरुष पाया गया है। अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। अब पुरुष भी अपना, पहले एक समय था जब सिर्फ औरत ही जांच कराती थी, अब पुरुष भी अपना जांच कराने लगे हैं। लेकिन जब भी निसंतानता का अगर बात होता है तो दोषारोपण हमेशा महिलाओं में होता है
1: आमतौर पर।
0: बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो मैं रेडियो के माध्यम से जितने भी बड़े बुजुर्ग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहती हूँ, निसंतानता का कारण सिर्फ औरत नहीं होती है, पुरुष भी होते हैं। इसलिए मिलके दोनों को इलाज कराना चाहिए। और कारण चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, दोषारोपण किसी में नहीं होना चाहिए, ना औरत में ना पुरुष में, क्योंकि निसंतानता इज जस्ट अ मेडिकल कंडीशन। जैसे टीबी एक बीमारी है, डायबिटीज एक बीमारी है, वैसे ही इनफर्टिलिटी भी एक बीमारी है।
1: जी।
0: जैसे उन चीजों का इलाज होता है वैसे इनफर्टिलिटी निसंतानता का भी इलाज होता है। इलाज बहुत सारे हैं। पहले तो हम लोग लाइफस्टाइल से करते हैं। अगर पुरुष अत्यधिक बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इसका सेवन कर रहे हैं तो वो उनको मना किया जाता है। औरत में भी जो अगर लाइफस्टाइल का कोई दिक्कत है, अगर उन मोटापा ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए बोला जाता है। बहुत लोग तो दवाई से भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, आपका दवाई खाते हुए 1 साल हो गया और अब भी बच्चा नहीं ठहरा है, तो अब आपको नेक्स्ट लेवल पे का इलाज कराना होगा। इलाज हो सकता है IUI हो सकता है IVF। सही समय पे ये सब इलाज करा लेना भी सही होता है, क्योंकि आप ये भी मानेंगे और मैं बार बार बताती हूँ कि अगर आप कोई निसंतान दंपति है तो अगर आप IVF, कहा जाता है कि निसंतानता का सबसे बड़ा इलाज जो होता है, सबसे सटीक जो इलाज होता है वो IVF होता है। लेकिन IVF का भी अपना सक्सेस रेट होता है।
1: जी, बिल्कुल।
0: IVF का ओवरऑल सक्सेस रेट जो विश्व में है वो 50-60% है। लेकिन ये भी एज डिपेंडेंट है, यानी कि आप किस समय अपना इलाज करा रहे हैं। अगर शादी का 2-3 साल 4 साल हो गया और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा, आप सही समय पर एक निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले और अगर आप इलाज कराते हैं तो आपको IVF से बच्चा ठहरने का चांस 80% है, बशर्ते कोई अनुवांशिक बीमारी ना हो। लेकिन अगर वही दंपति 20 साल शादी का 20 साल हो गया, यानी कि शादी अगर 20 साल में हुई और अब वो शादी का 20 साल यानी कि 40 या 45 साल की उम्र में अपना इलाज करा रहा है, तो उसको IVF से भी बच्चा ठहरने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ खत्म हो जाती, संभावना तो सबसे ज्यादा IVF से ही है। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सही समय पे इलाज कराना बहुत जरूरी है।
1: सही समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो आपने कही, हाँ, बड़े बुजुर्गों, आपके बेटे में खराबी नहीं है या कमी नहीं है ऐसा सोचना नहीं है। और महिलाओं, आपको हम कहना चाहते हैं कि चुप्पी तोड़िए। कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल, पूरा बिहार इस वक्त सुन रहा है। और एक मकसद है कि वैसे दंपत्ति जिनको संतान नहीं है शादी के बाद, वो IVF का फायदा उठा सकते हैं। 50 साल पुरानी बात हो गई, हम कंप्यूटर से अब AI पर आ गए, मोबाइल पीछे छूट गया, आप अभी भी घर के अंदर बैठे हैं, ये ठीक बात नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नंबर बताते हैं। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266। कम से कम फोन कीजिए, महिलाएं आप भी फोन कीजिए। हाँ, ये मत देखिए गांव घर में ऐसा होता है कि वही बात करेंगे, वही मतलब पति ही बात करेंगे तो करेंगे, आप भी बात कीजिए। हाथ में आपके भी मोबाइल है, रास्ते तलाशिए, क्योंकि बच्चा जब होगा ना तो आप दोनों का होगा। और अब पैसे की भी कोई समस्या नहीं, EMI की सुविधा है, 24 महीने में आप पैसा दे सकते हैं। ये सिर्फ श्रद्धा IVF ने आप दंपतियों के लिए ऐसी व्यवस्था की है। तो बड़े बुजुर्गों, सिर्फ घर में नहीं बाहर भी देखिए, हाँ, दाहिने बाएं भी देखिए कि कहीं ऐसी समस्या है तो जरूर उनको सचेत कीजिए। और ये जो नंबर दे रहे हैं ना 9162562266, ये उनको भी दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर श्रद्धा।
0: एक मिनट राजेश जी, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ कि हमारा जो सोसाइटी है खासकर बिहार में, आज भी हम बड़े बुजुर्ग का बहुत इज्जत करते हैं,
1: करते हैं,
0: और वो जो कहते हैं हम लोग जरूर मानते हैं। तो बड़े बुजुर्ग, अगर आप अपना ये जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, अगर आप समझें और पहचाने कि आसपास कौन निसंतान दंपति है, अगर उनको प्रेरित करें इलाज कराने का और निसंतानता

0: का अगर सही समय पे इलाज करा ले तो कोई भी दंपति कम से कम निसंतानता के कारण दुखी नहीं रहेगा। तो बड़े बुजुर्ग अगर आप इस जिम्मेदारी को यानी कि अवेयरनेस का अगर आप जिम्मेदारी आसपास अच्छे से करेंगे तो मुझको लगता है सोसाइटी और ज्यादा खुशहाल होगा।
1: खुशहाल होने में अपनी मदद कीजिए और डॉक्टर श्रद्धा के हाथों को मजबूत कीजिए जो कहती हैं कि अब संकोच नहीं इलाज करवाना है और चुप्पी तोड़ना है। डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आफ्टर ऑल समाधान क्या है ऐसे कपल्स के लिए?
0: देखिए निसंतानता सबसे पहले तो अगर कोई दंपति निसंतानता से जूझ रही है या जूझ रहे हैं तो पहले तो हमें कारण ढूंढना होता है क्या कारण है। कारण हो सकता है औरत में हो यानी कि उनके अंडे खत्म हो गए हों या उनके अंडाशय में अंडे बन ही नहीं पा रहे हों या फिर उनके बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो। हो सकता है टीबी हो सकता है रसौली हो, इंडोमेट्रियोसिस हो, या फिर पुरुष भी कारण हो सकते हैं यानी कि उनके शुक्राणु कम हो, शुक्राणु की चाल में कमी हो सकती है या बनावट में कमी हो सकती है या फिर जेनेटिक बीमारी हो सकता है। तो कारण बहुत से हो सकते हैं, पहले तो कारण ढूंढा जाता है। जब कारण पता लग गया तो उस चीज को ठीक किया जाता है, यानी कि अगर अंडा नहीं बन रहा है तो सुई और दवाई दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि अंडा बन पा रहा है कि नहीं, अंडा फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है, IUI किया जाता है। लेकिन जब ये सारे चीज भी काम नहीं कर पाते हैं, कभी कभी लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रो यानी दूरबीन का जांच करना पड़ता है, लेकिन जब ये चीज भी नहीं काम कर पाते तो IVF अपना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि सही समय पे कराया हुआ इलाज का सफलता दर हमेशा बेहतर होता है।
1: तीन चीज हम जो कहें आप खुद से कहने तो क्या कहिएगा? एक मैं कह देता हूँ, खुलकर बात करनी चाहिए।
0: बिल्कुल खुलकर बात करनी चाहिए।
1: अगला दो आप बताइए कि क्या कहना है।
0: दोनों दंपति यानी कि पति पत्नी दोनों जांच कराएं, समय पर डॉक्टर से मिले। इनफर्टिलिटी कोई कमजोरी नहीं है,
1: जी जी,
0: ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है।
1: हाँ।
0: और माँ वैसे दंपति के लिए माँ बाप बनने की चाह के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है। आप हिम्मत जुटा के रखिए, अपना इलाज कराइए। हाँ। आपको सफलता अवश्य मिलेगा,
1: आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जाते जाते बड़े बुजुर्गों से बस एक विनती है कि आप इस परिवार की नींव हैं, आपके एक शब्द से हौसला भी मिलता है और चुप्पी भी गहरी हो जाती है। अगर आपके अपने बच्चे इस सफर से गुजर रहे हैं तो उन्हें सवालों से नहीं सहारे से संभालिए, उन्हें दोष से नहीं समझ से अपनाइए, क्योंकि सही समय पर आपका साथ उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज घर जाकर बस इतना कह दीजिएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, और देखिए कैसे उम्मीद फिर से जन्म लेगी। अब चुप्पी नहीं खुलकर बात करनी होगी। क्यों डॉक्टर श्रद्धा, सही काम ने?
0: बिल्कुल, चुप्पी नहीं खुलकर बात करनी होगी।
1: और इसीलिए हम डॉक्टर श्रद्धा का नंबर बता रहे हैं कि खुलकर बात कीजिए 9162562266 9162562266। हर अंधेरे के बाद उजाला होता ही है, यही सच्चाई है। बस उजाले का इंतजार कीजिए और अपना कर्म कीजिए। चलिए डॉक्टर श्रद्धा निकलते हैं, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: यह अभी हम लोग सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
4: हाँ।
3: और सुगिया बहन इसके साथ ही चौपाल का समय समाप्त होता है।
4: हाँ हाँ।
3: तो आगे बढ़ते हैं हम लोग खेती गृहस्थी में।
4: हाँ।
3: और खेती गृहस्थी में आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं?
4: आज हमने के देखी कहल जाला कि गर्मी के दिन आए में कद्दू के मीठ मीठ मतलब तरकारी खाए में कतना निमन लगेला।
3: बिल्कुल, और फायदेमंद तो होती है।
4: कद्दू के तो कई को चीज बनाई ला जा, हमने के बचका बनेला, कद्दू के रायता बनेला, है ना, तो बहुत बढ़िया खिचड़ी में डाल के रुआ बनाई, कितना बढ़िया।
3: और इसी तरह से कद्दू वर्गीय कई सब्जियां हैं, जैसे खीरा है, तुरई है, ककड़ी है, ये गर्मी में मिलने वाली ये सब जो सब्जियां हैं खासकर मुख्यतः इसी समय मिलती हैं, करेला है, परवल है, ये सब, ये सारी जो है कद्दू वर्गीय सब्जियां ही कही जाती है क्योंकि लत्तर के रूप में होती हैं। तो इनकी सब्जियों की तो अभी भरमार है, बोताएं मिल रही है, और साथ ही इनकी जो खेती करते हैं उससे भी बहुत फायदा होता है।
4: बहुत फायदा,
3: क्योंकि देखिए जो फसल लगाते हैं उसको तैयार होने में तो समय लगता है, लेकिन सब्जियां ऐसी हैं कि आपको थोड़े कम दिन में ही और अच्छे खासा जो है मुनाफा दे जाती है। तो इनकी खेती हम करते हैं, लेकिन वही है देखिए, अगर ठीक से अगर ध्यान नहीं दें हम सारे चीजें

0: करते, लेकिन कुछ जो समय समय पर कीट व्याधि का प्रकोप हो जाता है उससे फसलों
1: हाँ
0: का बहुत नुकसान
1: बहुत
0: होता
1: बहुत
0: है।
1: बचल ओकरा से बहुत जरूरी
0: हाँ,
1: बा,
0: और
1: है
0: अगर इनका समय रहते
1: ना।
0: अगर हम प्रबंधन नहीं करते हैं तो पता चला कि सारी मेहनत बेकार हो गई और पूरी
1: हाँ
0: की पूरी फसल नष्ट हो जाती है
1: नष्ट हो
0: कभी
1: जाएगा।
0: कभी तो। इसलिए
1: हाँ
0: हमेशा
1: हाँ
0: पहले से ही ध्यान देना चाहिए। पहले तो हम लोग यही करते हैं उपाय कि भाई ऐसे बीज का चयन करें जिसमें
1: हाँ
0: रोग वगैरह ना लगे।
1: ना लगे। हाँ, तो अब देखा कई रोग बना सुधा बहन, एमें कद्दू वर्गीय फसल के रोग के बारे में भी जानल जरूरी बा, कि जैसे कि पाउडरी है ना जो रोग बा, सफेद धब्बा, डाउनी पीला है ना, कोणीय धब्बा, जैसे कि एक आकार जोन बा ना ओकरा में बंजाला पत्ता में, मोजक पत्ता जोन बा ओकर, उस सिकुड़ जाला।
0: उसको मोजैक रोग
1: हाँ,
0: कहते हैं।
1: मोजैक रोग जोन जरा के कह सकते नहीं है ना, पत्ता ओकरा में सिकुड़ जाला। तो एकरा में सड़न आय रोग से नियंत्रण खातिर भी उचित जोन बा ना वो जल के निकासी भी, जल भी कितना चाहिए कोनो भी पौधा लगाए में, अगर उकर कह जाला कि बराबर मात्रा जे बा ओकरा पर ध्यान ना देवे तो ओकरा में भी नुकसान होला फसल के, बात बाकी ना है ना। तो ऐसे हम कहल चाहब कि भाई जनरुआ कहनी कि भाई कोई भी बीज जोन बा ओकरा लगाए से पहले जोन भी बीजा रोपण
0: उसको
1: होनर बा
0: उपचारित कर लें।
1: उपचारित कर लेवे के जरूरी बा।
0: देखिए, इसी तरह से होता है एक एंथ्रेक्नोज या झुलसा रोग। ये
1: हाँ
0: रोग जो है कोलिटोट्राइटिम
1: हाँ
0: लेजिनेरियम नामक फफूंद से फैलता है,
1: हाँ
0: और इस रोग से विशेष तौर पर जो खरबूजे होते हैं, लौकी और खीरे,
1: हाँ
0: इनकी ज़्यादा क्षति होती है। ये
1: अच्छा
0: रोग जो पर्णशिराओं यानी कि पत्तियों के जो ऊपरी भाग होते हैं
1: हाँ
0: उन पर धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो कि बाद में 1 सेंटीमीटर व्यास के हो जाते हैं। इनका जो धब्बों का आकार और रंग होता है भूरा होता है और आकार कोणीय होता है। जो रोगग्रस्त पत्तियां होती हैं वो कई धब्बों से मिलने के कारण एक तरह से सूख जाती हैं।
1: हाँ
0: तो ये रोग जो है मुख्य रूप से मिट्टी जनित होता है, लेकिन कभी कभी बीज से भी फैलता है।
1: हाँ
0: तो इसीलिए अगर बीज को उपचारित करना
1: हाँ
0: जरूरी होता है तो इसकी रोकथाम के लिए बीजों को थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या फिर एग्रोसान जीएन 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बोना चाहिए। और अगर इसके मतलब इसके बाद भी आपको लक्षण दिखाई देने लगे तो थायरम 2 किलोग्राम या केप्टान 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए,
1: अच्छा
0: और आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के अंतराल पर दोहराना चाहिए। मान
1: हाँ
0: लीजिए कि नहीं नियंत्रण हुआ तो फिर
1: हाँ
0: पंद्रह
1: तो
0: दिन के
1: फिर
0: बाद
1: 15 दिन दोहरा देवे के चाहिए, एकरा से
0: हाँ
1: जे भी भा मतलब बचल खुचल
0: वो
1: संक्रमण वो
0: हाँ
1: हट जाए।
0: इसी तरह एक है जड़ ग्रंथि रोग। ये रोग भी जो है बहुत खतरनाक होता है, एक तरह से सूत्रकृमि होता है, उससे होता है। लगातार एक ही खेत में कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाने से इनका विस्तार अधिक हो जाता है। इसमें क्या होता है, पौधों की पत्तियां पीली पड़कर झुलसने लगती हैं, तने का रंग पीला पड़ने लगता है और जड़ों पर छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, और फसल की पैदावार बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो रोकथाम के लिए एक उचित फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए ताकि जो सूत्रकृमियां हैं उनको नष्ट हो जाए, यानी
1: नष्ट
0: कि
1: हो जाए।
0: तुरंत उसी खेत में कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएं तो फिर
1: हाँ
0: दोबारा उसमें न
1: ना
0: लगाएं,
1: लगावे के चाहिए, मतलब दूसर
0: दूसरा
1: बोई,
0: फसल लगा
1: हाँ
0: दें।
1: दूसर
0: हाँ
1: बीज
0: हाँ
1: बोई।
0: हाँ और अगर है दिखता है तो फिर दवा से इसका इलाज करें। अगर लगा दिए हैं तो ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी के मौसम में खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर उसे सूर्य का अगर ताप लगाते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो सूत्रकृमि हैं वो
1: हाँ
0: खत्म हो जाते
1: खत्म हो
0: हैं।
1: जाए।
0: तो इस तरह से अगर हम
1: हाँ
0: ध्यान
1: खेती
0: दें
1: करे।
0: तो फसलें अच्छी होंगी।
1: तो खाए में भी ओकरा से कुछ आए
0: बिल्कुल,
1: के हमने
0: आमदनी
1: के
0: भी अच्छी
1: आमदनी भी
0: होगी।
1: हो जाए। हाँ तो
0: हाँ,
1: आपका विचार।
0: मेरा तो इरादा है पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बातें सुनेंगे हम लोग जानकारी की। तो
1: एकदम
0: पहले एक गीत सुनते हैं सर्वजीत यादव अनुज से।
1: सुने के।

0: सुगे बहन, पेड़ पे अभी आम देख करके तो लग रहा है कि आम
1: अरे
0: खूब बड़ी खाने को मिलेगा, है ना?
1: बहुत बहुत
0: इस बार लग रहा है कि
1: एकदम
0: फसल अच्छी होगी।
1: हाँ बढ़िया एकदम एकदम गदराइल बा जहां
0: हाँ
1: देखी ना। आ
0: हाँ
1: परसों तरसों तने आनी बुनी में गिरलो
0: हाँ तो देखिए,
1: रहे।
0: अभी तो आम जो लगा है वो तो ठीक
1: हाँ
0: है, लेकिन कुछ लोग जो है आम के बाग लगाना भी चाहते हैं, और लगाएंगे तभी तो फिर कुछ साल के बाद
1: हाँ
0: पेड़ होगा, तब
1: वही
0: फिर फल
1: सही
0: होगा, ये
1: बात
0: तुरंत की तो बात है नहीं।
1: ना
0: तो
1: ना
0: बाग भी लगाने के लिए पहले से थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, तो
1: सही
0: उसके बारे में थोड़ा हम लोग जाने।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: एकदम
0: चलिए सुनते हैं ये वार्ता, आम के बाग लगाने की तैयारी। वार्ताकार है आकाश राज।
1: हाँ तो सुने के
2: आम भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय फल है, इसे फलों का राजा कहा जाता है। हमारे बिहार राज्य में आम की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। फल उत्पादन अंतर्गत कुल क्षेत्र का आधा से अधिक भूभाग केवल इसी फल के अंतर्गत है। व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती बड़ी लाभकारी है। आय के लिए बागों की स्थापना एवं अधिक फलन एवं देखभाल वैज्ञानिक पद्धति से करना जरूर

जरूरी है। आम की खेती अमूमन समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है, परंतु व्यावसायिक दृष्टि से इसे 600 मीटर तक ही लगाने की सलाह दी जाती है। तापक्रम में उतार चढ़ाव, वर्षा, आंधी आदि आम की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आम करीब करीब 25 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में अच्छा पनपता है, परंतु 23.6 से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए आदर्श माना जाता है। उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी के महीनों में तापमान में उतार चढ़ाव के चलते फूल जल्द निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसी मंजरियों में नर पुष्पों की संख्या अधिक होती है तथा उनमें गुच्छा रोग होने की संभावना अधिक होती है। मंजरियों के निकलने समय वर्षा होने से अत्यधिक नुकसान होता है और बीमारियों एवं कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। आम के छोटे पौधों पर पाले का प्रभाव अधिक होता है। इसके लिए दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 और जिसमें अच्छी जल निकास की व्यवस्था हो, सर्वोत्तम मानी जाती है। आम की जड़ें जमीन में गहराई तक फैलती है, अतः पौधों के समुचित विकास हेतु लगभग 2 से 2.5 मीटर गहरी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। क्षारीय तथा लवणीय भूमि आम के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसी भूमि में पत्तियों पर सूखेपन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं और पौधों का विकास धीमी गति से होता है। सामान्य लवणीय भूमि 2 से 3 DMM में लवण सहनशील मूल वृंतों जैसे कुरकन, ओलियूर तथा 13.1 का प्रयोग कर आम की बागवानी की जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आम की कई किस्मों का विकास किया गया है। 1971 में विकसित मल्लिका दक्षिण भारत में व्यावसायिक स्तर पर उगाई जा रही है। साथ ही साथ 1979 में विकसित बौनी किस्म आम्रपाली पूरे देश में काफ़ी प्रचलित है। पिछले दशक में संस्थान द्वारा विमोचित आम की किस्मों जैसे पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा लालिमा तथा पूसा पीताम्बर की मांग भी निरंतर बढ़ती जा रही है। बाग की स्थापना के लिए अमूमन आम के बाग लगाने से पहले खेत को गहरा जोतकर समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद जितनी दूरी पर पौधे लगाने हैं उतनी दूरी पर 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर के गड्ढे मई जून माह में खोद लेना चाहिए। गड्ढों से निकली मिट्टी में लगभग 50 किलो अच्छी तरह से सरी गोबर की खाद मिला देना चाहिए। इन गड्ढों को पौध लगाने के 20 से 25 दिन पूर्व गोबर मिली मिट्टी से भर दिया जाता है। दीमक की समस्या हो तो 100 ग्राम क्लोरीपाइरीफॉस या फ्यूराडॉन प्रति गड्ढे की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। गड्ढे भरते समय मिट्टी को अच्छी तरह दबाते हैं और सतह से 15-20 सेंटीमीटर ऊपर तक भरते हैं। यदि गड्ढा भरने के बाद वर्षा ना हो तो एक सिंचाई कर देते हैं, जिससे गड्ढों की मिट्टी बैठ जाए। आम के पौधों को लगाने के लिए पूरे देश में वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इन दिनों वातावरण में पर्याप्त नमी होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक होती है पौध लगाने का कार्य वर्षा के अंत में, तथा जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ वर्षा काल के प्रारंभ में रोपण कार्य करना चाहिए। बाग लगाने के लिए पौधशाला से लाए जाने वाले पौधों को मिट्टी समेत चारों ओर से अच्छी तरह खोदकर निकालना चाहिए, जिससे जड़ों को कम से कम नुकसान पहुँचे। पौधों को पूर्व चिन्हित गड्ढों के बीचों बीच पिंडी के बराबर गड्ढा खोदकर उसमें रोपित कर देना तथा आसपास की मिट्टी को अच्छी तरह दबा देना चाहिए। पौध लगाने के बाद उसके चारों ओर सिंचाई के लिए थाली बना देना चाहिए। और जो बिहार की प्रमुख किस्में हैं उसमें बम्बैया, गुलाब खस, मिठुआ, मालदा, किशनभोग, लंगड़ा, दशहरी, फजली, हिमसागर, चौसा, आम्रपाली इत्यादि बहुत सारे प्रभेद हैं जिसको हमारे किसान अपने खेतों में लगाते हैं। पोषण प्रबंधन में हमेशा पौधों के लगाने के बाद पहले वर्ष में 100 ग्राम नेत्रजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास प्रति पेड़ के हिसाब से डालना चाहिए। प्रारंभ के वर्षों में पेड़ों की बढ़वार तेजी से होती है। पहले वर्ष की मात्रा उम्र के अनुसार हर वर्ष बढ़ाना चाहिए।
इस तरह

0: दस वर्ष का पेड़ होने पर 1000 ग्राम नेत्रजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 1000 ग्राम पोटास प्रति पेड़ के हिसाब से देना चाहिए। 10 वर्ष पर यह मात्रा स्थिर कर दी जाती है और बाद में हर वर्ष यही मात्रा पौधों को दी जाती है। ऐसी भूमि जिसमें क्लोराइड की मात्रा अधिक हो उसमें म्यूरेट और पोटास उर्वरक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर पोटासियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर भारत में गोबर की खाद तथा फॉस्फेट युक्त उर्वरकों का अक्टूबर तक अवश्य देना चाहिए। नेत्रजन एवं पोटास धारी उर्वरकों की आधी मात्रा अक्टूबर माह में और शेष आधी मात्रा फल तुराई के बाद जून जुलाई माह में देनी चाहिए। जस्ते की कमी को पूरा करने के लिए 2% जिंक सल्फेट तथा 1% बुझे हुए चूने के घोल का छिड़काव मार्च अप्रैल जून तथा सितंबर माह में करना चाहिए। इसी प्रकार मैगजीन की कमी की पूर्ति के लिए 0.5% मैगजीन सल्फेट का छिड़काव नई पत्तियों पर करना चाहिए। बोरन की पूर्ति के लिए सामान्य अवस्था में 250 से 500 ग्राम बोरेक्स प्रति पौधे की दर से प्रयोग करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां बोरॉन की कमी के लक्षण अक्सर दिखाई पड़ते हों वहां 0.6% बोरेक्स के घोल के 3 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर अप्रैल मई माह में अवश्य करना चाहिए। उत्तर भारत में फलदार वृक्षों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ फूल आने के समय भी सिंचाई रोक देनी चाहिए और जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए तब से लेकर फलों के पारंपरिक होने तक निश्चित अंतराल पर सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। उत्तर भारत में सर्दियों में पाला पड़ता है और गर्मियों में लू चलती है। गर्मियों में बाग की सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतर पर और जड़ों में 15 से 20 दिन के अंतर पर करनी चाहिए। आजकल टपक सिंचाई प्रणाली का प्रभाव अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। आरंभ के वर्षों में पौधों के बीच खाली स्थान में दूसरी फसल के उगाकर अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है। रबी के मौसम में मटर, मशरूर, गोभी, धनिया, पालक और मेथी। वहीं पर खरीफ में उड़द, मूंग, लोबिया, मिर्च, अदरक, हल्दी और ज्वार तथा जायद में लोबिया, मिर्च, तोरई और भिंडी आदि फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। पौधा लगाने के बाद आम का ग्राफ्ट अमूमन 4 से 5वें वर्ष में फल देना प्रारंभ करती है। वृक्षों में गर्मी में सिंचाई देना आवश्यक होता है। नए स्थापित बाग के लिए हर 2-3 दिन में पानी अवश्य दें। प्रारंभिक अवस्था में थाला बनाकर सिंचाई करना चाहिए। फूल आने के समय अत्यधिक सिंचाई से फूल झड़ने लगते हैं और फल कम लगते हैं। आम में फल जब मटरदाना आकार के हो जाएं उस समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए। पेड़ के आसपास के क्षेत्र को हर समय खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। पेड़ की कटाई छटाई सर्दियों के अंत में या बसंत की शुरुआत में नई वृद्धि शुरू होने से पहले करनी चाहिए। छटाई के लिए पहले सूखी, क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त को काटना अति आवश्यक माना जाता है। आम के वृक्षों में मंजर लगते ही कीड़े मकोड़े का भी प्रारंभ बढ़ जाता है। कीड़ों में मधुआ, दहिया एवं फल मक्खी का प्रकोप आमतौर पर देखा जाता है। मधुआ के नियंत्रण के लिए निकलते समय डायोमेथोएट 35 EC तथा थायोडॉन दवा का छिड़काव एवं प्रति लीटर के दर से प्रति पेड़ 3 बार छिड़काव जरूर करना चाहिए और उसी तरह से समय समय पर जरूरत के अनुसार कीटनाशक फफूंदनाशक का भी छिड़काव हम लोग करते हैं। पौधा लगाने के समय जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि पौधा के चारों ओर मल्चिंग जरूर करें। हवा से बचाव हेतु वायु अवरोध जिसको हम विंड ब्रेक भी कहते हैं अवश्य लगाना चाहिए और बाग की नियमित निगरानी होनी चाहिए। और अंत में यही मैं कहूँगा कि आम का बाग स्थापित करने में प्रारंभिक 3 से 5 वर्षों तक विशेष देखभाल आवश्यक होती है। सही तकनीक अपनाने से बाग लंबे समय तक अच्छी उपज देता है और हमारे किसानों के लिए अस्थाई आय का स्रोत बनता है।
1: तो जानकारी मिली ना,
0: बहुत
1: आम के
0: बढ़िया
1: बाग लगाने
0: जानकारी।
1: हो तो क्या क्या करना
0: हाँ
1: होगा,
0: बहुत बहुत
1: तो इस
0: मतलब

0: बढ़िया से यहाँ के फरिया के बतौनी
1: हाँ,
0: तय
1: तो बता रहे
0: वार्ता
1: थे
0: खाती।
1: आकाश राज जी, इनको
0: हाँ
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत
1: और अब
0: धन्यवाद।
1: एक गीत और हम लोग सुन लेते हैं,
0: हाँ
1: सरोजीत यादव अनुज से।
0: सुने के।

0: वाह, बहुत
1: वाह
0: बढ़िया
1: वाह
0: गीत
1: वाह वाह, बहुत
0: सरोजीत
1: बहुत,
0: यादव अनु से सुने थे, और सारे
1: हाँ
0: गीतों के लिए इनको बहुत बहुत
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद देते
1: धन्यवाद,
0: हैं।
1: एकदम
0: और
1: एकदम,
0: अब समय हो
1: हाँ
0: रहा है श्रोताओं से विदा लेने का, तो
1: हाँ
0: चला
1: हाँ
0: जाए।
1: चलें जाओ।
0: नमस्कार सुगिया बहन,
1: नमस्कार सुधा बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि प्रसारण खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना है, थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: Small town, but global dreams. Now top-class engineering education is right here in Bihar. One government engineering college in every district. 38 premier institutes across the state. World-class education without leaving Bihar. Advanced labs, smart classrooms, experienced faculty, and excellent placement support for a strong engineering.

0: during career.
1: Admissions based on JEE Main 2026 or BCECE Merit. Online registration is open. Last date, 5 May 2026. For more information, visit bceceboard.bihar.gov.in. Issued in public interest by Department of Science, Technology and Technical Education and Department of Information and Public Relations, Government of Bihar.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत और नेपाल के बीच कोसी और गंडक परियोजना की संयुक्त समिति की बैठक संपन्न। दोनों देशों के बीच तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों को हल करने पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर, आवास

0: और शहरी विकास योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती का काम आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। यह मुलाकात पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित नीतीश कुमार के नए आवास पर हुई। लगभग आधे घंटे तक चली इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नगर आवास और शहरी विकास योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, जलापूर्ति और आवास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाए रखने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने पटना के जेपी गंगा पथ के पास बन रहे पार्क और अन्य निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इस अवसर पर प्रधान सचिव समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। कोसी और गंडक परियोजना की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक काठमांडू में आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक चर्चाएं की गई। काठमांडू में हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की रिपोर्ट।
1: कोसी और गंडक परियोजना की संयुक्त समिति की बैठक में बाढ़ नियंत्रण, तटबंधों के रखरखाव, सिंचाई प्रबंधन, कटाव से सुरक्षा और सीमा पार जल मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किया, जबकि नेपाल का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के महानिदेशक मित्रा बराल ने किया। बैठक में नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने कोसी और गंडक परियोजना के मुख्य क्षेत्रों, जिनमें नहरें, बैराज क्षेत्र और तटबंध से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई, ताकि परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। वीरपुर क्षेत्र में कोसी अंचल में वर्ष 2026 की बाढ़ आने से पहले दोनों पक्षों ने कटाव नियंत्रण कार्यों के लिए रेत, मिट्टी और गाद जैसी सामग्रियों के उपयोग पर सहमति व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति बनी कि कोसी परियोजना के तहत पट्टे पर दी गई भूमि का सीमांकन GPS तकनीक का उपयोग करके और मौके पर जाकर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नेपाली पक्ष ने आश्वासन दिया कि बाढ़ के मौसम में जब कोसी नदी का जल प्रवाह तेज होता है तो स्थानीय नागरिकों द्वारा की जाने वाली लकड़ी कटाई, मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों के कारण कोसी बैराज के सामान्य संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत ने नेपाल में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के नहर कमांड क्षेत्रों में जल निकासी और जल भराव से संबंधित मुद्दों का निरीक्षण करने और उन्हें हल करने पर सहमति जताई। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार नीतीश कुमार की राह पर ही आगे बढ़ रही है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार 2025 से 30 के लिए किए गए नीतीश कुमार के वायदे को पूरा करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक समाज के लिए विभिन्न कल्याणकारी कामों को पूरी ईमानदारी से पूरा किया जा रहा है। ऐसे में किसी प्रकार के अनावश्यक भय या भ्रम की स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं है।
2: नीतीश कुमार जी के शासन में जिस तरीके से 3C से जो कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं थी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, क्योंकि बराबर इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश हमारे विपक्ष के साथी करते रहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि सांप्रदायिकता पर भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार जी के समय में चल रही थी, आगे भी वही चलेगी। बिहार सूबे के तो सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग मानते ही हैं, देश भर के अल्पसंख्यक समाज यह मानता है कि अल्पसंख्यकों के हित में जो बिहार

0: में काम हुआ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ।
1: जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कल बेतिया से करेंगे। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज बेतिया में कहा कि दो दिवसीय इस यात्रा के दौरान निशांत कुमार पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे।
2: ये गौरव का विषय है कि माननीय निशांत कुमार जी की सद्भाव यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से हो रहा है। नीतीश जी की विरासत को जनता दल की केवल विरासत नहीं, बिहार की विरासत नहीं, देश की राष्ट्रीय राजनीति में एक विरासत है। उस विरासत को सजाने और संवारने का काम निशांत कुमार जी को दिया गया।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल

0: फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड की विभिन्न मीडिया इकाइयों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री कुमार ने सभी मीडिया इकाइयों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया इकाइयों को डिजिटल मीडिया तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती का काम आज से शुरू हो गया। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM ने दानापुर की बाटा फैक्ट्री के पास इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। वहीं विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने भी जनगणना के पहले चरण का कार्य शुरू होने की जानकारी दी है। जनगणना कार्य सह नागरिक निबंधन की निदेशक रंजिता ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनगणना का पहला चरण बेहद अहम है। उन्होंने लोगों से जनगणना के नाम पर सक्रिय स्कैमर्स से सतर्क रहने और किसी भी तरह की अफवाहों या भ्रामक जानकारी पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।
4: तो कई सारी धोखाधड़ी आदि की भी खबरें हम लोगों के पास आ रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या करेंगे? तो किसी भी प्रकार का कोई OTP मांगे तो नहीं देना है, बैंक खाता विवरणी नहीं मांगते हैं, पैन नंबर, आधार नंबर या किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट प्रगणक के द्वारा उसकी मांग नहीं की जाती। आप किसी भी अननोन लिंक पर जाने से बचें। तो अगर आपसे कोई इस प्रकार की जानकारी मांग रहा है तो आप निश्चित रूप से सावधान हो जाइए और अपने जिला में संपर्क करिए या 1855 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।
0: इधर स्वगणना के लिए दी गई 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। गृह मंत्रालय के अनुसार घर घर जाकर गणना और आवासों की गिनती की प्रक्रिया 30 मई तक जारी रहेगी। इस दौरान प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। जो नागरिक स्वयं यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं, उनके विवरण अब गणनाकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर दर्ज किए जाएंगे। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। यह संदेश केवल परीक्षण के लिए था। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। दूरसंचार संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा

0: कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री पुरी ने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: चक्रवाती हवा के प्रभाव से प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी और पश्चिम चंपारण के कुछ भागों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सुपौल जिले में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ भागों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
3: दिनांक 3 मई, राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भागलपुर के पीरपैंती पावर प्लांट का दौरा कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ क्षेत्र में रोजगार, औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगा। अररिया पुलिस ने NH-27 पर वाहन जांच के दौरान पश्चिम बंगाल के 4 तस्करों को 1 करोड़ रुपए मूल्य की मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न खेल पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि को विस्तारित किया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नेपाल के बीच कोसी और गंडक परियोजना की संयुक्त समिति की बैठक सम्पन्न। दोनों देशों के बीच तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों को हल करने पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर, आवास और शहरी विकास योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती का काम आज से शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
6: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच दरभंगा जिले में रसोई गैस और पेट्रोलियम की पदार्थों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को नियमित रूप से होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ता घर बैठे गैस बुकिंग कर निर्धारित समय के भीतर सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी ने धावा दल का गठन किया है। वहीं उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतों का निवारण करा सकते हैं।

0: जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत स्व गणना का कार्य संपन्न हो गया। 1 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 1 मई तक जारी रहा। इस दौरान नागरिकों ने जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं भागीदारी सुनिश्चित की। जिलाधिकारी ने बताया कि स्व गणना के बाद अब जिले में मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि 2 मई से 31 मई तक प्रगणक घर घर जाकर स्व गणना के दौरान भरी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे और जिनकी जानकारी छूट गई है उन्हें भी शामिल करेंगे। राज्य सरकार की प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना में दरभंगा को शामिल किए जाने से जिले में उत्साह का माहौल है। इस टाउनशिप को मिथिला टाउनशिप के नाम से विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर करीब 1600 एकड़ भूमि को इस परियोजना के लिए चिन्हित किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि भूमि चिन्हांकन, अधिग्रहण और अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया भी प्रारंभिक चरण में है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर सर्वेक्षण और संभावित स्थानों का आकलन किया जा रहा है। इस टाउनशिप के विकसित होने से आधुनिक आवासीय परिसर, बेहतर सड़क नेटवर्क, पेयजल, सीवरेज, बिजली, हरित क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी संरचनाओं का विकास होने की उम्मीद है। साथ ही इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और जिले को एक संगठित और आधुनिक शहरी स्वरूप मिल सकेगा। काल वैशाखी के प्रभाव से जिले के मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके कारण भारी बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। इस बरसात से आम, लीची, कटहल और पपीता समेत कई बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं मौसम में आए इस बदलाव के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। इधर जिले में भूगर्भीय जलस्तर नीचे चले जाने से कई इलाकों में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस जल संकट के समाधान को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला अधिकारी कौशल कुमार ने पीएचईडी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में सभी खराब चापाकलों की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इधर नगर निगम दरभंगा की महापौर अंजुम आरा ने प्रत्येक वार्ड में 2-2 सबमर्सिबल पंप लगाने का भी निर्देश दिया है। पिछले दिनों राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में दरभंगा स्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 4,57 करोड़ रूपए से अधिक के घाटे का बजट पारित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया। जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। अब तक 24,000 से अधिक पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण को लेकर आम जनता से अपील की है कि वे अपने घरों में सुरक्षित 75 वर्ष से अधिक पुरानी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक महत्व की पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम पोर्टल पर साझा करें, ताकि इस धरोहर को संरक्षित और डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 100 दिवसीय क्षय रोग मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। 24 मार्च से चलाया जा रहे इस अभियान के तहत अब तक जिले में 1,000 से अधिक टीबी मरीजों की पहचान की गई है। बीते दिनों दरभंगा जिले में माता सीता के प्राकट्य दिवस जानकी नवमी के अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माँ सीता की पूजा अर्चना की। वहीं विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में जानकी नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने मैथिली दिवस भी मनाया।
1: अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार और साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप गिरधर। उनसे बातचीत कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज के कार्यक्रम का विषय है ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन संबंधी नियम 2026। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अजीत कुमार और साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप गिरधर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ताकि वे इन नियमों की मुख्य बातें और इन पर अपने विचार और राय साझा कर सकें। श्री कुमार और डॉक्टर गिरधर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: नमस्कार।
3: अजीत जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार और विनियमन 2026 क्या है, इसके कुछ मुख्य बिंदु आप हमारे श्रोताओं के

0: साझा करें।
1: जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 22 अगस्त 2025 को संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास किया था और उसी के तहत हमने 22 अक्टूबर 2025 में ही एक ड्राफ्ट रूल्स जो है कंसल्टेशन के लिए बनाए थे और ड्राफ्ट रूल पब्लिश किए थे। उसके बाद हमें करीब 2500 स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन आए और हम अब फाइनली रूल बनाकर उसको हमने पब्लिश किया है। दरअसल जैसा कि एक्ट में कहा गया कि हम ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह रोकना चाहते हैं क्योंकि वो सामाजिक परेशानी के रूप में वो उभर रहा था, तो एक्ट के अनुसार 3 भागों में ऑनलाइन गेम्स को बांटा गया, सोशल गेम्स, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। मनी गेम्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में गेम्स को खेला जा सकता है और उनको खेलने के लिए ही ये रूल्स बनाए गए हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए और उनको खेलने के लिए। इसमें एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का प्रावधान किया है जिससे कि उस ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के द्वारा इस कानून को जो है संचालित किया जाए।
0: अजीत जी, इसके अलावा और क्या मुख्य बिंदु हैं?
1: इसमें सोशल गेम्स की कैटेगरी में आप अगर चाहें तो आप हमारे पास सोशल गेम को रजिस्टर करा सकते हैं, डिटरमाइन करा सकते हैं। ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो भी गेम होंगे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा रिकॉग्नाइज होंगे और उसके बाद वो अथॉरिटी के पास रजिस्टर होंगे। हमने रजिस्ट्रेशन को, डिटर्मिनेशन को पूरी तरीके से सोशल गेम के लिए वॉलंटरी रखा है
0: जी।
1: अगर आप गेम में कोई भी पैसे का एलिमेंट नहीं है तो आप उसे खिला सकते हैं बगैर किसी रजिस्ट्रेशन और डिटर्मिनेशन के। डिटर्मिनेशन के कुछ फैक्टर हैं जिसके अनुसार मनी गेम अगर है तो वो नहीं खिलाया जा सकता। अथॉरिटी की कुछ पावर्स हैं जिसमें कोड ऑफ प्रैक्टिसेस और जो कोड ऑफ एथिक्स बनाने की बात है। दूसरा, जो बैंक के तरफ से जो ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे उसमें भी जो है सावधानी रखी जाए कि जिस तरीके से बैंक वगैरह किसी भी ऑनलाइन मनी गेम के लिए पैसे नहीं ले सकते
0: जी।
1: वो ई स्पोर्ट और सोशल गेम के लिए ही बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से मनी गेम को पूरी तरीके से खत्म किया गया है और सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए और देश को एक गेमिंग हब बनाने के लिए उस तरीके से इस रूल्स को बैलेंस बना के हम लोगों ने पब्लिश किया।
0: अनूप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी अजीत जी ने जो मुख्य बिंदु बताया, इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु आपको क्या लगता है जिससे कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को एक स्ट्रक्चर और एक क्लैरिटी मिली है?
2: जहां गेमिंग की बात आती है, गेमिंग एक ऐसा एरिया था जो बिल्कुल ग्रे एरिया में चल रहा था अभी तक। स्पेशली हम गेम्स को प्रावधान देते हैं, जैसे इसमें 3 कैटेगरी बताई, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिससे बच्चों का एक लर्निंग कल्चर, एक एनवायरमेंट, एक चीजें समझ में आती हैं। और हम इसको अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो हम लोग इसको बोलते हैं जैसे सिमुलेशंस
0: जी,
2: या इमुलेशंस के थ्रू हम एनालाइज करते हैं और ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें और नई नई के बारे में जिज्ञासा पूर्ण उसको अच्छे से समझ सकें और उस पर कार्यरत हो सके। था वो कहाँ हो रहा था, कुछ ऐसी गेम्स जैसे क्रिकेट या जो कॉमन गेम्स हैं ऐसे, उनकी कुछ एप्स बन गई और वहां पर इन्वॉल्वमेंट हो गई साइबर क्राइम की, इन्वॉल्वमेंट हो गई पेमेंट्स की और चाहे ना चाहे उनसे जबरदस्ती पैसा लिया जाता था, उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता था और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, रजिस्टर हुए जिसकी वजह से, और उनकी कोई अथॉरिटीज नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था जिसकी वजह से कोई भी क्राइम कमिट कर सकता था
0: जी।
2: तो बड़े बड़े जो गेमिंग पोर्टल्स थे जहां पर हमें ये समझना है कि गेम को गेम की तरह लिया जाए, स्पोर्ट्स की तरह लिया जाए, तो इसमें एक अपारदर्शिता आई है, एक क्लैरिटी दी गई है और जहां पर जिस चीज को रोक लगानी थी, जो कि गलत है, सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट डाल रही थी, उस चीज को रोकना इम्पोर्टेंट, तो ये स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग बना है।
0: अनूप जी, ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो वॉलंटरी बना दिया गया है, तो इस फीचर को आप कैसे देखते हो? साथ ही एक और फीचर है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सरकार ने इन गेम्स के लिए लाइसेंस की वैधता को भी आसान बना दिया, खासकर वो गेम्स जैसे कि हम बात कर रहे थे जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो ये दोनों जो फीचर्स हैं इन नियमों के, उन्हें आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये लाइसेंसिंग में जो एक ढील दी गई है और जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का एक जो प्रावधान है, इससे रेगुलेशन कितना कामयाब होगा?
2: देखिए, अभी बिल्कुल आई थिंक पायलट बैच है इस चीज को लेके। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी एप्स, अगर उन्हें लाइसेंस लेना है तो अब क्या एक होड़ लग जाएगी लाइसेंस लेने के लिए? सबसे पहले उन्हें ये देखना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरा, उन्हें ये देखना है कि जो वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हालांकि लाइसेंस लेना आसान हो गया, और अगर उनकी सारी फीचर्स, सारे जो एक्टिविटीज हैं, अगर वो कंप्लाइंट हैं एज पर द नॉर्म्स जो 3 कैटेगरी में जैसे बताया गया, अगर उसमें से अगर कहां पे कंप्लाइंट हैं और वो वैध हैं, तो उनको सीधा 10 साल का लाइसेंस भी तो मिल रहा है
0: जी।
2: तो द पीरियड ऑफ दैट लाइसेंस जो है वो सीधा 10 साल के लिए है। यानी एक अच्छी बात यह है कि एज अ यूजर अगर मैं गेम खेलने लगाऊं और अगर मैं उसका गेम खेलने से पहले एक लाइसेंस चेक कर लूं कि उसकी वैधता है, और उसके पास 10 साल का है।

0: का है, यानी ये गेम एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करती है, लेजिटिमेट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम आराम से उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है ना।
1: जी
0: हालांकि बहुत सारे गेम्स और जो ओनर्स हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली स्टार्टअप्स हैं, उन लोगों को इन सब चीजें लीगल और टेक्निकल
1: जी
0: कंप्लाइंसेस देख के उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी उनको अपने टीचर्स को वैसा मोल्ड करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो अभी अलग तरीके से बन रही थी, किसी भी डायरेक्शंस नहीं थी उनके पास और कैसे भी वो प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये नॉर्म्स को लेके अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा, नया वर्जन लाना पड़ेगा, नए तरीके से उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन मिलेगी, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं।
1: अनूप जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो नियम बने हैं इनसे इनोवेशन और उपभोक्ता सुरक्षा के बीच में किस तरह का संतुलन बना है?
0: देखिए, संतुलन बहुत जरूरी है।
1: जी
0: बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा इमोशनल,
1: जी
0: इजिली कनेक्टेड और सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जिसकी वजह से सभी एप्स जो बनाने वाले थे उन्हीं को टारगेट करके उन्हीं से उनका यूपीआई आईडी ले लेना, या कोई कार्ड्स लगवा लेना, या वॉलेट बना के उसमें कुछ पैसे डलवा के और उनसे प्रोसेस करवाना, ऐसे बहुत सारी गेम्स रही, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी रही कि बच्चों का दिमाग आप समझिए हिप्नोटाइज हो गया।
1: जी
0: जैसे ही टेक्निकली वो लोग अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को या उन सबको बुलाते हैं, वहां पर आप समझेंगे जो लोग कनेक्टेड हैं वो अपना माइक, अपना स्पीकर, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं और वो सब स्पेसिफिक वीपीएन में कनेक्टेड है।
1: जी जी
0: अब ये टेक्निकली अगर आप समझें तो वीपीएन से कनेक्ट होने का मतलब उनके सारे डिवाइसेस एक्सेस किए जा सकते हैं उनके प्रोवाइडर्स के थ्रू,
1: जी जी
0: और वही डिवाइसेस कहीं ना कहीं क्राइम करने के लिए भी यूज हो रहे
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: तो
0: तो बैकएंड अगर आप देखें, टेक्निकल देखेंगे, तो वो आपको बहुत ही बड़ा गैप नजर आएगा। इन सब के लिए ये चीजें होनी बहुत जरूरी थी, इंपॉर्टेंट थी, और इनको रोक लगाने का तरीका भी यही।
1: जी अजीत कुमार जी और डॉक्टर अनूप गिरिधर, कार्यक्रम में शामिल होने और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: इसके साथ ही आज का सामयिक चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: ये आकाशवाणी पटना है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना तुलसी कुमार, के और साथियों के स्वर में ये गीत, फिल्म थी रेडी। अब आइए सुनते हैं, ये अगला गीत है फिल्म साजन के लिए, आवाज़ दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, तुलसी कुमार का गाया दुगाना। फिल्म थी हमको दीवाना कर गए। इसके पहले जो गीत आपने सुना था लता मंगेशकर की आवाज़ थी और फिल्म साजन। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं समाप्त हुआ चाहता है। ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं चंद गजलें। कलाकार हैं जगदीश सिंह और चित्रा सिंह।

0: इतना अभिज्ञान सा कुंद्रम उनका नाटक है मुझे। तो फिर मैंने दो जो एपिसोड है वो तो मैंने लेखक के बारे में लिखा, तो मैंने कहा लेकिन जब हो गई तो जब प्रसारण उसका हुआ तो हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं रमानाथ अवस्थी उठकर गले लगा रहे हैं मुझे, सुना तुमने क्या साहब लिखा है। तो मैंने देखा कि आकाशवाणी कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक कृतियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में कैसे जन जन तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जिस जमाने में नहीं था टेलीविजन, जिस जमाने में ये नहीं था, उस जमाने में तो एक ही माध्यम था ना कि लोगों तक पहुंचने का, वो श्रव्य माध्यम था, और श्रव्य माध्यम था रेडियो ट्रांजिस्टर, तो आकाशवाणी। तो यह इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है। आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि अभी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
1: 90 वर्षों का आकाशवाणी का सफर ये महज एक संख्या नहीं बल्कि 90 वर्षों की सेवा, 90 वर्षों की साधना और 90 वर्षों की आवाजों का उत्सव है। भारत की आत्मा का संबंध उन भाषाओं से बहुत गहरा जुड़ा है जिन्हें हम जनजातीय भाषाएं या बोलियां कहते हैं। संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी, कुड़ुक, बोडो ये सिर्फ भाषा या बोलियां नहीं है, ये जीवन दर्शन है। इन भाषाओं के साहित्य में मनुष्य की वो आदिम चेतना है जो आज के भौतिक युग में हम खोते जा रहे हैं। आदिम चेतना यानी वो बोध जो प्रकृति को माँ मानता है, जो नदी में देवत्व देखता है और जो पशु पक्षियों से संवाद करता है, जो धरती को केवल संपत्ति नहीं एक जीवित सत्ता मानता है। संथाली की लोक कथाओं में स्त्री की स्वतंत्रता का उत्सव है, गोंडी गीतों में वन और मनुष्य के बीच का वो रिश्ता है जो आज के पर्यावरण संकट के समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, जनजातीय भाषाओं का साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना।
2: एक प्राचीन कहावत है, जब एक वृद्ध की मृत्यु होती है तो मानो एक पूरा पुस्तकालय जलकर राख हो जाता है। यही बात भारत की सैकड़ों जनजातीय भाषाओं के बोलने वालों पर भी उतनी ही लागू होती है।
3: भारत की जनजातीय भाषाओं में बसा साहित्य कागज के सफेद पन्नों का मोहताज नहीं रहा, ये तो एक ऐसी वाचिक विरासत है जो पुरखों की सांसों से होती हुई हमारी रगों तक पहुंचती है।

0: जब हम इन कथित हाशियों की भाषाओं के भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का साहित्य एक जीवित ज्ञान परंपरा है।
1: अरुणाचल की मिश्मी कहानियों में हवाओं के रुख को पहचानना हो या नीलगिरी की इरुला जनजाति के गीतों में छिपी जड़ी बूटियों का गहन रहस्य जानना हो तो प्रकृति के साथ जीवन ही एकमात्र तरीका है। चाहे वो लद्दाख के ब्रोकपा समुदाय के हजारों साल पुराने आर्य गीत हो, अंडमान की ओंगे जनजाति की लहरों को समझने वाली कथाएं, या मेघालय की खासी लोक कथाओं का मातृसत्तात्मक दर्शन, ये सब हमारी सामूहिक चेतना के शिलालेख हैं।
0: आज हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रही हैं जनजातीय साहित्य और संस्कृति की जानी मानी विशेषज्ञ दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा मीणा।
2: सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनजाति जो शब्द है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक शब्द है, जबकि लोक प्रचलन में आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है। आदिवासी समुदायों ने हजारों सालों के अपने जीवन के अनुभव, जो उनकी ज्ञान परंपरा जिसकी हम बात करते हैं उसमें उनके जीवन के अनुभव हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उसका ज्ञान है, ये ज्ञान है उनकी कहानियों में, गीतों में, परंपराओं में, उनकी जीवन शैली में, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। मुख्य धारा का जो साहित्य है उसे दो भागों में हम मोटे तौर पे विभाजित करते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी अपने साहित्य को हिंदी के लोक और अंग्रेजी के फोक लिटरेचर से अलग

0: उसे ओरेचर कहते हैं, ओरल लिटरेचर, जो कि पुरखौती साहित्य है। और इनका जो मौखिक ज्ञान है ये लिपिबद्ध करने का काम अंग्रेज अध्येताओं ने किया था। 600 से ज्यादा आदिवासी भाषाएं हैं, 100 से अधिक भाषाओं में लिखित परंपरा है। बहुत सी ऐसी भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि नहीं थी लेकिन दूसरी लिपि का इस्तेमाल किया गया, जिसे पूर्वोत्तर में बहुत सारा साहित्य रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ। देखिए, मिशनरी पीओ बोर्डिंग ने संताल पुरखौती कथाओं का रोमन लिपि में प्रकाशन किया था 1924 में। W.G. आर्चर ने 1945 में संताल पुरखौती गीतों का संग्रह किया था। और अभी 2006 में अन्विता अब्बी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लुप्त प्राय स्वदेशी भाषाओं पर व्यापक शोध कार्य किया गया है। फादर हाफमैन द्वारा संकलित मुंडा गीतों का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है। जब मैं कहती हूँ कि एक भाषा में एक समाज का ज्ञान संरक्षित होता है, तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। राजस्थान, क्योंकि एक मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ बरसात का बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा में हर एक माह में होने वाली बारिश के लिए एक अलग शब्द है। वहाँ ऊंट के लिए 270 से भी ज्यादा पर्यायवाची शब्द मौजूद है। तो ऐसे में राजस्थानी संस्कृति को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना और उसको सहेजना बहुत जरूरी है। अंडमान द्वीप समूह में एक भाषा है बो, जिसके बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में बोआ नाम की एक महिला बची जो उस भाषा को बोलती थी, समझती थी। उस भाषा का संरक्षण नहीं किया गया और 2010 में उसकी मृत्यु के साथ वो भाषा खत्म हो गई। आदिवासी साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की बहस नहीं है, वहाँ अनुभव की आधिकारिकता पर बल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि गैर आदिवासी लेखक भी इसमें शामिल है आदिवासी साहित्य में, जैसे संजीव हैं, राकेश कुमार सिंह, महुआ मांझी, गणेश देवी। और इसके साथ ही आप देखेंगे 90 के दशक के बाद आदिवासी भाषाओं में जो लेखक हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। रामदयाल मुंडा, हेराल्ड तोपनो, वॉल्टर भेंगरा, मंगल सिंह मुंडा, महादेव टोप्पो, निर्मल मिंज, अनुज लुगुन, हरिराम मीना, शंकरलाल मीना। और स्त्रियां भी आदिवासी लेखन में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। आदिवासी समाज का चित्रण उनकी रचनाओं में बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। इनमें आप देख सकते हैं मंजू ज्योत्सना, वंदना टेटे, सरोज केरकेट्टा, एलिस एक्का, जसिंता केरकेट्टा, वासवी कीड़ो, जिन्होंने आदिवासी जो योद्धा महिलाएं हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी किताब उनकी निकली है, शांति खलको है, बिटिया मुर्मू है, सुषमा असुर है, बहुत सारे नाम हैं। सुशीला सामत जो कि पहली आदिवासी कवित्री और संपादक हैं और 1930 के दशक में लिख रही थी, जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही थी, लेकिन इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। सीता रत्नमाला, जिनकी आत्मकथा जो अभी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी है, 1968 में उनकी आत्मकथा लिखी गई थी और उससे पहले बहुत सारी कविताएं और नाटक उन्होंने लिखे हैं जो कि विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी के लोग उससे परिचित नहीं थे। हिंदी में परिचय तब होता है जब अश्विनी कुमार पंकज उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद करते हैं।
1: अकादमिक समझ के साथ साथ इस साहित्य को जमीनी स्तर पर सहेजने की कोशिश भी उतनी ही जरूरी है। इसी सिलसिले में हमारे अगले मेहमान डॉक्टर करमचंद हंसदा बीते कई वर्षों से जनजातीय समुदाय के बीच काम कर रहे हैं।
2: जब हम जनजातीय साहित्य को करीब से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह महज शब्दों का मेल नहीं बल्कि हमारे समाज के जीने का ढंग है। अक्सर हम बिरसा मुंडा को एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक नए विचार विषेद की शुरुआत की थी जो सादगी और प्रकृति की पूजा पर आधारित था। साहित्यिक दुनिया में अगर हम देखें, एलिस इका का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो हिंदी की पहली जनजातीय महिला कहानीकार मानी जाती है। वहीं निर्मला पुतुल, जब वो आधुनिक समाज से सवाल करती है कि आपकी प्रगति हमारे विनाश की कीमत पर होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तैमसुला आओ जैसे लेखक हैं जिन्होंने नागालैंड की लोक कथाओं को दुनिया के सामने रखा। यह लेखक हमें सिखाते हैं कि जनजातीय समाज में कोई सुपर हीरो नहीं होता, यहाँ पर समुदाय ही नायक है। हमारी कहानियों में कीटी से लेकर

0: जाति तक और पहाड़ से लेकर नदी तक सबका बराबर का सम्मान है। आज जब हम जनजातीय साहित्य महोत्सव की बात करते हैं तो हम दरअसल इसी सामूहिक चेतना को बता रहे होते हैं। यह साहित्य समाज को बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि इन आवाजों को सुनना और पढ़ना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है।
1: जनजातीय साहित्य क्रांति की गर्जना, चेतना की पुकार, सशक्तिकरण का शंखनाद और प्रकृति के साथ मनुष्य के उस शाश्वत संवाद की अभिव्यक्ति है जो सदियों से अटल है।
2: असल में ये वो साहित्य है जहाँ एलिस एक्का की संवेदनाएं बोलती हैं और निर्मला पुतुल की कविताएं हमें उन इलाकों में ले जाती हैं जहाँ हमारी आदिम सभ्यता के गीत बस गए हैं। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
3: अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे स्वर्गीय के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर एक लघु चर्चा। एक किताब जब किसी के जीवन की कहानी हो तो वो केवल साहित्य नहीं रहती, वो एक धरोहर बन जाती है। उसने कुछ मुझसे कहा, ये शीर्षक ही अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। किसने कहा, क्या कहा और सुनने वाला कौन था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम आज इस पुस्तक के सबसे करीबी साक्षियों से बात कर रहे हैं। उनकी बेटियां सीमा सागर और सुजाता सहाय, जिन्होंने विनोद सहगल के संगीत निर्देशन में अपने पिता की इन रचनाओं को सुरों में भी बांधा है। सुनते हैं ये बातचीत। सुजाता जी, आप पहले तो इस किताब के बारे में ही हमारे श्रोताओं को बताइए।
4: पापा सब जानते हैं कि वो बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर थे, बहुत नामी, बहुत ज्ञानी, बहुत जाने माने, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि वो लिखते थे। एक दौर था जब वो मुशायरों में जाते थे बाकायदा, लेकिन फिर वो दौर कुछ दिनों बाद नहीं रहा, पर उनका लिखना चलता रहा। वो जो लिखते थे वो खुद के लिए लिखते थे, वो किसी को बहुत आसानी से न सुनाते थे ना वो शेयर करते थे। जब उन्हें लगता था कि सामने वाला इस लायक है कि उसको सुनाया जाए तभी वो सुनाते थे। तो डायरियां थी उनकी बहुत सारी जिनमें वो लिखते थे, वो डायरियां खो गई, सामान इधर से उधर हुआ, तो जो भी हमें मिला, हमें कोई राइटिंग पैड, जिस उनको जहाँ जगह मिलती थी वो थोड़ा सा लिख लेते थे, तो जो जो हमें मिलता गया हम उसको इकट्ठा करते गए। परेशानी ये थी कि वो उर्दू में था, एक और परेशानी ये थी कि उन्हें स्ट्रोक हुआ 98 में, तो उसके बाद उनका हाथ हिलता था लिखने में, तो वो आम आदमी जो उर्दू पढ़ लेता था वो नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि वो जो लिखावट थी हाँ उसमें बहुत शेकी था। तो बड़ी किस्मत से हमें एक शायर साहब मिले, तो उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने किन्नी के साथ, ये बहुत हाल ही की बात है, अभी शायद पिछले महीने की, उन्होंने उसको हिंदी लिपि में किया, मेरी बहन ने उसको एक किताब का रूप दिया, क्योंकि हम चाहते थे इतना खूबसूरत वो लिखते हैं, आप भी पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि कहाँ जा रहा है ये, तो आपको भी वो सोचने पर मजबूर करता है। तो हम चाहते थे कि ये जो भी उन्होंने लिखा है वो दुनिया तक।
3: सीमा जी, ये यात्रा कैसे शुरू हुई कि आपको कुछ पुराने लिखे हुए उनके कुछ मजमून मिले जिनको आपने सोचा कि आपको ये को पहले तो आपको लिप्यांतरण नहीं कराना पड़ा इसका कि वो उर्दू में थी, फिर आपको इसे देवनागरी में करना था, अच्छी खासी मशक्कत का काम था। तो सीमा जी आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जब आपके हाथ लगा, आपके पिताजी होते तो क्या चाहते इसे पब्लिश करना या नहीं?
5: पापा शायद ना चाहते क्योंकि वो बहुत संकोच करते थे, जैसे सुजाता ने बताया कि अपनी शायरी भी वो बहुत गिने चुने लोगों को सुनाते थे, लेकिन मुझे एज अ डॉटर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये हमको दुनिया को, दुनिया के साथ ही शेयर करनी चाहिए इनकी शायरी, और इरादा हमारा बिल्कुल पक्का था, तो ये तो हमको काम करना ही था और ये बहुत खूबसूरती से ये काम हुआ है।
3: और लगे तो ये सवाल भी पूछते चले, जैसे अभी हमें मौका मिला था कि कुछ दिनों पहले आपने जो एक आयोजन किया जहां आपने इनमें से कुछ चुनी हुई गजलों को, नज्मों को आपने संगीत में ढाला है और आपने गाया, आप दोनों बहनों ने उसमें स्वर दिए हैं अपने, और साथ में विनोद सहगल जी का भी साथ आपको मिला, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपको क्यों लगा कि ये संगीत में

0: सिद्धाला जाना चाहिए, क्या इसके पीछे मोटिवेशन रहा?
1: जी बिल्कुल, हम दोनों को ये लगा कि इसे संगीत में डालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत बहुत लोगों तक पहुंचता है। सब लोग शायद पोइट्री शायरी को ना पढ़ना चाहें, और लेकिन संगीत तो हर कोई सुनता है, और लगा कि इसको अगर हम संगीत में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा। इसमें जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है विनोद सहगल जी, जो अचानक ही एक प्रोग्राम के दौरान लखनऊ में मेरे फादर को मिले, और क्योंकि वो अंबाला में रहते हैं, मैं उनसे अक्सर मिलती रहती हूँ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आप जा रहे हैं लखनऊ, तो आप उनको मेरे फादर को जरूर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा उन्हें मिलके। तो वो उन्होंने वक्त निकाला, वो घर गए, उनसे मिले, और बातचीत के दौरान ही उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं, और ये पोइट्री ऐसी है इतने खूबसूरती से मीटर में सेट है, तो इसको मैं इसमें मैं म्यूजिक में इसको कंपोज कर सकता हूँ, वो ख्याल उनको आया। और बाद में जब वो वापस लौटे अंबाला, तो उन्होंने ऐसे बात करा, इसका जिक्र किया, तो मुझे लगा कि हाँ क्यों ना हम ये काम करें। और देखते ही देखते वो खुद कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, कि ये नैयर साहब की पोइट्री है, मैं इसे इतना प्रभावित हुआ कि मेरे अंदर से धुन अपने आप बनती चली गई, और ये तो पोइट्री का कमाल है कि इतनी खूबसूरत धुनें बन गई, और जब बन गई तो मुझे ख्याल आया कि इसको हम रिकॉर्ड क्यों ना करें।
0: आप लोग क्योंकि बहुत गहरे जुड़े हैं, इससे ज्यादा गहरा जुड़ाव क्या होगा, आप पैदा हुए उसी
1: माहौल में,
0: छत्र छाया में, हाँ। तो आप ये बताइए कि आकाशवाणी का एज एन इंस्टीट्यूशन क्या था, अभी क्या है, और आपको क्या उम्मीदें हैं?
2: हम तो पले बड़े इसमें, बच्चों के प्रोग्राम करने से, फिर थोड़े बड़े हुए तो वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम करने से, फिर हर रात हम इंतजार करते थे हवा महल का, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स और पापा के प्रोग्राम्स तो हम सुनते ही थे, तो रेडियो तो चलता ही रहता था, कभी बंद ही नहीं होता था घर पे।
1: जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, ऑफ डिक्शन जो आकाशवाणी में है, जो आपके अनाउंसर्स हैं, आपके जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, जो आप भाषा यूज करते हैं और किस तरह से आप उन शब्दों को कहते हैं, हम मुझे याद है बचपन में जब मैं कोई गलत वर्ड यूज करती थी, मेरे फादर मुझे इमिजिएटली टोकते थे कि तुम ये गलत कह रही हो, और फिर मैं ध्यान से आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनती थी कि अच्छा ये लफ्ज कैसे कहा गया, और मैं उससे सीखती थी। दैट वॉज माई बैरोमीटर, आई लर्नड लैंग्वेज, आई लर्नड डिक्शन
2: कल्चर
1: फ्रॉम कल्चर। सो आकाशवाणी इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया। जो युवा पीढ़ी है, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे है कि वो इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को आगे ले जाए और बाखूबी ले जाए, ये बहुत जरूरी बात है।
2: बस एक आखिरी बात, आपने पूछा कि पापा क्या, पापा चाहते कि ये किताब छपे, तो मैं कहती हूँ शायद वो मना करते, ऊपर से कहते नहीं नहीं ये मैं नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो
1: दिली दिल बहुत खुश होते हैं कि ये सब गई है।
0: आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग एक एक अपनी पसंदीदा कविता या नज़्म, अगर कुछ उसकी कुछ पंक्तियाँ आप हमें पहले से जाता जी।
2: इसको पढ़ के मैंने सोचा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है वो पहली बारिश। जब जब आई बरखा रुत की पहली बारिश, भीगी भीगी बोर आई सी चले हवाएं, चेहरे को छूकर निकले गीले गीले पोरों से, पलकें सहलाएं बरखा भीगी, सड़क लगे जब खाली खाली, तभी अचानक एक कोने में हंसते गाते धूम मचाते, सावन की पहली बूंदों का शगुन मनाते, आ जाएं अपने साईं जी, लंबी पलकें प्यारी आंखें सावर चेहरा, चेहरे पर झूमे लहराए सावन, भीगी लंबी काली घट अलबेली, हाथ में चिमटा ताल से ताल मिलाएं। इसको पढ़ के मैंने सोचा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम जब बारिश आती है तो हम निकलते बाहर, नहाते हैं, खेलते हैं, कूदते, ये साईं जी कौन है? मुझे लगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद साईं जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि पुराने जमाने में जब बारिश होती थी तो एक उनको कहते थे मलंग, वो आते थे, और उनका अटायर ये होती थी, लंबे बाल, हाथ में चिमटा, यहाँ रस्सियां, कमर में रस्सियां, और वो नाच

0: गीते गाते थे बारिश में, जैसे वो बारिश का ऐलान करने आते थे। तो मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगी, और जो है नहीं अब ना,
1: जिस पर ये किताब का शीर्षक भी दिया गया है, उसने कुछ मुझसे कहा।
2: बिल्कुल सीमा जी स्वागत है।
1: उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे।
2: क्या बात है।
1: नूर ही नूर फजा हो जैसे, फिर किसी लब पे दुआ हो जैसे। आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा, कोई पैबंद लगा हो जैसे। अक्स आईने में बदला बदला, अक्स आईने में बदला बदला, सामने गैर खड़ा हो जैसे। दूर जाते हुए कदमों के निशा, दूर जाते हुए कदमों के निशा, आके वो लौट गया हो जैसे।
2: क्या
1: रात ने चौंक के देखा किसको, रात ने चौंक के किस देखा किसको, एक शोला सा उठा हो जैसे। ओस के कांपते मोती थामे, ओस के कांपते मोती थामे, बर्फ ही दस्ते दुआ हो जैसे।
2: क्या बात है।
1: वही मानूस पुराना बरगद, वही मानूस पुराना बरगद, कोई कुछ सोच रहा हो जैसे।
2: क्या बात है। बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, आप यहाँ आए, आपने हमें, हमारे सुनने वालों को कम से कम के नैयर साहब से कुछ तारुफ तो कराया जो नहीं जानते थे उन्हें, और जो हम जो नाम से उन्हें जानते थे उनसे थोड़ा और मिलवाया। बहुत शुक्रिया
0: आपका। बहुत शुक्रिया।
3: उसने कुछ मुझसे कहा, नैयर साहब की खुद की आवाज, जिसने उनसे जीवन भर संवाद किया, और अब वो संवाद इस किताब के पन्नों में उतर आया है, सबके लिए, हमेशा के लिए। साहित्य जीवित रहे, भाषाएं जीवित रहें, और 90 वर्षों का आकाशवाणी का ये सफर यूं ही चलता रहे, इसी कामना के साथ साहित्य भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में हम सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता का वायलिन युगल वादन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक विशिष्ट संगीत परंपरा में जन्मी ये बहनें सुप्रसिद्ध वायलिन वादक विद्वान A.V. वेंकट नारायण की पौत्रियां हैं, जो संगीत कला निधि मैसूर टी चौड़ैया के शिष्य थे। इस समृद्ध विरासत ने इनके लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया, किंतु निरंतर साधना और उत्कृष्टता की अनवरत खोज ने इन्हें आज के सफल कलाकारों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गान कला भूषण H.K. नरसिम्हा मूर्ति तथा विदुषी H.N. राजलक्ष्मी के मार्गदर्शन में और विदुषी पुष्पा श्रीनिवासन, श्री T.K. श्रीनिवासन तथा विख्यात वायलिन वादक विद्वान H.N. भास्कर के सानिध्य में इन्होंने ऐसी शैली विकसित की है जिसमें गहनता और गतिशीलता का सुंदर समन्वय है। आपका संगीत एक अनुभूति है जहां भावपूर्ण अभिव्यक्ति और तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम होता है। वायलिन पर आपकी सशक्त पकड़ आपकी प्रस्तुति को एक विशिष्ट आयाम देती है, जिससे आपका संगीत अत्यंत भावपूर्ण और आकर्षक बन जाता है। अपनी कला के माध्यम से ये बहनें ऐसा संगीत अनुभव सृजित करती हैं जो श्रोताओं के हृदय को स्पर्श कर जाता है। अपनी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित सिंधु और स्मिता आकाशवाणी बेंगलुरु की ए ग्रेड कलाकार हैं, और उन्होंने गायन तथा वायलिन दोनों ही विधाओं में लगातार सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी कला को मद्रास म्यूजिक अकादमी, अनन्या युवा पुरस्कार, युवा पुरंदर पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित M.S. सुबुलक्ष्मी फेलोशिप सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधु और स्मिता केवल कलाकार ही नहीं बल्कि एक समृद्ध परंपरा की संवाहक हैं, जो कर्नाटक संगीत की अमर धरोहर को गरिमा, नवोन्मेष और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड H.M. स्मिता। बॉर्न इनटू अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल लीनेज।

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग दे कॉन्सर्ट दे विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

0: राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता द्वारा वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदिताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता। दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बी एस प्रशांत, घटम बाय जी ओमकार राव। कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस, सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट ललिते, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन भैरवी रागा सेट टू आदिताल।

0: अब सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tani Avartanam presented on Mridangam by B.S. Prashant and on Ghatam by G. Omkar Rao.
0: Sindhu Suchetan और H.M. Smita अपने वायलिन युगल वादन का समापन राग देश में तिलाना से करेंगी, जो विद्वान लालगुड़ी जयरामन की रचना है।
1: Sindhu Suchetan and H.M. Smita will conclude their violin duet recital with Tilana in Raag Desh, a composition of Vidwan Lalgudi Jayaraman.

0: के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता का वायलिन युगल वादन संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर बीएस प्रशांत तथा घटम पर जी ओंकार राव।
1: विद दैट वी कंक्लूड वायलिन डुएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। दे वर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बीएस प्रशांत एंड ऑन घटम बाय जी ओंकार राव।
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आकाशवाणी बेंगलुरु ब्रॉट टू यू फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों

की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के चार जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वत्ती और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly Constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamala Bagchi directed that the Commission's guidelines
must be strictly